0: पौड़ी सबको अपना जिसना ही सोचन कड़ी है किताबो अपना पहले खा संडी है जा रहना नहीं है तो जगता का इतकार बंडी है मंदा किसे ना किया पड़ख रे बुझी है मूर्ख है ना लल जी है मूर्ख है ना लल जी है
1: सिखा मन वादाइया जिन मेरा सतगुर बिठा राम राजे कोई कारगर सुनावे।

0: पहला नानक के बोले तन मन पिका हो पिको पिका सदिया पिके पिकी सोए पिका दर के सटिया में टुका पिके पाहे पिका मूर्खा किए पाणा लह सजाए महला पहला
1: अंदर हो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे ना वह उतरे ना ही मैल जिन पड़त नर बाहर बुद्धड़ टेपले संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हस है रंग रोव है चुप्पी कर जा प्रवाह ना ही किसे केरी बात सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाही दीवाने को कलमे कहा महात्मा में दाल लेखा पीड़ सुटे नानका जो तेल

0: ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज से तैखा सवाए तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप ए डीडी फ्री डिश से बुझी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, डिटेल्स को चन कराएं। थोड़ी देर में अवां भगत कौराम जन जो मिठड़ो आवाज मिलंदा, तंहिंखां पोइ अवां जनाब जयंत रेलवाणी खां हिकु नंढी तकरीर ॿुधंदा लोक वरसो, ऐं पोइ कुझु हुब वतन गीत। या त असांजे प्रोग्राम जी विचूड़ हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर छो त भगत कौराम जन जो सदाबहार आवाज ॿुधूं।
1: सब का

नजर अली आई वजाना सुने नजर अली आई वजाना

0: आकाशवाणी जी सिंधी सरसाए हिंदर पेश आए का नंढी तकरीर तकरीरकार जनाब जयंत रेलवाणी उन्होंने है लोक वरसो
1: लोक लफ्ज जी वसफ निहायत वसी आए अनंत असीम लोक जो मतलब आए आम मानू पर उन आम मानू जी वरसे लोक वरसे के वडी माना है वरसो बेभाव कीमती शे आए कें भी फर्द के मिलियल को वरसो चाहे वो लक्षण संस्कारन जो होजे चाहे विचार ए आलमपणे जो फर्द जी अवर चाहिला वडी अहमियत रखे तो बिल्कुल अड़े नमूने कें भी देश समाज कौम या जाति के मिलियल वरसो भी उन ला वडी अहमियत रखे तो उन वरसे के आधार ते ही संदस पीढ़ ए मालामाली जो कथो करे सकजे तो संस्कृत अखर लोक जो अलग अलग मानव कढ़ी वयू आन एक सीधी सादी माना है आम मानू जनता को फिरको या जाति कें मखसूस इलाके में रहंदड़ शख्स ये त लोक की माना सजो जगत में कढ़ी वही है सोग लोक मृत्यु लोक पाताल लोक प्रेम लोक वगैरह लातानी अखर लोकस जी माना है बेले के साफ करण लिथोनिया बोलिए जे अखर लोकस जो मतलब है खेत या बनी ए मानव ॾेखारनि थियूं त लोक लफ़्ज़ जो वास्तो हारी नारी तबके जे आम माण्हुनि सां रहियो आहे लोक लफ़्ज़ असल में संस्कृत लफ़्ज़ आहे जेको सिंधीअ में मरवत थियल आहे जंहिं जूं कुझु हेठियूं मानाऊं निकिरनि थियूं संसार जहान धरती कौम कबीलो समाज इलाइक़ो प्रदेश रैयत प्रजा आम माण्हू वग़ैरह सिंधीअ में लोक लफ़्ज़ की कदर बदिलियल रूप में बि इस्तेमाल थींदो आहे जीअं त लो याने को कुटुंब कबीलो या टोली कंहिं जॻह ॻोठ या जहान लाइ लोह अखर बि कमु ईंदो आहे त हिंदी ॿोली वांगुरु लोग अखर बि इस्तेमाल कयो वेंदो आहे लोक लफ़्ज़ मां सिंधीअ में ठहियल कुझु मरकब लफ़्ज़ वरी हिन रीत आहिनि परलोक तरलोक सोगलोक मृत्युलोक पाताल लोक लोकाचार लोकाचारी लोक मर्जात लोक व्यवहार लोक धर्म लोक प्रिय वगैरह हाँ असि अगर पैंजे लोक वरसे बाबत सोचू त वरसे में हेठिन खसूसतन जो समावेश जाहिर थी बीहंदो लोक अदब यानी लोक साहित्य लोक गीत लोक कथाऊं लोक विश्वास लोक नाटक लोक व्यवहार वगैरह किन आलमन लोक जो मतलब समझायो आहे ॻोठाणा माण्हू अणपढ़ियल या गंवार हक़ीक़त में इहा माना सही न आहे लोक वरसो छॾे वेंदड़ चाहे ॻोठ में रहंदा हुआ पर हू गंवार कोन हुआ संदन लोक गीतन में उमंगनि जो जेको नज़ाकत भरियो इज़ार नज़र अचे थो उहो ऊचे दर्जे जे लिखियल साहित्य खां घटि न आहे उन्हनि अवामी ऐं बेनाम शख़्सनि जी रचियल पुरोनिन गुजारतुनि ऐं बैतनि में निराले सटाव ऐं माना जी गहराईअ जूं जेके ख़ासियतूं मिलनि थियूं अलंकार या रंगीन ज़ुबानीअ जो जेके दिलकश इस्तेमाल मिले थो उहो आला दर्जे जे अदीबनि जी शायरीअ खां कंहिं बि हालत में घटि न आहे इन नुक़्ते निगाह खां लोक लफ़्ज़ जी माना गंवार या ॻोठाणा बजाए सही अर्थ में उहा ई वञी बीहे थी त उहे माण्हू जिन जो पंहिंजे वरसे में हासिल कयल रस्मुनि रवाजनि रवायतुनि अक़ीदनि ऐं एतक़ाद आहे ऐं उन मूजिब पंहिंजी रोज़ानी ज़िंदगी बि गुज़ारनि था उहे ॻोठाणा बि थी सघनि था त शहरी बि पढ़ियल बि त अणपढ़ियल बि यानी लोक वरसे जो मतिलब वञी बीठो अबाणो वरसो जंहिं मूजिब उहे माण्हू जीवन गुज़ारनि था जीवन गुज़ारण जे इन तहज़ीब जे वसीअ दायरे में इंसान ज़ात जे तबई ऐं बातूनी तरक़ीअ जा सभु पहलू समाजी ऐं मज़हबी मुल तोड़े इज़ार जा तरीक़ा अची वञनि था जंहिंखे अंग्रेज़ीअ में वरी फोक कल्चर चइजे थो हाणे ॾिसूं त लोक वरसे खे अरींदड़ उन्हनि मुख्य जुज़नि मां असांखे वरसे में कहिड़ियूं हासिलातूं मिलियल आहिनि ऐं असांजो लोक वरसो कहिड़ो आहे लोक कलाऊं ऐं हुनर वरसे जा मुख्य जुज़ा आहिनि इमारत साज़ी मूर्ति कला चित्र कला वग़ैरह सिंध जूं इमारतूं तड़ तलाव ढंढूं ढोरा खूह खंडर लासनी लोक कला जो पड़ादो आहिनि सिंध कला जो मरकब रही आहे मोहन जे दड़े जी खोटाई में मिलियल वस्तुनि वसीले मुहरनि गहरनि थांवनि रांदीकनि मूर्तियुनि ऐं हथियारनि मां इहो साबित थियो आहे त सिंध कला जो मरकब रही आहे ऐं सिंधनि खे शाहणो लोक वरसो मिलियल आहे नर्तके जो पुतलो ऐं साज़नि जा चित्र वरी ललित कला जो वरसो था ॼाणाइनि चयो वञे थो त ब्रह्मा ई पहिरियों नृत्य कला जो सर्जन कयो ऐं

नाट्यशास्त्र ग्रंथ रचींदड़ भरत मुनिय के उहा कला सेखारी। पर रंग कथा मूजिब नटराज के रूप में खुद शिव भगवान नृत्य जो सर्जन किया हो। वीर रस ए क्रोध रस के उन नृत्य के तांडव नृत्य चयो वियो। गुस्से के इजहार ला सिंधी में अना भी चयो वेंदो आए तांडव लगण। पार्वती के जोर भरण ते शिव जालुन ला लस्य नृत्य जो निर्माण कियो, यानी नजाकत वारो नृत्य। सिंधी में अना भी नजाकत ला लसो या लसी अखर कम ईन्द आए। नृत्य के उन्हीं किस्म में मुख्य तौर सिंधी नृत्य हैं झूमिर, छेज, चिंगो, जमालो, धमाल वगैरह। सिंधी झूमिर सुर नजाकत सुर ए ताल जो मेलाप है जो खास सालन जो नाच है। झूमिर जा मुख्य टे किस्म हैं आंगुरन वाली झूमिर, तारन वाली झूमिर, सांग वाली झूमिर। तारन वाली झूमिर में वरी एक ताड़, ब ताड़, टे ताड़ झूमिर भी थींदी है। मुख्य खां सवाए झूमिर जा ब्या किस्म हैं जतन वाली झूमिर, झमट झूमिर, मंडी झूमिर ए फेरे वाली झूमिर। छेज वरी डोकलन के ताल ते खुशी के मौके जो इजहार कंदड़ मर्दन जो नृत्य है। नृत्य ए नट के मेलाप वारो कथक नृत्य जो इसम है भगत नृत्य, जैमें लोक कथा सा गड भक्ति भाव समायल हों। टिपड़ो, जमालो, धमाल नृत्य जा बया नमूना भी हैं। इन सिंधी नृत्यन में जुम्बश, जोश, मस्ती, नजाकत ए भक्ति जा भाव समायल हैं, जैके असाज लोक वर्से की झलक पसाइन था। संगीत की बोली आलमगीर है। सिंधी संगीत में सिंधु के शहर की रवानी ए आलिय की उडाम है। पैंजो मखसूस लहजो ए अलग पिछाण है। हिंदुस्तानी संगीत के कदीम किताबन में सिंधी प्रकाश जो रागन जो जिक्र मिले तो। कदीम जमाने का सिंध में जै हवाली राग जो हिंजाण मिले तो सो आए लोड़ाऊ। लोड़ाऊ जो लय में वाई जो वाई वजूद में आई ए वाई काफिये के जन्म दिनों। सिंधी रागन बिन किस्म जन एक जो संगीत के कायदन के लिहाज का सिंधी प्रकाश जा राग तस्लीम किया वह है मिसलन, पूर्वी, मारवाठात वगैरह। बया उ राग आन जो शास्त्रीय संगीत में कबूलिया को वन मिसलन, लोड़ाऊ, कोयारी, दहर, घातू। सिंधी खसूस से सिंधी भेरवी, रामकली, पूरब ए जोगिया ए सिंधूर राग बनया। अक्सर सिंधी लोकगीत जिन के आधार से गाया वन था से आन सुरसोरठ, कोयारी, राणो, ससई, भेरवी वगैरह। रागन से गड साजन जो गहरो लागापो है। दुल, नगारो, ढोलक, खंजरी, थाली, घड़ो, घुंगरू, खड़ताल, नड़, मुरली, बीन, सुरंदो, चंग वगैरह साज असा के वर्से में मिलल है। तरह तो मरून जनाब हैदर बख्श चतो ही चयो है जिये जमालो छलो डोर, जिये दिलो सुरंदी सूर, जिये डोहो काफी कलाम, जिये हिंद, जिये सिंध। लोकगीतन में वरी आम मानु की स्वाभाविक रूप जो नक्श मिले थो। उन्हें हृदय में फुटी निकरन था। उन करे अवाम के दिलन से सीधो ए गहरो असर कन था। लोकगीत जन असाजे समूरे लोक वर्से जा पहरेदार बणजी रहा है। लोकगीत अवामी जिंदगी जो आईनो आन ए अवामी जज्बात की सही तर्जुमानी कंदड़ भी आन। रवाजी अदबी शहर से अक्सर उन जोड़ींदड़ की शख्सियत की छाप लगल हूँ, पर लोकगीत जो रचींदड़ एक फर्द की हैसियत में न पर समाजी नुमाइंदगी की हैसियत में उनकी रचना करे तो। उन करे लोकगीत समाजी या अत्य दमाई थींदा आहिन। उहे कहें जो निजी पूंजी न पर समाज की गडियल मिल्कत आहिन। कहें एक कलाकार की कलाकार आवाम में मरवज थी वजण बैद समूरे लोक की रचना बणजी वेंदी आहे। वक्त गुजरंदे या समक भी न पवंदी आहे तो उन जो असुल रचींदड़ केर हो। वक्त अनुसार उन में फेरो भी रहंदो आहे। लोकगीतन में तारीख के अलग अलग दौर, काल, स्थान, रहणी कहणी, रीत रस्मन, लिबास, सिंगार, अकीदन, डिणन वारन, धर्म, नीति, मुन, वणज व्यापार की जान हासिल थे थी। तारीखी घटनाओं जो भी जिक्र मिले तो। लोकगीतन की बोली सीधी सादी ए आम फाम हूंदी है। आम मानुन जो लोकगीतन से जन्म का मरण तई लागापो रहंदो आहे। लोली, ओराणो, छलड़ो, लाडो, साखी, पंजड़ो, वाई, काफी, डोहिड़ो, होजमालो वगैरह लोकगीत जा नमूना है। मिसलन लोली, जी जल जी जायड़ी, घोड़े तोता मायड़ी। लाडो, हल मारी घोट माओ घुमण बाजार। जमालो, ओ मुझो खटी आयो खैर असा हो जमालो। बाल लोकगीत वरी मिठड़ा, विंद्राईंदड़ ए सिख्यादायक हूंदा आहिनि। पैसो लदुम पट तां बाल लोकगीत में गाह जो गाय सा, गाय जो खीर सा, खीर जो माव सा, माव जो लोले सा, लोले जो कांव सा, कांव जो खंभ सा ए राजा जो घोड़े सा सबक देखारियल आहे। अड़े नमूने बया लोकगीत बाल लोकगीत आहिनि जो डिंबो वाटड़ी फिथो, या टिंडड़ी वे टिंडड़ी असी तुझा माणू, या इर्चिक मिर्चिक धाणा धिरचिक। लोकगीतन में किसन ए दास्तान के नजाकत सा इजारो वियो आहे।

0: देवन परिन शहजादन राजाउन या पखिन पसुन ए ठगन डेढ़ ठगन जो लोक कथाउन के भी बैतन या डोहिड़न में पोए हुए आए सिंधी लोक कथाऊं बिजल राय ड्याच कुंवर मारवी सीनी मेयार ससई पुनू लीला चनेसर मुरमल राणो ए भी केतरी लोक कथाऊं उन जो मिसाल आए सिंधी लोक नाटक भी असो मुख्य वरसो रहा है भगत लोक नृत्य से गड लोक नाटक भी है भजन भाव की बैठक चौकी के वरी पैंजो रंग है तमाशो सांग रामलीला रासलीला वगैरह लोक नाटक जा अंग है लोक हुनर पर वरसे जा आम अंग है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हुनरन का सवाय भरत सुबण मीनाकारी चिटसाली वगैरह कलात्मक हुनर के मखसूस वरसे की नुमाइंदगी होंगी है सिंधन जो भरत हार जो हुनर जेवर पूजा जो हटड़ी वगैरह सदन का वरसे में मिलल कलात्मक हुनर आन रीतियों रस्मों ए साठ सवण करण दिण मल्हायण विर्तन नेमन जो पालन करण ए पूजा वगैरह हर एक समाज की जिंदगी जो मुख्य हिस्सो आन इन सभी जो पालन शास्त्र के विधान का सवाय भी हर एक इलाके में लोक परंपरा मुताबिक किया वेंदो है सिंधी समाज में शादी ते साठ सवण ए रस्म अदा कई वेंदियों शिव जो रोट हैड जो साठ जंड जो साठ घड़े जो साठ तेल जो साठ डिख जो साठ दर दावण जो साठ हथियालो पलव पली फेरा फायण बितर मेण या लूण मेण वगैरह रवाज असा के वर्से में मिलल है ॾियारी दसहरो होली दूरियो एकाणा रामनवमी दुर्गाष्टमी जन्माष्टमी महालक्ष्मी शिवरात्रि गणेश पूजा गणेश चौथ रक्षाबंधन थदड़ी चेटीचंड उमास ग्यारस सतनारायण टीजड़ी सावण महीने जा ॾिण ऐं ॿिया अहिड़ा केतिरा ॾिण वारा आहिनि जेके लोक वरसे जे देन आहिनि ऐं पंहिंजी पंहिंजी ख़ासियत सां सदियुनि खां मल्हाया वेंदा आहिनि पहाका चवणियूं मुहावरा पुरोणियूं वग़ैरह पिणु लोक वरसे जी ख़ासि ख़ासियत आहिनि थोरे में घणो चवण जो ॾांहुं हूंदो आहे पहाकनि ऐं चवणनि में उहे ॼण लोकवाणी आहिनि आज़मूदे जो अर्क आहिनि मिसलन अकुल बिना अंधो कम कम खे सेखारे खिल मां जिल कोयले जी दलालीअ में हथ कारा घर ॿारे ॾियारी करण चोर जी माउ रोए कुंड में छठीअ जा लेख सवड़ हार पेर डिघेड़ण गिदड़ दाख न पुजे थू खटा थोरो खटियो घणी बरकत दॿे में ठिकरियूं नानी रधे ॾोहिटी खाए वण वण जी काठी वग़ैरह आज़मूदार बुज़ुर्गन हिकु हिकु सिट में ॻूढ़ी माना भरियल आज़मूदा लोक वरसे में ॾिना आहिनि विरहाङे बैदि हिंद में छिड़ विछड़ थी वियल सिंधी घणे भाङे नगरवासी बणिजी विया आहिनि असांजी अॼोकी पीढ़ी शायदि आख़िरी पीढ़ी आहे जेका लोक वरसे जी अहमियत खे सम्झण जी कुझु हाम हणे थी ऐं हुन खे महफ़ूज़ रखण लाइ कुझु फिक्र बि करे थी बदिलियल हालतुनि में आमतौर नतीजो इहो निकितो आहे जो लोक वरसे में मिलियल पंहिंजी असलूकियत विसारजंदी थी वञे सिंधियुनि जे लोक वरसे खे समझोए महफ़ूज़ करण लाइ उपाउ वठण पंहिंजी पिछाण ऐं हस्तीअ लाइ लाज़मी बणिजी पियो आहे
1: अजीत रेलवाणी खां तकरीर ॿुधी रहिया लोक वरसे ते आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से। अलावा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश से बुझी सकता है। ऑल इंडिया रेडियो जी सिंधी सर्विस है। यहाँ पेशेंट को जो देशभक्ति गीत है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत

जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, अब समय हुआ है संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे अरुंधति भट्टाचार्य के गाए भजन। इनमें आज आप सुनेंगे कबीर दास, मीराबाई और ब्रह्मानंद की रचनाएं। तो सबसे पहले सुनते हैं कबीर दास की रचना।

आप सुन रहे हैं संगीतिका और संगीतिका में आज सुन रहे हैं अरुंधति भट्टाचार्य के गाए भजन। आपके साथ सितार पर साथ दे रहे हैं अकील अहमद, बांसुरी पर साथ दे रहे हैं विनय प्रसन्ना, तबले पर संगति कर रहे हैं ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर है दामोदर लाल घोष। सुनते हैं अगला भजन।

इन आपका साथी रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर थे विनय प्रसन्ना और तबले पर संगति कर रहे थे ऋतु मिश्रा, हारमोनियम पर संगति कर रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, बिल्कुल सही। तो सबका सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और हम सुहाना सफर और मौसम हसीन, बहुत ही खूबसूरत इस गीत के बारे में कहें तो सच में ये ऐसा गीत है जब भी सुने तो मन खुश हो जाता है। सुबह की चाय के साथ मुकेश जी की आवाज का ये जादू मिल जाए तो दिन जो शुरुआत हम करते हैं वो और भी बेहतर हो जाती है। रास्ते में जब हम सुबह सुबह आते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ पौधे, हरियाली और सुबह की थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी हवा दिल में सुकून दे देती है। मैं जानती हूँ आप सभी इस वक्त बैठे होंगे अपने घर के या तो आंगन में, खिड़की में या फिर कहीं बालकनी में कहीं पर देख रहे होंगे और इस सुबह सुबह के मौसम का मजा ले रहे होंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने टीवी या रेडियो ऑन कर रखा होगा और आराम से कमरे में सुकून के साथ सुबह की चाय पी रहे होंगे। भी रविवार है और रविवार को लगता है कि भागती दौड़ती जिंदगी से

पल ऐसे हमें मिले जो हमें जिंदगी दोहराए रखती है, उसे हम ऐसे पल निकालें जो सुकून के साथ हम जिये, उन्हें महसूस करें। तो ऐसे खूबसूरत पलों को बिताने से ज्यादा हसीन और क्या हो सकता है, बताएं आप। सुबह सुबह का सुहाना मौसम और ये हसीन नगमे, तो भाई अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस अगले सुहाने से मौसम से एक और खूबसूरत गीत की तरफ। तो आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त सुषमा के साथ, और अगला गीत जो है वो है अभिलाषा फिल्म से और बहुत ही खूबसूरत गीत है। आप इस गीत को सुने फिर बताएं हमें। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ ipgdelhi@gmail.com। लता जी की आवाज बहुत ही खूबसूरत है।

और सुबह सुबह देखिए हमारा भी कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको प्रवचन दें या कुछ करें, भाई हम तो आपको सुनवाना चाहते हैं खूबसूरत गीत और आपकी सुबह के और हसीन बनाना चाहते हैं। मुझे पता है देखिए बहुत सारे साथी चाय पी भी चुके होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ साथ अगर खूबसूरत गाने सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। ये देखिए अगला गीत सुरेश वाडेकर और शैलेंद्र जी की आवाज में, परिंदा फिल्म से।

हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे आसपास से, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका ही खुशी का ध्यान भी हम जरूर रखें। उनके ऐसी बात ना कोई कह दें कि जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। और देखिए, सुबह सुबह अगर ऐसा करेंगे तो सारा दिन खराब होगा, और ऐसे भी कहेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, रिश्तों को सहेज के रखें।

कहते हैं ना कि रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। बाकी पूरी दुनिया आपकी बात नहीं समझती, लेकिन उसी एन वक्त पर जो दोस्त होता है ना, वही हमारी उस बात को समझता है, वो हमें समझाता है और बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ जाता है। तो आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने उस खास दोस्त को एक बार जरूर आप थैंक यू बोलिएगा। कहीं थोड़ा सा वक्त घूमने के लिए निकालें, थोड़ा बैठें कहीं पर, दिल की बात करें, मिलें उस अपने दोस्त से। क्योंकि अक्सर होता है कि हम भी जानते हैं आजकल इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है कि समय नहीं है एक दूसरे के लिए, तो थोड़ा सा समय निकालें और खूबसूरत लम्हे अपने दोस्तों के साथ जरूर बिताएं। वैसे भी आज रविवार है और रविवार को ही अगर गेट टूगेदर हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जो दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता है ना, जो आपने मस्ती की होगी अपने दोस्त के साथ, उसे कभी ना खोने दें, उन ना ही खूबसूरत यादों को और ना ही उस साथ को। तो उस साथ के लिए हमेशा उसका हाथ थामे रखना। और अगला बहुत ही खूबसूरत गीत ये जो मैं चुनकर लाई हूँ आपके लिए, ये है पहेली फिल्म से MM करीम की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत गीत है लागा रे जल लागा। हमने पिछले रविवार को जल बचाने को लेकर एक बहुत ही अच्छा सा कार्यक्रम किया था, तो आपने जल के महत्व को भी समझा था। और ये गीत जल बरसने के लिए, जल बचाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप इसे ध्यान से सुने।

दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पिछले रविवार को एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम किया था जल बचाने को लेकर, और इस गीत से जब आप इसको सुनेंगे ना तो बरसात के मौसम से लेकर जल बचाने से लेकर हर तरह का आपको इससे भाव पैदा होगा। क्योंकि अब जैसे देखिए, मेरी साथी हैं कुसुम, वो आ चुकी हैं स्टूडियो में।

0: तो कब से हम वो वेट कर रही थी क्योंकि गाने उन्होंने ही निकाले हैं बहुत ही खूबसूरत सुर। तो कुसुम आप क्या कहना चाहते हैं इस गीत को लेकर?
1: मैं तो जो आपकी सोच है ना सुषमा, उसी के बारे में सोच रही थी कि पिछली बार भी मैंने प्रोग्राम आपका सुना, वाकई जल को लेकर और बचाने को लेकर आपने बहुत सारी जितने भी त्याग हो सकते थे वो बताए कि आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबके पीछे एक ही उपाय मुझे लगता है कारगर सिद्ध होगा कि हम हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखा दें, जैसे हमसे हो, मतलब हम लगाए कुछ अपनों से लगवाए, नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी लोग हैं हमारे सबसे कहें भाई अगर जल बचाना है कल बचाना है तो इसके लिए आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली पैदा करनी होगी, उसको बचाना होगा, सुरक्षित करना होगा, उसको बढ़ाना होगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इस बार बरसात में हम एक चीज और आपने देखी होगी कि बस दिल्ली में एक दिन बारिश हुई, दिल्ली डूब गई, लेकिन उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही है, गर्मी इतनी सारी हो रही है। सुबह सुबह तो मौसम अच्छा है, सुहावना है, लेकिन बारिश ना होने के पीछे भी बहुत सारे कारण है। और हाँ मैं बिल्कुल सूखे की तरफ थी।
1: हाँ जी, बारिश लेकिन उतनी नहीं जितनी हम मौसम से उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम है बरसात का और
0: जी,
1: लेकिन क्या है बारिश का जो हमारा बारिश का जो छपाछप होती है
0: हाँ वो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार बारिश में तो दिल्ली बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, पर उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हो जाती है, तो मजा आता है बारिश में भीग रहे हैं। नहीं, और इसका दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि आजकल हमने जो कहते हैं ना पत्थरों के पहाड़ खड़ा कर दिए हैं, सड़कों के ऊपर पत्थर बिछा दिए, पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता। हाँ जी जी जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाना होगा ताकि जमीन के अंदर भी पानी जाए, और हम सबको वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जी जी, तो दोस्तों इसी खूबसूरत संदेश के साथ कि आप पानी बचाएंगे क्योंकि जल ही जीवन है, बढ़ावा देंगे। जी जी जी, तो मुझे और कुसुम जी को दीजिए इजाजत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम, और अब समय हुआ है समाचारों का।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी।

0: लग गए हैं ना, जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
4: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
3: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
4: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
3: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
5: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
3: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
6: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
3: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2000

0: 26 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के

0: प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा सम्पन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने सीजेपी के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी सीजेपी ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्वाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: ना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहा सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता जबकि खवातीन की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की जिसमें इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने CJP के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के लिए CJP की जानिब से पेश किए गए 5 निकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजावीज पर संजीदगी से गौर करेगी और CJP के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। CJP के आला तर्जुमान सौरभ दास ने नेक नियति के इजहार के तौर पर एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया और उम्मीद जाहिर की कि तयशुदा शराइत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा।
2: कांग्रेस जनता पार्टी declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं।
0: इस दौरान CJP के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानका ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर दें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा वजारत तालीम का भी चार्ज दिया गया है। जनाब जोशी फिलहाल गजा सारिफीन के उमूर और अवामी निजाम तकसीम और नई और काबिल तजदीद तवानाई जैसी वजारतों के भी वजीर हैं। ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत और रहनुमाई के तहत महकमे में उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर से मरकजी वजारती कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। ये बिल ऐवान की कल की कार्रवाई के एजेंडे में शामिल है। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। मरकजी काबीना ने जुमे को तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसव्वदे को मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तिलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को

0: सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से 2 रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीजन के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहिरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताजा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हुकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत हैं। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन से नज्म व जब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जा बंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी की हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजादारी को खत्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात की आईने के साथ हैं मोहम्मद अमार।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित द्राक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेन्द्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझबूझ को फरोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर CJP ने अपना एहतजाज वापस लिया, इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफे अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फेहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं कहते हैं कि एक सच्चे लेखक की पहचान यही है कि जब वो किसी का दर्द लिखे तो पढ़ने वाले की आंखों में अनायास ही पानी आ जाए, और जब वो उम्मीद की बात करे तो सोए हुए मन में एक नई रोशनी जग उठे। हिंदी साहित्य में मिट्टी से जुड़े ऐसे ही एक रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। क्यों आज भी गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की गलियों तक प्रेमचंद।

0: उनके लिखे शब्द उतने ही सच्चे और अपने से लगते हैं। तो आइए सुनते हैं शब्दों के इस खास सफर से और महसूस करते हैं कि कैसे एक संवेदनशील रचनाकार समाज में किस तरह परिवर्तन लाते हैं। इन्हें सबको समेटे आइए सुनते हैं परिचर्चा मुंशी प्रेमचंद का साहित्य संवेदना से जागरण तक। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ कथाकार डॉ. विवेक मिश्र, वरिष्ठ कथाकार डॉ. अजय नावरिया और प्राध्यापक डॉ. राकेश कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉ. राकेश कुमार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष मंच पर मैं आप सभी श्रोताओं का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रचनाकार की साहित्यिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिनके बिना भारतीय समाज, उसकी मिट्टी की सौंधी महक और उसके अंतर विरोधों को समझना लगभग नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। जब हम संवेदना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेमचंद के यहाँ इसका मतलब किसी के दुख पर तरस खाकर आंसू बहा देना नहीं है। प्रेमचंद की संवेदना वह पारदर्शी लेंस है जिससे वे होरी के फटे कुर्ते की बेबसी को देखते हैं, हामिद के 3 पैसे के चिमटे के पीछे छिपे अपनी बूढ़ी दादी के प्रति अगाध प्रेम को महसूस करते हैं और गंगी के उस सन्नाटे को सुनते हैं जो ठाकुर के कुएं पर पानी की एक बूंद के लिए पसरा हुआ है। उनकी संवेदना समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की धड़कनों से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने कहा था, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उनका यही विचार उनके साहित्य को केवल संवेदना तक सीमित नहीं रहने देता बल्कि उसे जागरण का माध्यम बना देता है। वे पाठकों को केवल रुलाते नहीं, वे उन्हें झकझोरते हैं, बेचैन करते हैं और अंततः सोचने और बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, तब प्रेमचंद का साहित्य हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में 2 बेहद प्रबुद्ध वक्ता मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा विवेक मिश्र जी से। विवेक जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य की शुरुआत सोजे वतन जैसी देशभक्ति की कहानियों से होती है और अंत गोदान के कठोर यथार्थ पर। उनकी कहानियों में जो संवेदना है वह केवल आंसू बहाने वाली सहानुभूति नहीं बल्कि पाठक के भीतर एक बेचैनी पैदा करती है। एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद की सहानुभूति से बेचैनी तक की यात्रा को आप कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रेमचंद अपने कथा संसार में, अपनी कहानियों में संवेदना को पकड़ते हैं, उसे साथ लेके चलते हैं, लेकिन वो केवल भावुक करने तक का प्रयास नहीं होता है, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी कहानी में मात्र एक कहानीकार नहीं है जो एक भाषा में, एक देश काल परिस्थिति में विशेष कहानियां लिख रहे हैं। वे भाषा और भाषा में विधा दोनों का निर्माण करते हुए एक साथ चल रहे हैं। वो उस समय आते हैं कहानी की दुनिया में, तो वहां पे वो अपनी कथा में, अपनी भाषा में, अपने शिल्प में उतनी संवेदना जरूर रखते हैं कि आप उस विषय से जुड़ सकें, लेकिन आप उनकी कहानियों में पढ़ते हुए जब आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो बहुत जल्दी यथार्थ के धरातल पे उतरती हैं। वो आपके सामने प्रश्न खड़े करती हैं और आपको सोचने पे विवश करती हैं। ये उनकी कहानियों की विशेषता भी है और मैं कहूंगा कि उनकी वो जो ताकत है वो आज भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि आप ये समझिए कि उनके लिए वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस समय प्रेमचंद की कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। तो एक जो विशेष चीज हम वहां देखते हैं वो चेंज ऑफ हार्ट है, हृदय परिवर्तन उनकी कथा का विकास बिंदु है। जब भी आप देखेंगे कि वो यथार्थ में उतरते हैं तो कोई भी चरित्र प्रेमचंद की कहानी में जैसा प्रारंभ में होता है अंत तक वैसा नहीं रहता, वो एक विकास यात्रा करता है, यानी कि वो हृदय परिवर्तन में भरोसा करने वाले बहुत बड़े कथाकार हैं और इसलिए वो उन परिस्थितियों को आपके सामने जस का तस रखते हैं, उस यथार्थ की कई परतों को आपके सामने जस का तस रखते हैं। इसलिए वो संवेदनशील कथाकार होते हुए भी यथार्थवादी कथाकार मैं उस कहूंगा, और यथार्थ के कई स्तरों को उजागर करके सामने रखने वाले और हर कहानी से एक समाज के सामने, पाठक के सामने एक प्रश्न रखने वाले कथाकार के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो प्रेमचंद ने जो चेंज ऑफ हार्ट वाली बात है वो एक बात ये भी कहती है, उस दौर के अंदर एक ये भी गांधी का भी एक बड़ा योगदान रहा और एक बड़ी चेतना के तौर पर गांधी उस पूरे युग में मौजूद हैं और एक बदलाव का एक स्वरूप वहां चल रहा था, सामाजिक बदलाव का भी एक दायित्व

0: प्रेमचंद के यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं इसी विचार को लेकर अजय जी के पास जाना चाहूंगा, अजय जी से चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि अजय जी निरंतर इन विषयों पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अजय जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं, सदगति और मंत्र जैसी कहानियों के जरिए जातिवाद और छुआछूत की अमानवीयता पर सीधा प्रहार किया। आज जब दलित विमर्श, वंचितों की आवाज साहित्य के केंद्र में है, तो प्रेमचंद के इस सामाजिक जागरण को आप किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि आपने जैसा कि हमारा परिचय दिया कि हम कहानीकार हैं, तो हम कहानीकार के तौर पर उनको देख सकते हैं। और दूसरा, चूंकि मैं खास तौर से विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी साहित्य को पढ़ाता हूँ, तो एक आलोचक की दृष्टि से भी देख सकते हैं। मैं कहानीकार की दृष्टि से देखता हूँ। पहले तो मैं पाता हूँ कि प्रेमचंद हमारे एक पूर्वज के रूप में है। पहली बार ऐसा होता है हिंदी कहानी में, खासतौर से हिंदी कथा साहित्य में, कि एक लेखक आता है जो सामाजिक यथार्थ को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसा सामाजिक यथार्थ जो वास्तव में भारत का वास्तविक सामाजिक यथार्थ था और जिसको नजरअंदाज किया जा रहा था। होता यह है कि अगर आप प्रेमचंद से पहले के कहानीकारों को देखें, तो जो चीज सिरे से गायब दिखती है, या कहना चाहिए कि जिसकी तरफ कथाकारों का ध्यान नहीं गया, वह थी जाति व्यवस्था। और भारतीय समाज का यथार्थ है जाति व्यवस्था। प्रेमचंद पहली बार जब आते हैं कथा साहित्य के परिदृश्य में, और प्रेमचंद के आगमन के साथ साथ तीन चार चीजें बहुत मुख्य तौर पर आती हैं। एक आता है जो भारतीय ग्रामीण जीवन है, किसान जीवन। दूसरी चीज आती है स्त्रियों का जीवन। तीसरा, जिसे हम वंचित समाज कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो सब अस्मिताएं, वो सब पहचान जिनको अब तक जगह नहीं दी थी, उनके लिए। और चौथा आता है जो उस समय का, जिसका आपने जिक्र भी किया, गांधी जी के बारे में, तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम की झलक उनके साहित्य में दिखाई देने लगती है। तो ये बताता है कि एक कहानीकार कितना सामाजिक रूप से सजग है। उसके अंदर अपने देश के लोगों के प्रति, जनता के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, वह उनको कितना जागृत कर देना चाहता है। ये जागरण उनकी पहली कहानी में, मैं तो कहूंगा कि उर्दू में जब उन्होंने लिखना शुरू किया था, और सोजे वतन जिस तरह जब्त किया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, उसमें एक कहानी आती है। पहले वो यही मेरा वतन नाम से कुछ ऐसा था, बाद में यही मेरी मातृभूमि से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और ये हिंदी साहित्य में पहली कहानी है जो प्रवासी जीवन पर लिखी गई। मतलब लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लोग सोचते हैं कि प्रवासी जीवन को लेकर प्रवासी विमर्श जो हुआ है उसी से वहीं से हुआ है। प्रेमचंद ने उस जमाने में एक व्यक्ति के बारे में लिख दिया जो वहां से चलकर आता है, भारत आता है, और भारत में भारतीयता की तलाश कर रहा है। और ये भारतीयता कहाँ मिलती है? उसे शहरों में नहीं मिलती। उस व्यक्ति को वह भारतीयता भारतीय ग्रामों में मिलती है, भारतीय गांवों में मिलती है। वह गांव तक जाता है और वहां जाकर उसको ये सब। तो ये जो जागरण है, ये बड़ा व्यापक है। ये जागरण बहुत व्यापक है। ये एक स्तर पर जाति के साथ है, तो दूसरे स्तर पर किसानों के साथ है, तो तीसरे स्तर पर स्त्रियों के साथ है, तो चौथे स्तर पर उन पूरे के पूरे जो स्वतंत्रता संग्राम के जितने डायमेंशंस थे समाज के ऊपर, जो प्रभाव डाल रहे थे, उन सबको भी समेटता है। यानी आप पढ़ते हैं, जब गबन पढ़ते हैं, तो आपको दिखाई देता है, देवी दीन खटीक दिखाई देते हैं वहां पर, उनके बेटों की शहादत दिखाई देती है। कर्मभूमि में आपको कितने चरित्र दिखाई देते हैं, वो पगली लड़की दिखाई देती है जो अंग्रेजों द्वारा सताई गई थी, जिसका बदला अमरकांत लेते हैं। और दूसरे रचनाओं में जी आप देखेंगे कि लगातार उनके यहाँ पर हर तरह के प्रश्न को जगह दी गई
0: जी।
1: और ये जो प्रश्नों को जगह देना है, वास्तव में उस समाज को, मुझे रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पंक्ति याद आ रही, परिचय प्रेम का प्रवर्तक है
0: जी। जी,
1: तो जिस साहित्यकार को, जिस रचनाकार को अपने देश का, अपने समाज का परिचय नहीं होगा, उससे उसको प्रेम भी नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल।
1: प्रेमचंद को मैं कहता हूं, प्रेमचंद ऐसे पहले, मैं सच में अगर इसमें अतिशयोक्ति में भी कुछ कह रहा हूं, तो मैं बिल्कुल, मैं इसको ओन करता हूं कि प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने इतनी शिद्दत से भारत की आत्मा को समझा
0: जी।
1: और उन्होंने जाति व्यवस्था, क्योंकि जाति व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें सिर्फ कोई एक वर्ग है जिसे हम वंचित समाज कहते हैं। नहीं, जाति व्यवस्था का मतलब पूरा वह समाज
0: जो हाशिए पर डाल दिया।

0: जो नहीं, जो सिर्फ हाशिए पर नहीं, हाशिए पर डाल दिया गया ये अलग बात है, मगर उसमें जाति व्यवस्था का मतलब है कि वो प्रिविलेज क्लास भी है
1: जी,
0: और वो क्यों सफरिंग में है, वो क्यों दुख पा रही है, वो क्यों कष्ट पा रही है, कष्ट वह भी पा रही है,
1: वह भी पा रही है, उसके
0: मझोली जातियां हैं जिन्हें हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, वो भी कष्ट पा रहे हैं। यानी पूरा गोदान किस पर है? होरी महतो पर है
1: जी।
0: ना वो सवर्ण है ना वो दलित है, वो किसी किसी ऐसी जाति का है जो इन तीनों से अलग है
1: जी।
0: अगर पूस की रात का हल्कू आप याद करें तो आप ये कहानी पढ़कर ये तय नहीं कर सकते कि हल्कू की जाति क्या है, मगर हल्कू का दर्द आपको लगता है एक किसान का दर्द है, और वो है इतना कष्ट पा रहा है कि आखिर में उसे अपने कुत्ते जबरा से गर्मी मिल रही है, तो उस गर्मी को भी वह छोड़ देना नहीं चाहता है।
1: नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही अजय जी, क्योंकि ये पूरा दौर इस प्रकार का था, और प्रेमचंद लगभग एक जैसे लाइट हाउस की तरह से आज के रचनाकारों को भी देखें तो जैसे आपने कहा कि वो हमारे पूर्वज हैं, हमें लगता है कि वो एक लाइट हाउस हैं, जैसे किनारा दिखाते हैं, एक राह दिखाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई, तो इसी बात से मैं विवेक जी के पास आना चाहूंगा कि क्योंकि कई अनोखे और बहुत शक्तिशाली स्त्री पात्र प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में कहानियों में दिए हैं, जैसे बड़े घर की बेटी की आनंदी का त्याग है, तो गोदान की धनिया का मुखर विरोध है, निर्मला की त्रासदी है, ऐसे अनेक पात्र आपको मिलते हैं। लेकिन वो सिर्फ मात्र शोषण ही नहीं दिखाते बल्कि उनके भीतर जो आत्मसम्मान है, जो विद्रोह है, वो भी दिखाते हैं। आप प्रेमचंद की स्त्री संवेदना को किस प्रकार से देखते हैं? प्रेमचंद के यहाँ पर जो स्त्री पात्र हैं वो किस प्रकार के थे, या उनमें किस प्रकार का सामाजिक जागृति का क्या उद्देश्य प्रेमचंद के यहाँ पर रहा होगा?
2: आप जैसे अजय जी ने कहा, मैं कहूँ कि प्रेमचंद ने कहानी में अभी तक बाहर रहे आए विषय और उन चरित्रों को स्थान दिया जिस पर विशेष ध्यान पहले नहीं दिया जाता था। आप अगर स्त्री चरित्रों में आप निर्मला की तरफ देखते हैं, आप और आगे बढ़े गबन के स्त्री पात्रों को देखते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि वहां वो केवल भावुक चरित्र नहीं है, वहां ऐसे चरित्र नहीं है जिनका शोषण किया जा रहा है, बल्कि वो उठ खड़े होते हैं। और कई बार तो वो बिल्कुल धनिया का चरित्र वो पुरुष जो किरदार है उसके भी बदलाव का कारण बनता है, उसके प्रेरणा का कारण बनता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो इनसाइट आ रही है, आप ये देखें जो उसकी समझ आ रही है वो उसके साथ डिस्कशन से आ रही है, वो उसका जो धिक्कार कई जगह आ रहा है, जो झगड़े में आता है, नाराजगी में आता है, तो वो स्त्री चरित्र ऐसे नहीं है कि जो खुद मुखर होकर अपने लिए आवाज उठाते हैं, केवल वो अपने आसपास के इकोसिस्टम को बदलते हैं, वो आसपास अपने परिवेश को बदलने वाले किरदार हैं जो अपने आप में मिसाल बनते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब प्रेमचंद अपने चरित्रों को गढ़ते हैं, खासतौर से स्त्री चरित्रों को गढ़ते हैं, तो उनके अंदर एक आशावाद आपको हमेशा दिखाई देता है, एक उम्मीद हमेशा दिखाई देती है, जो जैसे मैंने पहले कहा कि एक चेंज ऑफ हार्ट हमेशा दिखाई देता है, एक बदलाव दिखाई देता है। वह हिंदी कहानी में आप देखेंगे कि मार्क्स का साम्यवाद, गांधीवाद और तोल्स्टॉय के लेखन का प्रभाव उनके लेखन पे दिखाई देता है, लेकिन सबके विचार जो अभी अजय जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि अगर आप अपने देश काल परिस्थिति को जानते नहीं है तो उससे प्रेम भी नहीं कर सकते, और जब तक आप उन परिस्थितियों से, उन हालात से, उन जगहों से प्रेम नहीं करते, अपने चरित्रों से वो जुड़ाव महसूस नहीं करते, आप उनकी कथा व्यथा भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये मौलिकता उनके अंदर दिखाई देती है, और स्त्री मन को जिस तरीके से, जिस बारीकी से उस दर्द को वो पकड़ते हैं, वो उनके कथा संसार में आपको हर जगह दिखता है, और कहानियों में तो बहुत मार्मिक रूप से दिखता है। एक और चीज है कि उस समय जब शिक्षा से वंचित है पूरी आधी आबादी, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, फिर भी जो उनकी अंतः चेतना है वो इतनी स्पष्ट है, उनकी सोच कितनी मुखर है, और वो अपने आसपास के चरित्रों को और अपने आसपास के वातावरण को चरित्र किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो उनके लेखन में हमें बार बार दिखाई देता है।
1: आपने बहुत अच्छी बात कही विवेक जी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बदलाव का अजय जी जो स्वरूप है वो धार्मिक समाज, भारतीय समाज में जो जड़ता है, जो पाखंड हैं,
2: बिल्कुल
1: जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, उनको लेकर भी प्रेमचंद के यहाँ पर एक बड़ी सजग दृष्टि रहती है। तो इसी से जुड़ा मेरे आपसे एक प्रश्न है कि प्रेमचंद ने धर्म के ठेकेदारों, पुरोहितों और पाखंड पर बहुत तीखा व्यंग्य किया है, जैसे सवा सिर गेहूं या मोटे राम शास्त्री के जो प्रसंग आते हैं। आज के समय में जिस प्रकार समाज बन रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखते तो हैं, लेकिन अंधविश्वास आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं। तो प्रेमचंद का जो साहित्य है वर्तमान के वैचारिक जागरण के लिए कितना आप उपयुक्त समझते हैं?
0: देखिए, एक चीज तो ये पहली बात में एक चीज छूट गई थी, मैं उसको

0: और जोड़ देता हूँ कि प्रेमचंद इस अर्थ में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार, जहां तक मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं तो जानता हूं, और नवजागरण कब कथा साहित्य में याद कर रहा हूं, चाहे वो भाग्यवती हो, चाहे वो परीक्षा गुरु हो, ये या सौ अजान एक सुजान हो, पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, ये सब उपन्यास हैं, और उससे पहले किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती है, और बहुत सारी कहानियां हैं, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, दुलाई वाली जो है बंग महिला की कहानी, इन सब में आप देखते हैं यहां एक भी मुस्लिम चरित्र नहीं होता। पहली बार मुस्लिम समाज को जगह देने वाले प्रेमचंद, यानी माइनॉरिटी को, अब अल्पसंख्यक समाज को भी जगह देने वाले प्रेमचंद ही हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही जी,
0: और
1: अजय जी, ये बात बहुत
0: ये इसलिए कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि मैंने जो पहले कहा था रामचंद्र शुक्ल जी के उस कथन के आलोक में, वह व्यक्ति जो अपने देश को ठीक से पहचानता है,
1: महत्वपूर्ण।
0: जो उसके उसकी जड़ों को पहचानता है, वह किसी के प्रति द्वेष, नफरत, ईर्ष्या नहीं रख सकता, उसके मन में दूरी नहीं होगी कि रचनाकार के तौर पर। तो जो ये बात आपने कही कि जो जाति के कारण, दो कहानियों का जिक्र किया आपने, सवा सेर गेहूं का और मोटेराम शास्त्री का, एक मुझे वो याद आ जाता है, उस जमाने में कुछ एक सज्जन थे जिन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया था, प्रेमचंद जी के ऊपर, और उनको कहा गया कि ये एक जाति विशेष के प्रति द्वेष रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक ऐसा रचनाकार जो अपने जीते जी कोर्ट में केस लड़ता है, वो जीत जाते हैं, प्रेमचंद जीत जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य एक प्रवृत्ति को रेखांकित करना था जो कि दूसरों के अंदर दूरियां पैदा करती है, भेदभाव पैदा करती है, एक तरह का पाखंड को बढ़ावा देती है। हमारी पूरी कोशिश जो आजाद भारत में थी वो वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने की थी, उससे पहले भी जो शिक्षा का, जो आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य था वह एक तरह की वैज्ञानिक चेतना और तर्कवाद को बढ़ाने का था। तो हम अंधविश्वास को पीछे छोड़ देना चाहते थे, मगर कुछ लोग उस धर्म के नाम पर अंधविश्वास को ही पकड़े रहना चाहते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि वही प्रेमचंद एक लंबे समय के बाद उस वर्ग के द्वारा भी प्रश्नांकित होते हैं, लांछित
1: बिल्कुल
0: होते हैं,
1: जी,
0: जिनके लिए वे लड़ रहे थे,
1: कफन के लिए,
0: कफन कहानी के लिए।
1: जी,
0: तो मेरा कहना यह है कि होता यह है कि कुछ ऐसे लोग, एक जो चूंकि भारत जो एक देश है वो एक पूरा का पूरा महाद्वीप है, महादेश है,
1: महादेश है,
0: तो इस महादेश में आपको उस प्रवृत्ति के लोग भी मिल जाएंगे जो आप अच्छा करने वाले व्यक्ति को भी रोकते हैं, और इधर भी मिल जाएंगे, उधर भी मिल जाएंगे, और तीसरी तरफ भी मिल जाएंगे। तो प्रेमचंद उस समय भी लांछित हुए, प्रताड़ित हुए, और इतने लंबे समय के बाद भी प्रताड़ित हुए और लांछित हुए, परंतु क्या इससे प्रेमचंद छोटे हो गए? नहीं। उत्तर है कि प्रेमचंद की इससे प्रासंगिकता का पता चलता है हमें, कि प्रेमचंद इस अर्थ में प्रासंगिक हैं कि उन्होंने उस जमाने में ऐसी कहानियां लिख दी जो कहानियां बहुत लंबे समय तक बीच में सिरे से विलुप्त रहे। उस तरह की कहानियां नहीं मिलती, आप नई कहानी के दौर में एक भी कहानी नहीं पाते।
1: सही कह रहे,
0: आप अज्ञेय के यहां पर एक भी कहानी नहीं पाते हैं उस तरह की, यशपाल के यहां पाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: आप उनके यहां नहीं मिलेगी आपको कहानी इस तरह की जैसी कि प्रेमचंद ने कहानी लिखी जैनेन्द्र कुमार के यहां, मगर आपको जयशंकर प्रसाद के यहां मिल जाएगी। तो आप ये देखें कि प्रेमचंद किस अर्थ में महत्वपूर्ण है, कि वह जागरण, वास्तव में जागरण के लेखक है, जागरण के कथाकार हैं। संवेदना का तो कथाकार होता ही है कथाकार,
1: जी बिल्कुल,
0: मगर अगर वह वास्तव में सामाजिक जागरण का, राजनीतिक जागरण का, मूल रूप से किसी जागरण का, क्योंकि जागरण क्या है, कोई जागरण सिर्फ सामाजिक परिवेश पर घटित नहीं होता, जागरण पहले अंतस में होता है, बौद्धिक स्तर पर होता है, फिर वह बौद्धिक स्तर जो है वो समाज में परिवर्तित रूप आता है। तो प्रेमचंद इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। कहां प्रेमचंद जो उर्दू में लिख रहे थे सोजे वतन, और फिर वहां से छोड़कर हिंदी में आते हैं, और फिर 1936-16 में पंच परमेश्वर छपती है, और आप सोचिए कि पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिख रहे हैं, और जिसमें इतना मशहूर, इतना जवानों पर चढ़ गया खाला का जो, तो क्या तुम बिगाड़ के डर से जो है ईमान की बात ना कहोगे? आप सोचिए कि वो मुहावरा बन गया। तो ये प्रेमचंद की शक्ति है कि वो प्रेमचंद जुम्मन को और अलगू चौधरी को दोस्त बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण
1: बात
0: प्रस्थान है।

0: साहित्य में, कहानी में। मैं समझता हूँ प्रेमचंद इस अर्थ में भी जागरण, सिर्फ जाति के अर्थ में नहीं, धर्म के अर्थ में, जेंडर के अर्थ में, तमाम तरीके के जागरणों को अगर बीज आप देखते हैं तो आपको वहां मिलते हैं।
1: किसान की बात करते हैं तो मिल मजदूर की बात करते हैं, मिल मजदूरों पर जो फिल्म बनती है वो मजदूरों की बात करते हैं।
2: तो विवेक जी वही बात मैं कह रहा था, क्योंकि सिर्फ जैसे अजय जी ने लगभग वो पूरे इस जैसे पूरे विस्तार को उन्होंने अपने संक्षिप्त उत्तर में समेट लिया है, एक भाषा को लेकर भी मुझे मन में सवाल उठता है कि जो प्रेमचंद की जो भाषा है वो भी एक प्रतिमान के तौर पे स्थापित हो जाती है कि आप जब भी असामाजिक यथार्थ की बात करेंगे, इस सामाजिक जागरण की बात करेंगे तो उस भाषा में आप लिखें जिसे जो प्रेमचंद लिख रहे थे।
0: बिल्कुल।
2: तो आप स्वयं एक कथाकार हैं और आप खुद प्रयोग करते हैं भाषा को लेकर, प्रेमचंद के इस महत्वपूर्ण योगदान को आप किस तरह से देखते हैं जो भाषा और संवेदना के स्तर पर हुआ कर रहे थे?
1: बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रेमचंद हिंदी कहानी में मात्र एक कहानीकार नहीं है, वो एक जागरण के प्रवर्तक हैं। साथ में जब वो साहित्य में आते हैं तो वो एक साथ भाषा की निर्मिति भी हो रही है, विधा को भी समृद्ध करते हुए चल रहे हैं। उनके सामने या उनके पहले ऐसा कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है जिसको देख के वो इस चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि वो अपनी मौलिकता से, अपने अध्ययन से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी भाषा और भाषा में कहानी विधा को जिस तरीके से वो समृद्ध करते हैं, उनकी भाषा कहाँ से आ रही है? वो लोक से आ रही है, वो उस जनजागरण के संघर्ष से आ रही है, वो आजादी के उस आंदोलन से आ रही है। सो इसलिए आप ये देखेंगे कि आपको उनकी सोच और तेवर में कहीं मार्क्सवाद दिखाई देगा, लेकिन कहीं उनकी भाषा और लोक संस्कृति में आपको गांधी खड़े दिखाई देंगे। और इसीलिए उनकी भाषा आज मैं समझता हूँ कि हिंदी कहानी में एक मानक की तरह आप अगर देखें कि उस समय के कथाकार, इसलिए उस पूरी धारा को ही उनकी भाषा की वजह से भी खासा पहचान भी मिली और बड़े लंबे समय तक उसका लोगों ने अनुकरण भी किया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चरित्र, जो अभी अजय जी ने भी कहा कि जिस तरह से उनके किरदार जिस जमीन से आते हैं, वो अपनी जमीन के शब्द, वो संवेदना अपनी भाषा में लाते हैं, और ये आसान नहीं है। जो भाषा प्रेमचंद के यहाँ आपको मिल रही है और उसको वो सहज पाठ के लिए तैयार भी कर दे रहे हैं, उनकी जो उसमें आप अगर शिल्प में देखें तो कोई बहुत साहित्यिक व्यक्ति ना भी हो या जिसका लोक भाषा से उतना जुड़ाव ना भी हो, तब वो भी अगर प्रेमचंद को पढ़ता है तो वो बहुत आसानी से उसको आत्मसात कर सकता है, समझ सकता है। ये है क्योंकि वो हर चरित्र को जहां से उठाते हैं उसकी जमीन को वो बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, पकड़ते हैं। तो जब वो संवेदना के स्तर पे आप उस जमीन से उठाते हैं तो उसके शब्द आपके साथ चले आते हैं और लोक हिंदी में उस तरीके से आ जाता है कि आपको वो अपठनीय नहीं लगता, आपको कहीं नहीं लगता कि हम इसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बल्कि वो सबके लिए वो सहज, सरल और सामान्य बना देते हैं। यही कारण है कि उनकी मतलब विषयों के विविधता के बाद भी उनकी कहानियां कहीं अपठ नहीं होती। पठनीयता उनका एक विशेष गुण है कि किसी उम्र का पाठक भी उन कहानियों से बड़े आसानी से और बहुत सहजता से जाता है। ये और बात है कि सब अपनी समझ से उसका पाठ अपने अपने तई अलग अलग निर्मित करते हैं, तो उनकी भाषा एक ये विशेषता है।
2: बिल्कुल सही बात कही, इसलिए कहा भी जाता है कि प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी हैं। और वीर जी और अजय जी आपने बहुत बारीकी से और प्रेमचंद के साहित्य के अवदान को याद किया है, आपने ये बताया है कि किस प्रकार से भारतीय समाज को पूर्ण रूप में अगर जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के पास जाना ही पड़ेगा। और प्रेमचंद दादा के भी उतने प्रिय हैं जितने पिता के, और उतने ही प्रिय हैं तो आज की जो जनरेशन है वो भी प्रेमचंद से शुरुआत कर सकती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि जब तक समाज में कर्ज के बोझ तले दबे किसान रहेंगे, जब तक अभावग्रस्त घीसू माधव रहेंगे, जब तक गंगी को कुएं से पानी लेने से रोका जाएगा, तब तक मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हमें झकझोता रहेगा और जगाता रहेगा। विवेक मिश्र जी, अजय नावरिया जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इस गंभीर विषय पर इतनी सार्थक चर्चा की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।
3: मुंशी प्रेमचंद का साहित्य संवेदना से जागरण तक, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर विवेक मिश्र, वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर अजय नावरिया और प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार डॉक्टर गायत्री सक्सेना।
4: दिल्ली में जुलाई का तीसरा सप्ताह मानसून की भीनी भीनी बारिश के साथ साहित्य प्रेमियों के लिए भी सुहाना रहा। शनिवार 18 जुलाई हिंदी भवन गाजियाबाद में गोपाल दास नीरज जी की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथियों में श्री नारायण गिरी महाराज, श्री

0: संतोष यादव, श्री नरसिंह नंद उपस्थित रहे। आमंत्रित कवियों में सर्वश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सर्वेश अस्थाना, पवन कुमार, महेश श्रीवास्तव, शशांक नीरज, डॉक्टर सीता सागर, डॉक्टर किरण शामिल रहीं। इन कवियों ने अपने सुमधुर काव्य से समा बांधा और श्रोता दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी दिन एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारतीय भाषा परिषद पुस्तकालय में प्रथम साहित्य व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास का महत्व विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के स्वागत वक्तव्य में श्री आशीष झुनझुनवाला ने कहा कि परिषद युवाओं और विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए हर महीना ऐसे व्याख्यान आयोजित करता रहेगा। साथ ही हिंदी के 1000 साल के साहित्यिक गौरव को भी उजागर किया। उन्होंने ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी लोक भाषाओं के साहित्य को हिंदी के इतिहास का अंग बनाया, जिसका लाभ लाखों विद्यार्थी उठा रहे हैं। अंत में कार्यक्रम का समापन श्रीमती विमला पोद्दार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए किया। रविवार 19 जुलाई को एसएस स्टूडियो निर्माण विहार दिल्ली में शब्द राग साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे श्री गोपाल दास नीरज जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पर्पल पैन संस्था द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन श्रीमती वसुधा कनुप्रिया ने किया। कार्यक्रम का आरंभ नीरज जी के काव्य संसार, उनके गीतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित कवियों में सर्वश्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अनिल मीत, मनोज मिश्रा कप्तान आदि शामिल रहे। इन कवियों ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से वातावरण को पूरी तरह काव्यमयी बना दिया और आमंत्रित गायकों ने नीरज जी के कालजयी गीतों को अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर श्रोताओं की भरपूर सराहना प्राप्त की। इसी दिन एक अन्य कार्यक्रम NEA भवन सेक्टर 6 नोएडा में श्री सुरेश चौरसिया द्वारा लिखित पुस्तक धैर्य अंगारे का विमोचन किया गया। आमंत्रित अतिथियों में सर्वश्री चंचल साधक, श्रीमती किरण सिंह, श्रीमती अंजलि करण सरधाना, श्रीमती शशि पांडे शामिल रहीं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि में सर्वश्री राजीव नारायण मिश्रा, MP सिंह स्वामी, स्वामी पद्म नारायण आचार्य, विपिन मलहन, शालिनी सिंह, आलोक द्विवेदी, US शर्मा, कपिल शर्मा शामिल रहे। मंगलवार 21 जुलाई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में जानी मानी लेखिका डॉक्टर वर्तिका नंदा के उपन्यास ज से जेल का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी, न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता और प्रोफेसर वर्तिका नंदा शामिल रहीं। समारोह में बोलते हुए न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता ने कहा कि यह पुस्तक कैदियों की जिंदगी में उम्मीद और रोशनी लाने के लिए एक प्रेरणादायी पुस्तक हो सकती है। जा से जेल केवल एक शब्द का सफर नहीं, बल्कि एक मानवीय संवेदनाओं, संघर्षों, जीवन के उन अनकहे पहलुओं का दस्तावेज है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बुधवार 22 जुलाई को जानी मानी लेखिका चंद्रकांता शिवाल का प्रथम काव्य संग्रह माँ फूलों में का विमोचन देवनगर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कवि श्री अनिल वर्मा मीत, डॉक्टर अलका सिन्हा, डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन, डॉक्टर सुधाकर पाठक, डॉक्टर चंद्र सेन सहित अनेक साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। इस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामचंद वर्मा साहिल ने की। कार्यक्रम का संचालन युवा कवित्री डॉक्टर भावना शुक्ला ने की।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रही थी। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार डॉक्टर गायत्री सक्सेना। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: और अब समय हुआ है कार्यक्रम हमारे अतिथि का। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर मनोज वर्मन, जाने माने टनल एक्सपर्ट व रंगकर्मी, भेंट करता व प्रस्तुति काजल सूरी।
3: नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर मनोज वर्मन। डॉक्टर मनोज वर्मन देश के अग्रणी टनलिंग और रॉक इंजीनियरिंग विशेषज्ञों में से एक

0: वे टनल टाइम्स इंडिया पत्रिका के संस्थापक हैं और टनल टेक तथा टनल एफएम जैसे मंचों के माध्यम से टनलिंग और भूमिगत निर्माण क्षेत्र में संवाद, प्रशिक्षण और समावेशता को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर वर्मन रंगमंच से भी गहराई से जुड़े हैं और एक सक्रिय अभिनेता है। वे मानते हैं कि इंजीनियरिंग केवल गणना और डिजाइन तक सीमित नहीं है, उसमें संवाद, संवेदना और अभिव्यक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो मैं आपका जानना चाहूंगी, जो आपका सफर रहा है, कैसा सफर रहा है जिंदगी का आपका सफर?
1: जी, मेरी यात्रा बहुत सीधी रेखा में नहीं चली, बल्कि धीरे धीरे बनती चली गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय मुझे ये महसूस होने लगा था कि जमीन के नीचे जो दुनिया है ना, वो जितनी जटिल है उतनी ही या उससे भी ज्यादा रोमांचक है।
0: जी।
1: और जैसा आपने कहा कि मेरा एक शैक्षणिक पड़ाव आईआईटी दिल्ली भी रहा और वहाँ मुझे
0: यहाँ मैं कहना चाहूंगी आपको, जैसे आपने आईआईटी दिल्ली की बात कही, तो आपकी जो यात्रा है आईआईटी दिल्ली से टनलिंग तक, टनलिंग एक्सपर्ट तक की यात्रा के बारे में भी आप हमें बता रहे हैं।
1: जी जरूर। तो वही मैं बता रहा था कि आईआईटी दिल्ली में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ की पढ़ाई ने मुझे गहराई से सोचने, सवाल पूछने और जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याओं को एक साइंटिफिक रूप से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की आदत दी।
0: जी।
1: तो वहीं से मेरा रुझान इस क्षेत्र की तरफ हो गया था। लेकिन इस क्षेत्र की, यानी कि टनलिंग और रॉक इंजीनियरिंग में झुकाव इसलिए भी हुआ क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है क्योंकि देखिए, हर पहाड़ अलग होता है, हर चट्टान अलग होती है, हर सुरंग की अपनी कहानी है, हर शहर में जो मेट्रो बनती है उसकी अपनी अलग कहानी होती है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इंजीनियर तो होना ही पड़ता है, जो मैं हूँ, एक जियोलॉजिस्ट की तरह भी सोचना पड़ता है, जो मैं नहीं हूँ, और कई बार आपको निर्णय बहुत प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के साथ, बहुत व्यावहारिक परिस्थितियों में निर्णय लेने पड़ते हैं। हर समय किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। और धीरे धीरे, आपने यात्रा की बात की, धीरे धीरे इस क्षेत्र में काम करते हुए मेरा अनुभव बढ़ता चला गया और भारत में और विदेशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट से, परियोजनाओं से मैं जुड़ा, वहां से सीखने का अवसर मिलता गया। तो काजल जी, आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं मैं, तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि टनलिंग ने मुझे केवल एक प्रोफेशन नहीं दिया, एक पेशा नहीं दिया, बल्कि सोचने का एक तरीका दिया है। वो है गहराई में जाकर सोचने का तरीका।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही। और जिंदगी को गहराई से सोचने वाले ही अक्सर आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती है। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टनलिंग की जब हम बात करते हैं तो वो आम आदमी के जीवन से कैसे जुड़ती है?
1: जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अक्सर लोग टनलिंग को केवल इंजीनियर्स का विषय मानते हैं।
0: जी।
1: लेकिन सच तो ये है कि टनलिंग बहुत गहराई से आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए, जब हम मेट्रो में सफर करते हैं या पहाड़ों में किसी पहाड़ी सुरंग से गुजरते हैं या हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनती है, जल विद्युत परियोजनाओं से, या शहर में जो पानी की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, जो भूमिगत है, उनको देखते हैं, तो इन सबके पीछे कहीं ना कहीं टनलिंग और भूमिगत निर्माण होता है। सुरंग, देखिए, केवल रास्ते को छोटा करने के लिए नहीं बनती, हालांकि वो उसका मुख्य उद्देश्य है। ये टनल्स जो है, ये सुरंगे हैं, वो जीवन को सुरक्षित, तेज और कन्वीनियंट भी बनाती हैं, सुविधाजनक बनाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगे एक बहुत बड़ा काम ये करती हैं कि लोगों को साल भर संपर्क में रख सकती हैं। अभी पिछले दिनों जोजीला टनल का शुभारंभ हुआ, तो वो अब 12 महीने वो इलाका जोड़ा रहेगा आपकी जम्मू कश्मीर से,
0: जबकि बहुत खतरनाक रोड है वो
1: जोजीला वाली। जी जी। तो अब टनल के माध्यम से वो 12 महीने खुला रहेगा, ये नहीं कि बर्फ गिरा और बंद हो गया। और शहरों में जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, भूमिगत मेट्रो है, जो यूटिलिटी टनल्स हैं जिसके जरिए बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, उनके लिए, और शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए, जगह की कमी को की समस्या का समाधान करने के लिए ये सुरंगें बड़ी काम आती हैं। तो ये लोगों की जिंदगी से बहुत जुड़ी है। और मुझे एक बात ये कहनी है कि आम लोगों को ये समझना चाहिए कि सुरंग जो उन्हें कुछ मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, कई वर्षों की योजना, सर्वेक्षण, डिजाइन, जोखिम का प्रबंधन और पता नहीं कितने हजारों लोगों का परिश्रम होता है। क्योंकि देखिए, टनल्स दिखते कम हैं लेकिन समाज को जोड़ने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। जी, अभी हमने जोजीला टनल के बारे में बात की, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत, विशेषकर हिमालय में, टनलिंग की जो मेन चैलेंजेस हैं, मुख्य चुनौतियां हैं, वो क्या हैं?
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि जो हिमालय पर्वतमाला हमारे पास है, वो भारत के उस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल टनलिंग मीडिया है हिमालय।
0: जी, जी, जी।
1: बहुत चुनौतीपूर्ण है, हिमालय में कई गुना बढ़ जाती है टनल्स की चुनौती, क्योंकि हिमालय अगर भूगर्भीय दृष्टि से देखें, जियोलॉजिकल दृष्टि से देखें, तो ये बहुत युवा पर्वत है। यहाँ चट्टानों की स्थिति जो है वो अक्सर जटिल होती है, तो कहीं आपको कमजोर चट्टान मिलती है, कहीं फॉल्ट जोन शेयर जोन मिलते हैं, ये वो नाम है फॉल्ट जोन शेयर जोन।

0: बिल्कुल एक तरह समझ लीजिए पिसी हुई चट्टान होती है, बहुत खराब। कहीं पे आपको अचानक बहुत सारा पानी मिलता है, वाटर इंडेस बोलते हैं, और कहीं पे जल्दी जल्दी अचानक बदलती हुई जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती है, भूगर्भीय स्थिति बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, और टनल चूंकि लंबी होती है, किलोमीटर तक चलती है, तो ये बहुत समस्या करती है कि आप किस चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि बार बार जियोलॉजिकल कंडीशन बदल जाती है। क्योंकि जमीन के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो आपको वास्तविक स्थिति मिलेगी जब आप टनल की खुदाई कर रहे होंगे, उसका पूरी तरह से अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं होता, हमेशा संभव नहीं होता। आप जितनी भी जांच कर लें या जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर लें, सुरंग खोदते समय पहाड़ आपको कई बार चौंका देता है, खासतौर से हिमालय में। तो इसलिए हिमालयी टनल्स में केवल डिजाइन बनाकर आगे बढ़ जाना काफी नहीं होता, आपको लगातार निगरानी रखनी पड़ती है, लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, फील्ड से सीखना पड़ता है, और आवश्यकता पड़ने पर जो डिजाइन जिसके साथ आपने शुरू किया है प्रोजेक्ट उसमें बदलाव भी जरूरी होता है। और आपने चुनौतियों की बात की, चैलेंजेस की बात की, तो दूसरी बड़ी चुनौती है सुरक्षा, सेफ्टी। सुरंग में जो सुरंग निर्माण के दौरान जो उसमें काम करते हैं लोग, उनकी सुरक्षा, आसपास के एनवायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा। और देखिए बहुत जरूरी चीज है कि जब टनल बनके तैयार हो जाएगी तो भविष्य में उसका सुरक्षित संचालन, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। और हिमालय हमें सिखाता है, अब ये सुनने वाली बात है काजल जी, कि हिमालय हमें ये सिखाता है कि इंजीनियरिंग में जल्दबाजी नहीं, विनम्रता चाहिए।
1: क्या बात,
0: हमें पहाड़ को हराना नहीं है, उसके साथ मिलकर, उसे समझकर, उसके साथ काम करना है।
1: क्या बात, वाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो डॉक्टर बर्मन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टनल टाइम्स इंडिया, टनल टेक और टनल एफएम शुरू करने के पीछे आपकी क्या सोच रही?
0: जी, ये सवाल मेरे दिल को छू गया है, क्योंकि कई वर्षों तक इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे महसूस हुआ कि भारत में टनलिंग में, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में काम तो बहुत हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उस पर एक गंभीर और लगातार निरंतर संवाद की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के जरिए, उसका दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, उस पर चर्चा, उस पर ज्ञान का आदान प्रदान उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो इसी सोच से हमने टनल टाइम्स इंडिया की शुरुआत की, जो मैगजीन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैगजीन है, दुनिया में बहुत मशहूर है। तो मेरा उद्देश्य यह था कि टनलिंग पर केंद्रित एक ऐसा मंच बने जहां पे तकनीकी लेख हैं, प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, नई तकनीकी हैं, और जो इंडस्ट्री की आवाज है वो एक साथ आ सके। और जो बाकी दोनों आपने नाम लिए, टनल टेक और टनल एफएम, ये कॉन्फ्रेंस की तरह की चीजें हैं। टनल टेक की शुरुआत इस विचार से हुई कि जितने विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर्स हैं, कंपनियां हैं, युवा इंजीनियर्स हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं, निर्णय लेने वाले लोग, वो एक मंच पर आएं और खुलकर तकनीकी चर्चा करें। वहीं जो टनल एफएम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये महिलाओं पे केंद्रित है, क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन कई बार उन्हें वो विजिबिलिटी, वो दृश्यता और वो मंच नहीं मिलता जिसकी वे महिलाएं हकदार हैं। टनल एफएम का उद्देश्य महिलाओं की अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को सामने लाना, उन्हें सम्मान देना, और खासतौर से युवा महिला इंजीनियर्स को प्रेरित करना है। तो काजल जी, ये मेरे लिए सिर्फ आयोजन नहीं है, ये मेरी तरफ से उस इंडस्ट्री को, उस क्षेत्र को वापस देने का प्रयास है जिसने मुझे ताउम्र इतना कुछ दिया है।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत ये सोच रही है आपकी। और किस तरह से जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपने टनल एफएम की बात की, जो महिलाओं के लिए, आपने जो महिलाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं या जिन महिलाओं को प्रेरित किया जाता है इस फील्ड में आने के लिए, किस तरह के चैलेंजेस रहे आपके?
0: देखिए, मैं कहूं तो मुझे चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए, और ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 2024 में, अब 3 साल हो गए हैं, तो मुझे लगा कि शायद जो कंपनीज हैं या बाकी लोग हैं वो महिला इंजीनियर्स को इसके लिए पार्टिसिपेंट्स की तरह भेजने के लिए शायद उतने इच्छुक नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने बहुत मुझे इनकरेज किया इस चीज के लिए। और जो पहला हमने किया था उसमें हॉल में, जो हमें आदत नहीं है, 40 महिलाएं बैठी हुई थी। हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पुरुष प्रधान हमारा फील्ड है, उसमें एक दो महिला दिख गई तो दिख गई, वरना तो मर्द ही होते हैं। तो वो मुझे इतना इनकरेजमेंट मिला उससे, और फिर वो 2025 में हुआ, 2026 में हुआ। तो चैलेंजेस के बदले, बल्कि मुझे, मैं तो गदगद हो गया जो मुझे जो रिस्पांस मिला इस टनल एफएम के लिए।
1: जी, इंजीनियरिंग और थिएटर, आप थिएटर से कैसे जुड़े? इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग फील्ड, थिएटर बिल्कुल अलग फील्ड, तो कैसे आप थिएटर से जुड़े? और ये भी जानना चाहूंगी कि इंजीनियरिंग और थिएटर, इन दोनों ने मिलकर आपको कैसे गढ़ा? पहले तो ये जानना चाहूंगी किस तरह से आपका सफर रहा थिएटर में, कैसे आप थिएटर में आए?
0: जी, शुरू में जब बचपन में, मुझे याद है, एक बार हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने स्कूल में मुझे खड़ा किया कि देखिए, ये एक कॉम्पिटिशन है डिबेट का, उसमें आपको जो पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं उसमें बोलना है, और मैं बहुत घबराता था, मंच का जो डर होता बहुत था मुझे, और उन्होंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया और मैं बुरी तरह फ्लॉप हो गया उसमें। तो मेरा पहला प्रयास बिल्कुल ऐसा रहा कि मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर कॉलेज में एक बार ऐसी एक अंदर एक चिंगारी सी उठी कि शायद थिएटर में कर सकता हूं, मैंने अपना उसमें जाके अपना कोशिश की, और फिर

0: पता चला गया तो शायद मेरे अंदर था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग और थिएटर बिल्कुल अलग दुनिया है, ऐसा लगता है उनको, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग तर्क गणना और संरचना की दुनिया है, उधर थिएटर भावना अभिव्यक्ति और मानवीय संबंधों की दुनिया है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो एक दूसरे को, ये दोनों फील्ड एक दूसरे को बड़ी सुंदरता से, बड़े सुंदर ढंग से पूरा करते हैं, क्योंकि इंजीनियर ने मुझे अनुशासन दिया, किसी भी प्रॉब्लम को गहराई से समझने की क्षमता दी और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना सिखाया।
1: क्या बात।
0: तो वहीं थिएटर ने मुझे मनुष्य को समझना सिखाया, उसकी चुप्पी, वो मनुष्य की भाषा, उसका डर, उसका हास्य, उसकी संवेदना। थिएटर ने सबसे बड़ा योगदान ये दिया मेरे जीवन में कि जो मेरा एक्सप्रेशन है, मेरी अभिव्यक्ति को बेहतर बनाया और मुझे समझाया कि देखिए आपके अंदर नॉलेज कितनी भी हो, ज्ञान कितना भी हो, लेकिन ज्ञान प्रभावी तभी होगा जब वो सही ढंग से आप संप्रेषित कर पाए, सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाए। तो आज जब मैं टेक्निकल लेक्चर्स देता हूं या ट्रेनिंग का काम करता हूं या मंच पर बोलता हूं तो मुझे लगता है थिएटर ने मेरी बहुत मदद की। एक इंजीनियर के रूप में मैं सब्जेक्ट को तो समझता हूं, लेकिन एक रंगकर्मी के रूप में मैं कोशिश करता हूं कि सामने वाला भी उसे महसूस करे। तो मेरे लिए काजल जी इंजीनियरिंग और थिएटर का संगम यही है कि एक मुझे गहराई देता है, दूसरा मुझे अभिव्यक्ति देता है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई जिसने आप पर बहुत गहरा असर डाला हो या आपको लगा हो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस एक घटना से, इस एक बात से, कोई ऐसी बात?
0: जी हाँ, देखिए थिएटर और इंजीनियरिंग दोनों में ही कोई एक घटना को बताना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो जहन में आ भी रही हैं, लेकिन एक तो वक्त की कमी है, लेकिन सभी घटनाओं ने मुझे धीरे धीरे धीरे जो मैं हूं वो बनाता चला गया हूं मैं। और मुझे जो ये प्रभावित किया एक चीज ने कि बहुत सारे युवा प्रोफेशनल्स को मैंने देखा कि किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों के जरिए वो आगे बढ़ते गए। तो आज जब मैं मुड़ के देखता हूं तो अपनी जीवन का जब मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे दोनों ही क्षेत्र में ये लगता है कि अगर मैंने टनलिंग में काम ना किया होता या मैंने थिएटर में काम नहीं किया होता तो मैं आज वो नहीं होता जो मैं आज हूं। तो किसी एक घटना को बताना बड़ा मुश्किल है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे सुन के वो बातें।
1: जी, तो युवा इंजीनियरों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको?
0: जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं पूरी संजीदगी से इसका जवाब देना चाहूंगा कि युवा इंजीनियर से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए डिग्री लेना ही काफी नहीं है। इंजीनियरिंग एक लगातार सीखने वाली यात्रा है। किताबें जरूरी हैं, नो डाउट, लेकिन फील्ड से सीखना, लोगों से सीखना, गलतियों से सीखना और जो लगातार नई टेक्निक्स आ रही हैं उनसे सीखना उतना ही जरूरी है। एक बात और युवा प्रोफेशनल्स के लिए कि अपनी जो आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, तकनीकी क्षमता के साथ साथ संवाद कौशल पर भी ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में अच्छा इंजीनियर वही है जो समस्या को समझ सके, समाधान सोच सके, लेकिन उसको अच्छी सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से समझा भी सके। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, अगर ज्ञान आपके व्यक्ति नहीं हो पाया तो उसका प्रभाव बहुत सीमित रह जाता है। तीसरी बात युवा इंजीनियर्स के लिए कि धैर्य रखिए, पेशेंस। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, गहराई समय के साथ आती है। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, तुरंत प्रसिद्धि, तुरंत सफलता की चिंता न करें, उसके बजाय अपने काम में ईमानदारी रखिए और निरंतरता रखिए, लगातार सीखते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात युवा इंजीनियर्स के लिए कि जो भी काम करें उसमें एक पर्पस ढूंढिए, उसमें उद्देश्य खोजिए। इंजीनियरिंग केवल कंस्ट्रक्शन करने का काम नहीं है, केवल संरचनाएं बनाने का काम नहीं है, ये समाज को जोड़ने, जीवन को सुरक्षा

9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें नशे की जाएंगी सुबह 9:50 पर और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अकवालिम जरी पर मबनी शम्मे फरोजन। प्रोग्राम में आज के फनकार हैं विलायत हुसैन सागर और बेगम अख्तर। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्में फंसगे। इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। सुबह 10:30 रूबरू प्रोग्राम के तहत हम आपको सुनवाएंगे मारूफ शायर जनाब अली सरदार जाफरी के साथ की गई एक बातचीत। आपसे गुफ्तगू की जनाब महमूद हाशमी ने। दस बजकर 55 मिनट पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी अपने ख्याल का इजहार फरमाएंगे। सामिन इसके फौरन बाद मन की बात का उर्दू तर्जुमा नशर किया जाएगा। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 तारीख साज प्रोग्राम में आज का मौजू है सनत व हिरफात। पर आप प्रोग्राम सुनेंगे सुर्खियों में। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामान ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

एम वेव से 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए भजन, माफ कीजिएगा शब्द। पेश करें भाई दर्शन सिंह निर्मल और हमनवाब।

0: शब्द पेश कर रहे थे भाई दर्शन सिंह निर्मल और हमनवा। इसके साथ ही सुबह का ही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, आज जब पूरा देश कारगिल के वीरों के शौर्य और बलिदान को नमन कर रहा है, ऐसे में इतिहास के उन पन्नों को पलटना भी जरूरी है जिन्होंने समय समय पर दुनिया की दिशा में बदलने वाली घटनाओं को अपने भीतर संजोया है। आइए जानते हैं 26 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। और 1908 की बात करें तो अमेरिका में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई जो आगे चलकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नाम से प्रसिद्ध हुई। और बात करें 1953 की तो आज ही के दिन फिदेल कास्त्रो और उनके साथियों ने क्यूबा के मोकोंडा बैरक पर हमला किया। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन इसी घटना ने 26 जुलाई आंदोलन की नींव रखी जिसने आगे चलकर क्यूबा की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। और 1965 की बात करें तो 1965 में मालदीव ने ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। ये दिन मालदीव के इतिहास में राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्र पहचान का प्रतीक माना जाता है। वहीं 2005 में नासा ने अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी का सफल प्रक्षेपण किया था और 2005 में ही मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी।
2: एंड नाउ व्हेन वी रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनालिटीज, तो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम किसका है वैष्णवी?
1: सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर उबैद सिद्दीकी के बारे में। विज्ञान की दुनिया में कुछ खोजें केवल

प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के शोध का आधार बन जाती है। ऐसे ही प्रख्यात वैज्ञानिक थे डॉक्टर उबैद सिद्दीकी। आज डॉक्टर उबैद सिद्दीकी की पुण्यतिथि है। वे भारत के अग्रणी आणविक जीव विज्ञानी थे। उन्होंने आनुवंशिकी और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध किया तथा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया था। भारत की कला, संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए जिन विद्वानों के कार्य आज भी मार्गदर्शक माने जाते हैं, उनमें वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज वासुदेव शरण अग्रवाल की पुण्यतिथि है। वासुदेव शरण अग्रवाल प्रख्यात पुरातत्वविद, कला इतिहासकार और साहित्यकार थे। भारतीय संस्कृति, मूर्तिकला और प्राचीन इतिहास पर उनका शोध आज भी महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है। उनकी चर्चित कृतियों में इंडिया एज नोन टू पाणिनि, पाणिनि कालीन भारतवर्ष तथा हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूपाले पर्दे पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें दर्शक वर्षों बाद भी उसी आत्मीयता से याद करते हैं। जुगल हंसराज ऐसा ही एक नाम है। आज जुगल हंसराज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय सफर की शुरुआत की और बाद में कई लोकप्रिय फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। इससे पहले कि हम उनके बारे में और बात करें, आइए आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं। अब से चंद्रमों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

0: इसके साथ ही हुस्नी गजल प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। ये जब सुनिए रूबरू प्रोग्राम के तहत जनाब अली सरदार जाफरी से की हुई महमूद हाशमी की गुफ्तगु।
1: तहजीबों की बाजियाफ्त में सिर्फ किताबों का या कायनात का या मजाहिर का दखल नहीं है। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनसे बातें करके ऐसा महसूस होता है कि हम नए और पुराने जमानों के दरमियान किसी ऐसे महवर पर खड़े हैं जहां तहजीब, तखलीक और अदब सब चीजें यकजा हैं। सरदार जाफरी साहब का नाम किसी के लिए नया नहीं है और इनके किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी पूरी तहजीब उर्दू की तहजीब, उर्दू का कल्चर, उर्दू का अदब, इनका तारुफ। मैं कोई पुरानी बात आपसे नहीं पूछूंगा, तहरीकों के बारे में नहीं, नजरियात के बारे में नहीं, मैं सिर्फ आज की दुनिया में जो कैफियत है तख्लीकी अदब की, और तख्लीकी अदब के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे जमाने में बाज इल्मी तहरीकात और बाज इक्तसाबी जहन ऐसे हैं जिन्होंने तख्लीकी फजा को और खासतौर पर अदबी तख्लीक को और खासतौर पर उर्दू की अदबी तख्लीक को बड़ा मुकद्दर कर दिया है। आपका तजर्बा सिर्फ आपकी उम्र तक मुहित नहीं है, यानी अगर मैं आपको कबीर का हमसर कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, और आज के जदीद तर शायर का हमसर कहूं तो भी गलत नहीं होगा। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह महसूस करते हैं?
2: इस वक्त जो तहजीब, तहजीबों का कहना चाहिए, आम जवाब है, जो सियासी और माशी जिंदगी का इंतशार है, वो सब अदब पर असरअंदाज होता है और चांचे हमारे अदब पर भी असरअंदाज हो रहा है। मैं एक ऐसे नजरिए का कायल हूं जिसके लिए मेरे पास कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, लेकिन तारीखी तजुर्बा बताता है कि वो नजरिया किसी हद तक सही है, और मैं तारीख में मौसमों का कायल हूं। जैसे एक बहार का मौसम होता है और एक खजां का मौसम होता है, इसी तरह से तारीख जो है उसमें भी मौसम आते हैं। एक मौसम होता है बहार का तो हर तरफ बहार ही बहार है, और एक मौसम होता है खजां का और जवाल का तो हर तरफ जवाल नजर आता है। मिसाल के तौर पर हम 16वीं सदी पर अगर चले जाएं तो हिंदुस्तान के तख्त पर अकबर, इंग्लिस्तान के तख्त पर एलिजाबेथ, शेक्सपियर जैसा शायर जहां उर्फी और नजीरी और फैजी और अबुल फजल और तुलसीदास, ये एक हमें मंजर नजर आता है। और अभी हमारी जिंदगी में जिससे मैं गुजरा हूं, आपका तो शायद हाशमी साहब बचपन भी उस वक्त न शुरू हुआ हो, सन 1930 के बाद की बात बता रहा हूं, कि चारों तरफ ऐसा मालूम होता था कि हजारों आफ्ताब तुलू हो रहे हैं। कैसे कैसे अजीम शान नाम थे कि जिनके नामों से एक तखयल को परे परवाज मिलते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद या

मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सामने से कुछ ही देर के बाद मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। सामने हम आपको बता दें इसके फौरन बाद मन की बात का उर्दू तर्जुमा नशर किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: एडमिशन कराने आता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है।

इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर

से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को
एक नया जीवन देने

में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भारत क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी
जंगल को

चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
साथियों,

हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु

0: पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: सामिन, अभी वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडरेशन पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। और ये सुनिए मन की बात का उर्दू तर्जुमा।
4: मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। हमारी जिंदगी में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज करगिल विजय दिवस है। यह दिन हमें फख्र से सरशार कर देता है। यह दिन हमें अपने बहादुर जवानों की बेमिसाल जुर्रत की याद दिलाता है। करगिल की बुलंद वाला चोटियां, दुश्वार गुजार मौसम, दुश्मन का चैलेंज, हर तरह की मुश्किल हमारे फौजियों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चैलेंज से बड़ा था। उन्होंने मादर वतन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर मैं तमाम बहादुर शहीदों और जाबाज फौजियों को अकीदत भरा खिराज तहसीन पेश करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने बहादुरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि उनकी दास्तानी शुजात नई नस्ल तक भी पहुंचाता है। इसी जज्बे के तहत इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के कारगिल वार मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका पैगाम है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि वतन के लिए दी गई कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। साथियों, आज भारत अपनी फौजों की बहादुरी के साथ साथ अपनी की तकनीकी सलाहियत को भी मजबूत बना रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को शामिल किया गया। ये जदीद

जहाज भारत ही में डिजाइन किया गया है और भारत ही में तैयार किया गया है। इसमें 75% से ज्यादा मकामी सामान इस्तेमाल किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत की अलामत है। इसी माह डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी कामयाब तजुर्बा किया। इस कामयाबी के पीछे हमारे साइंसदानों और इंजीनियरों की इज्तमाई मेहनत शामिल है। दो तीन दिन पहले ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया है। साथियों, आज दिफाई पैदावार हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त ममालिक के साथ सियासी ताबुन, भारत मुसलसल नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। इस माह के आगाज में मैं इंडोनेशिया में था, जहां बर्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा माहिदा हुआ है। दुनिया का एतमाद भारत के दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी पर मुसलसल बढ़ रहा है। आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को सलाम करें और एक महफूज, बासलाहियत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर के अपने अजम को मजबूत बनाएं। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात के गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन मुहिम का जिक्र किया था। मैंने आपसे अपील की थी कि बारिश की हर बूंद को महफूज बनाने की इस मुहिम को अवामी तहरीक बनाएं। कैच द रेन का पैगाम बहुत सादा है। जहां बारिश हो, जब बारिश हो, पानी को वहीं महफूज कीजिए। इसलिए 4 जुलाई से मुल्क भर में खसूसी मुहिम भी चलाई जा रही है। इसके तहत बारिश के पानी के जखीरे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने आबी जखायरों की बहाली और शजरकारी को नई रफ्तार दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि चाहे गांव हों या शहर, पंचायतें हों या समाजी तंजीमें, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुओं और बावलियों का आहया किया जा रहा है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जरिया बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के जिला सीधी में तकरीबन 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवर को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मकदार में पानी महफूज करने की सलाहियत पैदा हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में तमाम ग्राम पंचायतें इस मुहिम से वाबस्ता हैं और पुराने तालाबों को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में भी इस मुहिम के हौसला अफजा नतीजे सामने आ रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावली की जिम्मेदारी लें और पानी की हर बूंद को महफूज करें। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा सरमाया है। मेरे प्यारे हमवतनों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम का आगाज हुआ है। हर हिंदुस्तानी शहरी भारतीय दस्ते को मुसलसल अपनी नेक तमन्नाएं पेश कर रहा है। सबकी ख्वाहिश है कि हमारे तमाम खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और लोगों के दिल भी जीतें। साथियों, हमारे नौजवानों ने हालिया दिनों में खेलों के मैदान में कई शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस कामयाबी पर पूरे मुल्क को फख्र है। भारतीय ख्वातीन की क्रिकेट टीम ने भी लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। ये एक तारीखी फतेह है। हमारी टीम ने 270 रन के बड़े फर्क से मुकाबला अपने नाम किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लॉर्ड्स की तवील तारीख में एक खातीन की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने भी इसी मैदान पर मुल्क का नाम रोशन किया है। साथियों, बात छोटी कोशिशें भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। मुझे केरलम के एर्नाकुलम के साउथ चित्तौर में खेलों से मुतालिक ऐसी ही कोशिश के बारे में मालूम हुआ है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के उस्ताद अभिलाष जी निहायत मुनफरिद अंदाज में संस्कृत को मकबूल बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम अक्षर कंदुक रखा गया है। इसमें संस्कृत के रूप को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाली इस्लाहत के साथ जोड़कर आसान अंदाज में समझाया जाता है। इसे सीखने में लुत्फ भी आता है और खेलों से लोगों का ताल्लुक भी मजीद मजबूत होता है। मेरे प्यारे हमवतनों, गुज़िश्ता इतवार विक्रम वन की कामयाब लॉन्च ने हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर दिया है। हम सब भारतीय स्पेस सेक्टर के इस तारीखी लम्हे के गवाह बने। ये प्राइवेट सेक्टर की जानिब से तैयार किया गया भारत का पहला रॉकेट है। हमारे नौजवान इनोवेटर्स ने

एक खूबसूरत झील के नाम पर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजा पानी की एक बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फोमडी मिलकर एक मुनफरिद लैंडस्केप बनाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे एक वसी समंदर में छोटे छोटे जजीरे तैर रहे हों। इसी तरह कायनात में यंग गैलेक्सीज भी एक अजीम साख तश्कील देती हैं। आज मणिपुर की लोकटक सिर्फ मुल्क के नक्शे पर नहीं बल्कि वसी कायनात में भी अपनी रोशनी बिखेर रही है। ये कामयाबी हर हिंदुस्तानी के फख्र में इजाफा करने वाली है। इससे हमारे नौजवानों को ये सबक मिलता है कि वो अपनी रिवायत से जुड़े रहते हुए भी नई बुलंदियों को छू सकते हैं। यही वो जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी रोशन कर सकती हैं। मेरे प्यारे हिम्मतनों, चंद ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा मुल्क नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस मौके पर हम अपने बुनकर भाइयों और बहनों की महारत और उनकी तख्लीकी सलाहियतों का जश्न मनाते हैं। हमारे ऐसे साथी नस्ल दर नस्ल चली आ रही रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हैंडलूम से तैयार किया गया हर लिबास किसी न किसी खित्ते, बरादरी और इससे वाबस्ता बेशुमार लोगों की कहानी बयान करता है। ये वो लोग हैं जो फख्र के साथ भारत की सकाफती विरासत को महफूज रखने में मसरूफ हैं। आज के दिन मेरी आप सबसे अपील है कि हम दस्तकारी को फरोग देकर अपने बुनकर साथियों का एहतराम करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल के जज्बे को मजीद मजबूत बनाएं। साथियों, आज मुल्क में जिस तरह हैंडलूम को फरोग दिया जा रहा है, इससे बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसकी कई मिसालें देखी जा सकती हैं। आज ऐसे बहुत से अफराद और गिरोह हैं जो हैंडलूम की हमारी अजीम रिवायत को नई तवानाई और नई शनाख्त दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की खूबसूरत रिवायत को आगे बढ़ा रहा है तो कोई ख्वातीन बुनकरों को साथ जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है। कुछ लोग कर्लम की रिवायती कसाऊ कला को महफूज रखने में मसरूफ हैं। इससे हमारी माओ और बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और मौजू जिसका मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूंगा वो है खादी। हम सब जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत अजीज थी। गुज़श्ते चंद वर्षों में खादी काफी मकबूल हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी फरोख्त 6 गुना बढ़ गई है। फरोख्त का यह आदाद शुमार अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरी आप सबसे अपील है कि आने वाले त्योहारों में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई और हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे हमतनों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो शायद आप सोच में पड़ जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारे यहां बेशुमार साज और उनसे वाबस्ता रिवायत मौजूद हैं। इनमें से एक साज त्रिपुरा का चौंग त्रेंग है। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत मकबूल है। बांस से बने साज में 3 तार होते हैं। इससे निकलने वाली धुन निहायत सुरीली होती है जो सरोज से काफी मिलती जुलती है। कुछ वजूहात की बिना पर नौजवानों के दरमियान इसकी मकबूलियत कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे दोबारा मकबूल बनाने का आजम किया। आज उनकी कोशिश रंग ला रही है। वो चौंग त्रेंग के साथ वहां के दीगर रिवायती साजों पर भी परफॉर्म करते रहे हैं। कोक, बोरोक, फोक सॉन्ग्स, बॉल सॉन्ग्स, बंगाली फोक इन्हें बहुत पसंद है। अब मैं आपको एक मुख्तसर सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस मौसीकी को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

0: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 12 बजे चाहते हैं अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। आकाशवाणी पर नशर अपने प्रोग्राम मन की बात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल के जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया और मुल्क की बढ़ती हुई दिफाई कुव्वत को नुमाया किया। सीजेपी ने हुकूमत की जानिब से अपने मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद एहतजाज वापस ले लिया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई और सिविल हकूक के मामले पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज से 2 रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है। अमरीकी फौज ने 2 हफ्तों तक ईरान पर जबरदस्त बमबारी के बाद ईरान पर फिजाई हमले रोक दिए हैं। और अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत नई बुलंदियों को छू रहा है, चाहे वह दिफाई पैदावार हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्ताना ममालिक के साथ सियासी तआवुन हो। आकाशवाणी पर आज नशर अपने प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 26 जुलाई वो तारीख है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि ये दिन हर किसी को फख्र से भर देता है और लोगों को मुल्क के बहादुर फौजियों की गैर मामूली शुजात याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीदों और फौजियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि उन्होंने भारत माता के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। जनाब मोदी ने सभी से शहीदों को खराज अकीदत पेश करने और महफूज सलाहियत के हामिल और खुद कफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद तकवीत देने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि इस साल शौर्य विजय यात्रा का इनेकाद किया गया है जो 14 जुलाई से दिल्ली की कौमी जंगी यादगार से शुरू हो चुकी है। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास के करगिल जंगी मेमोरियल पहुंचेगी। इसका मकसद है एक सफर, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि ये सफर हर किसी को ये याद दिलाता है कि मुल्क के लिए दी गई कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्ला अफवाज ने

पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरांदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया था। मरकजी तकरीब लद्दाख के द्रास की करगिल जंगी यादगार पर मुनक्किद हो रही है। करगिल विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि फौजियों की जानिब से मुजाहरा की गई बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतजल अज्म और शदीद हुबुल वतनी भारतीय मुसल अफवाज की बेहतरीन रिवायात का इजहार है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय फौजियों की शुजात ने मुल्क की इलाकाई सालिमियत और यकजहती की हिफाजत की। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बेमिसाल बहादुरी और गैर मुतजल अज्म का मुजाहरा करने पर मुल्क के बहादुर फौजियों को सलाम पेश करता है। उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे हालात में दिखाई गई इस बहादुरी से कौम को हमेशा फख्र का एहसास होता रहेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इन फौजियों की हुब्बुल वतनी और फर्ज के तई फर्ज शिनासी नस्लों को तहरीक देती रहेगी। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब जेपी नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने सीजेपी के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात के लिए सीजेपी की जानिब से पेश किए गए 5 नुकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजवीजों पर संजीदगी से गौर करेगी और सीजेपी के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। सीजेपी के आला तर्जुमान सौरभ दास ने नेक नियती के इजहार के तौर पर एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया और उम्मीद जाहिर की कि तयशुदा शरायत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर दें और पुरम तरीके से अपने घरों को लौट जाएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा वजारत तालीम का भी चार्ज दिया गया है। जनाब जोशी फिलहाल गजा सारिफिन के उमूर और अवामी निजाम तकसीम और नई और काबिल तजदीद तवानाई जैसी वजारतों के वजीर हैं। ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत और रहनुमाई के तहत महकमे में उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इस दौरान सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर से मरकजी वजारती काउंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक को वसत देने के मकसद से आला सतही मसरूफियात का इनेकाद किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हसूलियाबियां हुई, जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और 3 दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने सरबराहाने मुमलकत के साथ वफद की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई, जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और अवाम से अवाम राब्तों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज रफ्तार माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तई अहद बस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तिजारत, जिदत तराजी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत तआवुन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया मुर्मू के दौरे ने मशरकी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दोतरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पीओजेके में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएएसी ने आज से 2 रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका अख्तितम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा।

बात सन 1999 की है दोस्तों, जब मई से जुलाई के दरमियान जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में तकरीबन 60 दिनों तक ये जंग जारी रही और हमारे बहादुर जवानों ने न सिर्फ अपनी जान का नजराना पेश किया बल्कि कौम को वो फख्र भी महसूस करने का मौका फराहम दिया जिसके लिए हर शहरी उनको सलाम करता है।

दोस्तों, कारगिल जंग के 27 साल के बाद भी नागा रेजिमेंट के बहादुर जवान राजेश गुरुंग की आखिरी जो उनका खत था वो पढ़कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। 6 जुलाई सन 1999 को टाइगर हिल्स पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए देहरादून के चांदमारी गढ़ी कैंट के रहने वाले राजेश ने मातृ वतन पर अपनी जान निछावर कर दी थी, लेकिन उनके जरिए लिखा गया आखिरी खत तो उनके खानदान के लिए एक अनमोल विरासत बन गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस जगह पर हम हैं वहां से लौट पाएंगे या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर जिंदा बचे तो 2-3 दिन बाद मेरा फोन आएगा, और नहीं बचा तो मेरी जगह किसी और का फोन आएगा।

1911 तक हिंदुस्तान ज्यादातर माल बरामद करने वाला मुल्क था, लेकिन अब बरामद करने वाला मुल्क बन गया। और ये तब्दीली इतनी तेजी से वाकई हुई है कि हिंदुस्तानी सिक्के की कीमत ज़र मुबादला में गैर मामूली कमी हो गई है। हिंदुस्तान जो कदीम जमाने से सूती कपड़े की सनत का मरकज था, अब अंग्रेजी धागों और बरतानिया में बने हुए सूती कपड़ों से पार दिया गया है। इसको

0: की गुलामी के बाद हिंदुस्तानी सनतकारों और रहनतकशों का ये इस्तेसाल वो तारीखी वजूहात हैं जिनके बाईस आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में सनत हिफत पर खसूसी तवज्जो दी गई और बैरूनी ममालिक से सामान दरामद करने के बजाय खुद अपने देश को खुद कफील बनाने के लिए इकदाम किए गए। तारीख का वो अरसा जो तकरीबन 200 वर्षों पर महीत है उसमें होने वाले नुकसान का तदारुक करने के लिए हिंदुस्तान को बहुत अरसा दरकार था, लेकिन आज़ादी और जमहूरी अकदार के बाईस सदियों की पामाली का हिंदुस्तान ने बहुत कम अरसे में तदारुक कर लिया। आज हिंदुस्तान के हर इलाके की सनतें और दस्तकारियाँ अपने तारीखी मिजाज और वकार के साथ कायम मुतन हैं और हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे इन शोबों की तरक्की के लिए सरगर्म अमल हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे तारीख साज प्रोग्राम तहरीर, जनाब महमूद हाशमी की थी, रावी थे अब्दुल जब्बार और मौजू था सनत व हिरफत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा।

रहमान श्रीनिवास और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म का ये नगमा निगार थे जावेद अख्तर, मौसीकी एआर रहमान की थी। बीएसएल मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म का नगमा सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और साथियों को गाया हुआ। नगमा निगार गुलजार, मौसीकी तरतीब दी है एआर रहमान ने।

0: ये थी मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रहे हैं इन्हें?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो ये बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेस के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट UG जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि न सिर्फ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है और आपने सही कहा।

0: कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को, जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बनाकर देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
1: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
0: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पर जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व्ड है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पोर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते। वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
0: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कोई ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं

0: हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
1: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
0: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में यह भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
1: श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर अदिति जी आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहाँ उस स्तर पर?
0: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसे जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
1: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
0: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
1: बिल्कुल,
0: आप उस मसौदे को समझिए।
1: आर्म फोर्स हैं, उनके
0: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था, AI EEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा। सो ये एक सिंपल इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AI PMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को, जैसा कि पहले होता था 2 लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया।
1: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एकरूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
0: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने

0: शुरुआत से नीट यूजी का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक एमबीबीएस की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे उसमें जेईई मेन और जेई एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। आईआईटीज के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि नीट यूजी बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं नीट यूजी के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
1: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फेडिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। दिन का 1 बजा चाहता है, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल के सोरमाओं को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत और सलाहियत पर फख्र है, जिसका मुजाहरा उन्होंने बैन-अल-अक़वामी साइंस ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी और खेलों में हालिया कामयाबियां हासिल करके किया है। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बढ़ती हुई महंगाई और सिविल हुकूक पर बंदिशों के मामले पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज से 2 दिन के एहतजाज का ऐलान किया है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत की सब जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से हराकर सोने का तमगा जीता है, जबकि ख्वातीन टीम को चांदी का तमगा मिला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क के जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खां ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि ये दिन सभी को फख्र से सरशार कर देता है और लोगों को मुल्क के जांबाज सिपाहियों की गैर मामूली शुजात और दिलेरी की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए शहीदों और सिपाहियों को नमन किया कि उन्होंने मां भारती के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को शामिल किए जाने का जिक्र किया। इस जदीद तर्ज के जंगी बहरी जहाज का डिजाइन खुद भारत ने तैयार किया है और इसे बनाया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले 75% से ज्यादा साजो सामान अंदरूने मुल्क तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत की अलामत करार दिया। मन की बात के अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने साइंस ओलंपियाड का तذکرہ करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं।

इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सर्बिया जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली वापस आ गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत की स्ट्रेटजिक साझेदारी को मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक को वसअत देने के मकसद से आला सतही मसरूफियात का इनेकाद किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हुसूलियाबियां हुई जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शिमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और तीन दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सरबराहान मम्लिकत के साथ वफद की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और आवाम से आवाम के राबतों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज रफ्तार मुआशी तरक्की टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तहत अहदबस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तजारत जिद्दत राजी तालीम डिजिटल टेक्नोलॉजी और कबल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत ताउन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे ने मशरकी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि वो कल ओदेसा बंदरगाह पर माल बरदार बहरी जहाज MV AGN रागनार पर हमले के वाकये के बाद से सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि इस बहरी जहाज में चार भारतीय शहरी सवार थे। इनमें से दो अफराद के महफूज होने के बारे में तस्दीक हो गई है जबकि दो दीगर अफराद के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय जांबाजों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। करगिल विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फौजियों की जानिब से मुजाहरा की गई बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतजल्जल अज़्म और शदीद हुब्बुल वतनी भारतीय मुसल्ला फौज की बेहतरीन रिवायात का इजहार हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा कि भारतीय फौजियों की शुजात ने मुल्क की इलाकाई सालमियत और एकजहती की हिफाजत की। वहीं वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत बेमिसाल बहादुरी और गैर मुतजल्जल अज़्म का मुजाहरा करने पर मुल्क के बहादुर फौजियों को सलाम पेश करता है। उन्होंने कहा कि हाई चैलेंज भरे हालात में दिखाई गई इस बहादुरी से कौम को हमेशा फख्र का एहसास होता रहेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि इन फौजियों के हुब्बुल वतनी और फर्ज के तई फर्ज शनासी नस्लों को तहरीक देती रहेगी। 4,474 यात्रियों का एक जत्था आज सुबह सवेरे सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बुनियादी पड़ाव से रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का रास्ता खुलने के बाद यात्री रवाना हुए हैं। वहां चट्टानों के टुकड़े गिरने से रास्ता बंद हो गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से दो रोजा मुजाहरों का ऐलान किया है जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। अमरीकी फौज ने दो हफ्तों तक ईरान पर जबरदस्त बमबारी के बाद ईरान पर फिजाई हमले रोक दिए हैं। ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि मुकम्मल जंग से बचने के लिए की जा रही सिफारती कोशिशों में तेजी आ गई है। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाहत सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के नगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी के हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता।

0: यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय खिलाड़ियों रोहित पाल, कप्तान केतान कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने एलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल के सूरमाओं को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत और सलाहियत पर फख्र है, जिसका मुजाहरा उन्होंने बैन-उल-अक़वामी साइंस ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी और खेलों में हालिया कामयाबियां हासिल करके किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बढ़ती हुई महंगाई और सिविल हुकूक पर बंदिशों के मामले पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज से 2 दिन के एहतजाज का ऐलान किया है। अनहद सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत की सब जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से हराकर सोने का तमगा जीता है, जबकि खवातीन टीम को चांदी का तमगा मिला। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अभी तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल के सुरमाओं को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत और सलाहियत पर फख्र है, जिसका मुजाहिरा उन्होंने बैनुल अक्वामी साइंस ओलंपियाड में शानदार कारकर्दगी और खेलों में हालिया कामयाबियां हासिल करके किया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क तीन मुल्कों मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में बढ़ती हुई महंगाई और सिविल हकूक पर बंदिशों के मामले पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज से दो दिन के एहतजाज का ऐलान किया है। अरहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप

ने लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और एफआईएच यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत की सब जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 से हराकर सोने का तमगा जीता है, जबकि खवातीन टीम को चांदी का तमगा मिला। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। अब हमारी पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। दिन में 3 दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिरे खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

1963 में आई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इस फिल्म में अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर और अमिता ने अभिनय किया था और यह उस साल की सुपर डुपर हिट हिंदी फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी क्या थी और इस फिल्म से जुड़े कौन सी ऐसी बातें थी, ऐसे रोचक किस्से थे जो आज आपको जरूर सुनने चाहिए, और ये सब मैं आपको अपने इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में बताऊंगा। बस शर्त है सिर्फ इतनी कि आपको हमारे साथ बने रहना है और इस कार्यक्रम को सुनते रहना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और प्यारा सा नगमा इस फिल्म से सुनाते हैं, उसके बाद बात होगी इस फिल्म की कहानी की।

दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो यह लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म थी और इसका जो ताना बाना था वो एक मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ ड्रामा है। और इस फिल्म में अनवर नाम का जो किरदार निभाया है वो राजेंद्र कुमार ने निभाया है। और जो एक बुर्का पहनी हुई लड़की यानी मुस्लिम समुदाय से जो लड़की है उसका किरदार निभाया है साधना ने। और इस पूरी फिल्म में, इसकी कहानी में उनके प्यार, परिवार और सामाजिक उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द पूरी कहानी इस फिल्म की है। कहानी बेहद अच्छी है क्योंकि उस दौर में हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए हम सभी के बीच में जो प्यार होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति केयरिंग होनी चाहिए, उसी का एक बहुत ही सकारात्मक संदेश इस फिल्म के जरिए दिया गया है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन उस दौर में साधना कट हेयर स्टाइल, जी हाँ, जो इस फिल्म की हीरोइन है साधना, उनके जो हेयर स्टाइल है, दरअसल उनके बाल पहले पूरे उनके माथे पर आते थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर H.S. रावल साहब चाहते थे कि उनका माथा साफ दिखे और इस वजह से उन्होंने उनके बालों को थोड़ा सा हेयर स्टाइल में चेंज लाए। और बाद में वो हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि साधना कट नाम से ही सारी लड़कियां हमारे देश की साधना कट हेयर स्टाइल को पसंद करने लगी। और जरा सोचिए, अगर वो दौर आज का दौर होता, सोशल मीडिया का दौर होता, तो वो रील, वो साधना कट का अंदाज कितना वायरल होता। तो है ना ये एक दिलचस्प बात। तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में एक और प्यारा सा गीत।

इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। शुभलता प्रेम सागर का मैसेज आया है अमृतसर से और इन्होंने लिखा है कि आज आपके इस कार्यक्रम को सुनकर हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई, भूली बिसरी यादें ताजा हो गई। ये बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए।

और एक संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का, और इन्होंने लिखा है कि प्रस्तुतकर्ता द्विवेदी जी प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज आप एक ही फिल्म में मेरे महबूब फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जो मुझे बेहद पसंद आ रहे हैं और उस फिल्म के गाने भी हमारे दिल को छू रहे हैं, आज हमें बहुत सुकून मिल रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है अवनीश भाई, थोड़ा सा हो सकता है टाइपो एरर हो गई हो, अवनीश नहीं अरुणीश मेरा नाम है, और ये है दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्होंने लिखा है कि आपका कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी और दिलचस्प किस्से जो अभी आपने साधना कट हेयर स्टाइल के संबंध में सुनाए वो बेहद अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो साथी अवनीश द्विवेदी के साथ। और दोस्तों, आज की फिल्म है मेरे महबूब, और आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म के से जुड़े जो गाने हैं वो भी आपको सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में इस फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से, कुछ सुनी कुछ अनसुनी और कुछ कही और कुछ अनकही बातें भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस फिल्म की कहानी की। तो आपको पता है कि इस फिल्म का बैकड्रॉप एक सामाजिक और मुस्लिम परिवार से जुड़ा हुआ ताना बाना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जी हाँ, जिसे हम AMU अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, वहां पर पढ़ाई के दौरान अनवर हुसैन, ये जो करेक्टर है, ये प्ले किया गया है, ये रोल निभाया गया है राजेंद्र कुमार के द्वारा। तो पढ़ाई के दौरान अनवर हुसैन को एक घूंघट वाली महिला से प्यार हो जाता है और वो उसे भुला नहीं पाता है, और वो लखनऊ का रहने वाला होता है। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो लखनऊ जाता है, तब उसकी मुलाकात नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी से होती है, और तब नवाब साहब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अनवर को एक पत्रिका में संपादक की नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं, और नवाब अनवर से अपनी बहन हुसना, और हुसना का किरदार निभाया है हुसना बानो, ये रोल प्ले किया है साधना ने। साधना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रोल को निभाया है। और जब नवाब साहब अनवर से कहते हैं कि वे उनकी बहन हुसना को यानी साधना को कविता सिखाएं, जिसके बाद वो उनको कविता सिखाने लगता है, और कुछ जबरदस्त और दिलचस्प नाटकीय मोड़ आते हैं इस फिल्म में। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अनवर साहब को पता चल जाता है कि दरअसल ये जो घूंघट वाली महिला है, ये वही महिला है जो उनके साथ AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। और इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, और फिर शादी का ऐलान होता है, और औपचारिक तौर पर सगाई समारोह होने से पहले, वही आपको पता ही है कि किस तरीके से दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते को लेकर पहले नाराज होते हैं, बाद में दोनों को मना लिया जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी एक मोड़ आता है कि कर्ज में डूबे नवाब को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जल्द ही वो अनवर को एक नजमा के साथ, नजमा का जो रोल है वो अनवर की बहन है, और ये रोल निभाया है निम्मी के द्वारा, और उनका जो ये रोल है वो एक वेश्या का रोल है, और इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वे उनके साथ दिख जाते हैं, और तब तो हंगामा हो जाता है। और इसके बाद अनवर की हवेली और संपत्ति की नीलामी के का दौर आ जाता है, ऐसा जो है फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। लेकिन क्या अंत में हुसना की शादी अनवर हुसैन से हो पाती है या नहीं, या फिर नवाब का जो किरदार निभाया है ना, वो हुसना के भाई हैं, और ये किरदार निभाया गया है अशोक कुमार के द्वारा, और जबकि मुन्ने राजा यानी बुलंद अख्तर के चचेरे भाई का किरदार निभाया गया है प्राण के द्वारा और अनवर का दोस्त बिंदादिन रस्तोगी ये किरदार निभाया गया है जॉनी वॉकर के द्वारा। तो दोस्तों इस कहानी के अंत में क्या होता है कि क्या हुस्ना की शादी अनवर हुसैन से हो पाती है या नहीं हो पाती और क्या नवाब को उनका सारा सामान वापस में मिल पाता है या नहीं, उनकी हवेली और बाकी सामान, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। क्योंकि अगर हमने आपको यहाँ पर यह बता दिया तो फिर फिल्म का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इस वजह से आपको इस फिल्म का अंत हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन यह फिल्म बेहद अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का संदेश आया है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है और कहा कि कार्यक्रम पसंद

दोस्तों, अगर इस फिल्म से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया कि मशहूर साधना कट हेयर स्टाइल की शुरुआत इसी फिल्म के जरिए हुई। और आपको शायद ही पता हो कि इस फिल्म का पहले जो नाम था वो था सिर्फ महबूब, और बाद में इस टाइटल को और अधिक रोमांटिक बनाने के लिए और यूं कहें कि थोड़ा सा पर्सनल टच देने के लिए इसमें मेरे शब्द को जोड़ा गया और इस तरह से इस फिल्म का नाम हुआ मेरे महबूब। और अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के टाइटल ट्रैक की, यानी जब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इस फिल्म का टाइटल ट्रैक मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम ये रिकॉर्ड किया गया, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं H.S. रवैल साहब, वो कुछ खास खुश नहीं थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गाने में म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा बहुत कम है तो शायद नहीं चलेगा। लेकिन जाने माने संगीतकार नौशाद साहब इस फिल्म में संगीत दे रहे थे और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ये गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, और हुआ भी ऐसा। और ये गाना हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे रोमांटिक गानों में से एक है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ये फिल्म साबित हुई थी। और एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसी फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड का जुबली कुमार बनाए रखने में बड़ी मदद मिली थी, क्योंकि राजेंद्र कुमार की जो फिल्में आती थीं वो अक्सर सुपर डुपर हिट हुआ करती थीं और उनकी फिल्में जुबली मनाती थीं और इसीलिए उनका नाम जुबली कुमार बन गया था। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे किसी न किसी मोड़ पर इसी चैनल में किसी न किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: سے اجتماعی کوششوں اور کارکردگی کی ستائش کی، جس کے نتیجے میں بھارت دفاعی سامان کی تیاری اور خلا کے شعبے میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ انہیں ملک کے نوجوانوں کی قوت پر فخر ہے، جنہوں نے حالیہ کھیل مقابلوں اور بین الاقوامی اولمپیاڈس میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کرگل کی لڑائی کے دوران اپنی جان نچھاور کرنے والے ملک کے دلیر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں ملک کی قیادت کی، اور سرکار نے بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بحر اسود کے خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر کام کرنے کی پیشکش قبول کرتے وقت موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to countries scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who have been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Narendra Modi and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983

0: 1984 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था और हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
0: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें. आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा.
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being local for local.
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है. ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं. आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें. आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें.
1: The Prime Minister also mentioned Khadi, saying that Khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
0: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी. बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है. पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है. बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है. मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे.
1: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who had laid down their lives in the defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said, "The unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces." In Ladakh, Union Defence Minister Rajnath Singh today led the 27th Kargil Vijay Diwas commemorations at the Kargil War Memorial in Dras, paying homage to the brave hearts of the 1999 Kargil War. The Raksha Mantri laid a wreath at this cenotaph.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारत

0: से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगपिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 7734 14 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले दो तीन दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों ने फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए जीरो टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण लक्ष्मण ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी और आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस विलक्षण अभिनेता को जिसने अपने अभिनय से हर किरदार को अमर बना दिया, चाहे खलनायक हो, हास्य पात्र हो या संवेदनशील चरित्र, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता अमजद खान की। आइए जानते हैं उनके जीवन और फिल्मी सफर से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, ये तो आपको पता ही है। अभिनय का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था। उन्होंने मुंबई के सेंट एंड्रयूज स्कूल और आरडी नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमजद खान ने बाल कलाकार के रूप में भी फिल्मों में काम किया था, लेकिन मुख्य अभिनेता के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्हें कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हमारी श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस समय चल रहा है आपका मन पसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार है अमजद खान। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे अमजद खान के जीवन के बारे में, उनके फिल्मी सफर के बारे में। तो आइए बात करते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक के करियर के बारे में, उस सफर की जर्नी कैसी रही, आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 70 के दशक की शुरुआत में अमजद खान छोटे छोटे रोल कर रहे थे, तभी उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। वो फिल्म थी शोले, जिसका गीत अभी आपने सुना, याद है ना? उसके संवाद निर्देशक रमेश सिप्पी को फिल्म के डाकू गब्बर सिंह के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। अमजद खान का चयन हुआ और उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि गब्बर सिंह भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार खलनायक बन गया। जी हाँ, वो खलनायक जिसे स्क्रीन पर देखें या ना देखें, उसकी संवाद अदायगी ही हमें जब जब याद आती तो हम उस खलनायक को भूल नहीं पाते। आज भी उनके संवाद लोगों की जुबान पर हैं। उनकी आवाज, उनके हाव भाव और संवाद बोलने का अंदाज उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गया। याद है ना फिल्म शोले का वो डायलॉग जो गब्बर सिंह की पहचान ही बन गया? तो लिख लीजिए जल्दी से हमें, आपको हमारे आज के कलाकार से जुड़ी कौन कौन सी फिल्म और उनके गीत और उनके डायलॉग अभी भी मुंह जुबानी याद है। हमारा पता तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, IP Radio Delhi @gmail.com।

भाई हम देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप फिल्मों के नाम तो लिख रहे हैं, अपने फरमाइशी गीत भी लिख रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कोई रोचक जानकारी नहीं भेज रहे। तो रोचक जानकारी भी अगर आपके पास है तो हमसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी दोस्त रिती जौहरी चाहती है कुछ खास आपसे, उम्मीद करती है कुछ खास आपसे कि आज के शो में आप अपनी ईमेल्स के जरिए हम तक पहुंचाए वो जानकारी जो आपके पास छुपी बैठी है, ताकि हम शेयर कर सके वो और दोस्तों से। चलिए कुछ रोचक जानकारी मेरे पास भी है तो मैं भी शेयर कर देती हूँ आपसे। तो वो रोचक जानकारी कुछ ऐसी है कि शोले की शूटिंग से पहले कुछ लोगों को लगा था कि उनकी आवाज खलनायक के लिए पर्याप्त प्रभावशाली नहीं है, लेकिन रिलीज के बाद वही आवाज, जी हाँ वही आवाज उनकी पहचान बन गई। गब्बर सिंह का किरदार निभाने के बाद देश भर में बच्चे बच्चे तक उन्हें गब्बर कहकर पहचानने लगे थे। जी हाँ, उन्होंने लगभग 130 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वो केवल खलनायक ही नहीं बल्कि बेहतरीन हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता भी थे। यदि आपने केवल शोले देखी है तो अमजद खान की प्रतिभा का केवल एक ही रूप देखा है। उन्होंने याराना में दोस्ती निभाई, लावारिस, नसीब, कालिया, सत्ते पे सत्ता, उत्सव, चमेली की शादी और कुर्बानी जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार भी निभाए हैं। कॉमिक भूमिकाओं में उनकी टाइमिंग शानदार थी और गंभीर भूमिकाओं में उनकी संवेदनशीलता दर्शकों का दिल जीत लेती थी।

साथियों, ये गीत तो आपने फिल्म याराना का सुना ही, और इसमें क्या दोस्ती निभाई थी अमजद खान और अमिताभ बच्चन ने, और उनके लिए गाया था अमिताभ बच्चन ने ये गीत। साथियों, क्या आपको पता है अमजद खान के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ था जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी? चलिए मैं बताती हूँ। सन 1976 में द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान अमजद खान एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। लंबे इलाज और कई सर्जरी के बाद वो स्वस्थ हुए, लेकिन इस दुर्घटना का असर उनके स्वास्थ्य पर जीवन भर रहा। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। यही उनके अदम्य साहस और समर्पण का प्रमाण है। यदि अमजद खान को उनके सम्मान को उनके मिले सम्मान के लिए हम बात करें, तो अमजद खान को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए कई बार नामांकित किया गया और दर्शकों से अपार प्रेम मिला। उनका अभिनय आज भी सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है।

तो श्रोताओं, इस तरह रहा सफर उनका, अमजद खान का, जो हमारे एक ही कलाकार हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। अगर हम बात करें अमजद खान के बारे में थोड़ी और उसके बाद शामिल करते हैं आपकी ईमेल्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार आपकी ईमेल्स बढ़ती जा रही हैं। तो 27 जुलाई 1992 को अमजद खान इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके निभाए हुए हर किरदार आज भी जीवंत है। भारतीय सिनेमा में जब भी महान खलनायकों की चर्चा होगी, अमजद खान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक कलाकार अपनी प्रतिभा से किसी भी किरदार को अमर बना सकता है।

ना चाहिए, कार्यक्रम में वक्त बहुत कम बचा है। तो सबसे पहली ईमेल आई है धर्मेंद्र चिंपा जी की, भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ हैं कपिल और पूजा, और ये लिखते हैं, आज आदरणीय मैडम जी नमस्कार। तो आपको भी हमारा नमस्कार। आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता अमजद खान के बारे में, और अमजद खान के बारे में बेहतरीन बातें बताई जा रही हैं, रोचक किस्से और नगमे भी सुनवाए जा रहे हैं। हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं। तो धन्यवाद साथी, आपने इतना अच्छा लिखा। और इसके साथ ही हमारे साथी जुड़े हुए हैं, रविंद्र मोहन दास, निसार अली, तनुजा देवांगन, प्रकाश वर्मा, ये लिखते हैं, एक ही प्रोग्राम में आज हिंदी फिल्म के महान अभिनेता अमजद खान डॉन साहब जी के बारे में अच्छी जानकारी सुनने को मिल रही है। अमजद खान साहब जी को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। तो वो हम सब की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। साथ ही छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और इसके साथ है तनुजा देवांगन, नीतीश कुमार, ईशांत, लखन, सावित्री और इनके साथी। इसके साथ ही अगली ईमेल जो हमें मिली है ये है मसूर हसन, ये लिखते हैं सहारनपुर, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके साथी। इसके साथ ही हमारे जो साथी हैं वो हैं, बहुत सारे साथियों ने दोबारा दोबारा ईमेल भेजी है, तो जिसके कारण हमारे नए नए साथियों की ईमेल हम नहीं ले पा रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये हमारे साथी हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से, फिल्म शोले में खलनायक के लिए डैनी को ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने शोले फिल्म में काम करने को मना कर दिया। फिर अमजद खान साहब को फिल्म शोले के लिए रमेश सिप्पी ने अमजद खान को लिया, ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुआ। क्या बात है, ये हुई ना नई बात जो आपने आज हमारे साथियों के साथ शेयर करी। तो इसी तरह की हम जानकारी और भी साथियों से चाहते हैं। और ये है हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी, आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छूने वाले बहुत ही सुकून दे रहे हैं गीत। आपका उत्कृष्ट तथा उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद साथी, आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और ये है हमारे अगले साथी संदीप मक्कड़ जी, और ये लिखते हैं संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल, पिंगा वाला चौक, गुराया, जालंधर से। और इसके साथ ही हमारे अगले जो साथी हैं नवी हसन और हीरामणि वर्मा, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज अमजद खान जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिला और इन्होंने बेहतरीन गीतों को सुनकर दिल खुश हो गया, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई दी है, तो इसके लिए धन्यवाद साथी। और इसके साथ ही हमारे और भी अन्य साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। तो इसी के साथ आप सुनते रहिए, बने रहिए। तो साथियों, ये था हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता अमजद खान के जीवन और फिल्मी सफर पर आधारित हमारा विशेष प्रस्तुतिकरण। उनका अभिनय, उनकी आवाज और उनकी अदाकारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार से तृप्ति जौहरी को दीजिए अनुमति और छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियो वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाकवामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की कायदत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अस्वद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मनोज खातिर रखें। और अनहाद सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ये एहसास हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क के जांबाजों को खिराज अकीदत पेश किया कि ख्वाह ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है कि जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा का एहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है एक सफर एक मुल्क एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफर सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय दरिया में INS महेंद्रगिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तस्करा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम-1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है। मन की बात के अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरक खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है, जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड का तस्करा करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तालिबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने मन की बात के आज के नशरिये में कश्मीर की रिवायती वेगू चटाई का तस्करा किया, जो सरकुंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वेगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वजीर आजम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी मनाई जाएगी। इस तनाजुर में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत में कई 22 तरफी पहलू शामिल थे, लेकिन एक टीचर का रोल उनके लिए सबसे अजीज था। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने अगले महीने मनाए जाने वाले यौम आजादी का तस्करा किया और सभी लोगों पर जोर दिया कि वो MyGOV पर 15 अगस्त से पहले बड़ी तादाद में अपने अपने ख्याल और तजवीजें शेयर करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: वहीं बर्मा में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की तासीम के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मातरे वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल जंगी यादगार पर 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीब की क्यादत की और 1999 की करगिल लड़ाई के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा ने वहां एक गुलदायरा नजर किया और उन बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। इस तकरीब में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, फौज के सरबरा और दीगर मुमताज अफराद नीज शहीदों के अरकान खानदान ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल की लड़ाई न सिर्फ भारत की फौजी और सिफारती फतह थी बल्कि ये एक ऐसा यादगारी और तारीखी लम्हा था जब दुनिया ने भारतीय फौजियों की बेमिसाल दलेरी और बहादुरी का मुशाहिदा किया। 4,474 यात्रियों का एक जत्था आज सुबह सवेरे सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बुनियादी पड़ाव से रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का रास्ता खुलने के बाद यात्री रवाना हुए हैं। वहां चट्टानों के टुकड़े गिरने से रास्ता बंद हो गया था। हुकाम ने बताया कि 166 गाड़ियों के काफिले में यात्रियों का 19वां जत्था सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में रवाना हुआ। सालाना अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ अगले माह की 28 तारीख को खत्म होगी। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके बहरे अस्वद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह का काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग इस तरह के रोजगार पर जाने का इरादा रखते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। मौजूदा महाजराई के तनाजुर में बहरे अस्वद और उसके अतराफ नीज उससे मुतसिल बहरी इलाकों में सिक्योरिटी की सूरतहाल अब भी बहुत कशीदा है। इन आबी गुजरगाहों से होकर जाने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों समेत बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना करना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल के बाद कमर्शियल बहरी जहाजों पर इस तरह के हमलों के वाकयात में इजाफा देखने में आया है और इसकी वजह से 5 भारतीय शहरियों की अलमनाक मौत भी हो चुकी है। अपनी एडवाइजरी में वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरी जहाज के रास्ते मुतालिका बंदरगाह, सिक्योरिटी इंतजाम, बीमे की सहूलत और एमरजेंसी इकदाम के ताल्लुक से आजरों या भर्ती करने वाली एजेंसियों से तफसीली जानकारी हासिल कर लें। यूक्रेन में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि वो कल ओडेसा बंदरगाह पर माल बरदार बहरी जहाज MV AGN रागनर पर हमले के वाकयात के बाद सूरतहाल पर करीबी नजर रखे हुए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सफारतखाने ने कहा है कि इस बहरी जहाज में 4 भारतीय शहरी सवार थे। इनमें से 2 अफराद के महफूज होने के बारे में तस्दीक हो गई है जबकि दीगर 2 अफराद के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। भारतीय सफारत खाने ने कहा है कि तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है और वो मुतालिका हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए हैं। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाज सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वाश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाज ने कनाडा की नियाग्रा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी के हामिल सलीम को 11-3, 11-7, 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक यह खिताब अपने नाम किया था। तमाम अनाज सिंह ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजारादारी को खत्म किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलावामी ओलंपियाड्स में उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क्यादत की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के साथ हिना मौज हाजिर है, आदाब कबूल कीजिए। समीन, आज हिंदुस्तान कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियों से सरशार किया है। आइए अपने शहीदों को नगमों के जरिए खराज अकीदत पेश करें प्रोग्राम मेरी पसंद में।

आज यानी 26 जुलाई हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये दिन सिर्फ एक फतेह का जश्न नहीं है सामीन, बल्कि उन जाबाज फौजियों के कुर्बानियों का को सलाम करने का भी दिन है जिन्होंने दुश्मन की गोलियों के बीच तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखा। सन 1999 में कारगिल की बुलंद और बर्फ से ढकी चोटियों पर हिंदुस्तानी फौज ने बेमिसाल जुर्रत, सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा किया। बेहद मुश्किल हालात, सख्त मौसम और दुश्मन की मजबूत पोजीशन के बावजूद हमारे जवानों ने हर चोटी पर तिरंगा लहराया और कामयाबी का परचम बुलंद किया।

आज का दिन मुल्क के उन बहादुर सपूतों के नाम है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत की और दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान की सरहदें महफूज हाथों में हैं। सरहद पे जो शहीद हुए उनका यही पैगाम, वतन से बढ़कर कुछ नहीं, यही हमारा मुकाम। तमाम बहादुर फौजियों और कारगिल के शहीदों को दिल की गहराइयों से सलाम, इसी दुआ के साथ कि हमारा मुल्क हमेशा अमन, तरक्की और इत्तेहाद की राह पर गामजन रहे। यह आखिरी नगमा आपकी समातों की नजर इस प्रोग्राम का।

ये चिराग शहीदों ने बाल के जिस

इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी अवेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए प्ले रेत समंदर। इसे तहरीर किया है जनाब जमन हबीब ने।

0: सकती मैं।
1: और जरूरत भी नहीं जान, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं।
0: मंजिल? कैसी मंजिल?
1: ये जगह है, ये जगह हमारी मंजिल है।
0: मैं समझी नहीं।
1: अरे समझाता हूँ, जरा जरा दम तो लेने दो।
0: इतनी तेज में पहले कभी नहीं दौड़ी। अगर तुम्हें अचानक क्या दौड़ने की सूझी, अच्छे भले हम उस पिकनिक स्पॉट पर थे, कितना मजा आ रहा था।
1: तो रहा था।
0: फिर वहां से भागे क्यों?
1: बस मुझे यहाँ पहुँचना था।
0: क्यों बोलो ना, चुप क्यों?
1: जान, इस जगह को जरा गौर से देखो और बताओ तुम्हें ये जगह पसंद है?
0: क्यों?
1: नो क्वेश्चंस, बस मां की आंखों से देखो और बताओ।
0: ऐसी क्या खास बात है इस जगह?
1: मैंने कहा ना, सवाल नहीं, बस बताओ।
0: इट्स ब्यूटीफुल। ये तो उस पिकनिक स्पॉट से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये साहिल, वो बड़ी बड़ी चट्टानें, वहां साहिल पर वो टूटी हुई नाव, सामने समंदर, हर चीज अपनी असली हालत में, कहीं कोई बनावट नहीं। वो देखो क्षितिज की ओर, समंदर पे झुका हुआ आकाश जैसे अपनी सदियों की प्यास बुझा रहा है। सूरज की किरणों में नहाई हुई समंदर की बेचैन लहरें साहिल की चट्टानों पर कैसे कैसे अपना सर पटक रही है। और वो जहाज समंदर के सीने पर तैरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, उसके पीछे धूप में चमकते हुए बादल और ऊपर दिन भर का थका मांदा सूरज जो बहुत जल्द समंदर की गोद में सर रखकर सो जाएगा। फिर समंदर की सुनहरी लहरें काली हो जाएगी। अच्छा, आकाश के माथे पे चांद की बिंदिया चमकेगी तो तुम्हें लहरों पर चांदी की लंबी चौड़ी दूधिया चादर बिछ जाएगी। आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखो, ऐसा लगता है जैसे लहरें आकाश में भी उठ रही हो।
1: तुमने तो पूरी कविता कह डाली।
0: रियली, इतनी खूबसूरत जगह के लिए जो भी कहूँ कम है।
1: That's right. तुम्हें ये जगह पसंद है।

0: किसे पसंद ना होगी भला?
1: नहीं, मुझे बस तुम्हारी पसंद से मतलब है।
0: Really?
1: तुम्हारी इन कजरारी आंखों और गुलाबी होठों की कसम।
0: तुम कितने अच्छे हो।
1: मैं कितना अच्छा हूँ?
0: मैं क्या?
1: Anyway, तो तुम्हें ये जगह पसंद है?
0: पसंद है? अरे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत पसंद है।
1: मुझसे भी ज्यादा?
0: तुमसे थोड़ा कम। ये ना डाले, बचपन से मेरा एक सपना था कि ऐसे ही किसी समंदर के किनारे मेरा एक छोटा सा घर हो और मैं अपनी खिड़की के पास बैठी दिन भर समंदर की लहरों को गिनती रहूं, फिर शाम के वक्त सूरज को समंदर में उतरते देखूं, और जब रात आए तो सफेद चांदनी को लहरों पर थिरकते देखते देखते मुझे नींद आ जाए।
1: सपना अच्छा है।
0: हाँ, सपना।
1: पर मैं ये कहूँ जान के तुम्हारा ये सपना बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है
0: तो मैं इसे तुम्हारा इस साल का सबसे अच्छा जोक मानूंगी।
1: और अगर मैं ये कहूँ कि ये जोक नहीं तो?
0: तो मेरा ख्याल है कि हमें आगरे का टिकट कटवा लेना।
1: और अगर मैं ये कहूँ? तुम्हारा मतलब है मैं पागलपन की बातें कर रहा हूँ?
0: और नहीं तो क्या?
1: जी नहीं, यही वो जगह है जहाँ हमारा मकान बनेगा।
0: यू मीन यहाँ हमारा मकान बनेगा, ये समंदर के किनारे?
1: जी।
0: आई जस्ट कांट बिलीव इट।
1: यू मस्ट, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। मैं जान, देखो मेरी आंखों में झांक कर देखो ना, इसमें ये समंदर है, इसका किनारा और तुम और मकान का नक्शा जो यहाँ तैयार होना है।
0: मगर
1: कुछ नहीं, इस साहिल पर हमारा मकान बनेगा जिसमें मैं रहूंगा और तुम।
0: इस वीरानी में?
1: इस वीराने को हम आबाद करेंगे, हम इस रेत समंदर में मापा यहाँ खिड़की के पास बैठी हुई दिन भर मेरी कही हुई बातों को याद करके मुस्कुराया कर। और तुम्हारी उस मुस्कुराहट से समंदर पर भटके हुए जहाजों को सही दिशा, लहरों को नई जिंदगी और मौजों को नई रवानी मिलेगी। फिर शाम के वक्त खुद को पनाह संवार कर तुम मेरे आने का इंतजार किया करोगे। मेरे घर पहुँचने के बाद तुम मुझे अपने नरम नरम हाथों से गरम गरम कॉफी पिलाएंगे। फिर मैं दिन भर की थकान भूलकर शाम के सूरज की तरह तुम्हारी आंखों में डूब जाया करूंगा। फिर रात होगी
0: तो क्या होगा?
1: वही जो भंवरे और फूल, चांद और चमक और समुद्र और प्यास के दरमियान
0: चले यहाँ से।
1: अगर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं सच कह रहा हूँ?
0: माई डियर हस्बैंड, क्या यकीन करने की कोई वजह भी तो?
1: लो, तुम्हें कहा था कि शहर के हंगामों से तुम ऊब चुकी हो, लोगों की भीड़ भाड़, गाड़ियों के शोर और पॉल्यूशन से दूर रहना चाहते हो।
0: हाँ, कहा तो था।
1: बस तो तुम्हारे कहने पर ही मैंने मकान के लिए जगह चुनी। यहाँ न शोर है न हंगामा, बेशक तुम्हारे सपनों के मुताबिक बिल्कुल रियल इस्टेट की तरह।
0: लेकिन हंगामों से दूर भागने का मतलब ये तो नहीं कि हम इस वीराने में आबस हैं।
1: अरे वीराना कहाँ है, उधर वो वहाँ पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, और वहाँ वहाँ देखो वो उधर मछेरों की बस्ती है, आबादी भी ठीक ठाक है। जस्ट इमेजिन जान, एक तरफ पिकनिक स्पॉट, दूसरी तरफ मछेरों की बस्ती और बीच में हमारा मकान, कितना प्यारा लगेगा और कितना मजा आएगा यहाँ रहने। और फिर शहर भी यहाँ से बस 40 मिनट की दूरी पर। अब बताओ 40 मिनट की कोई दूरी होती है
0: तो क्या सचमुच हमारा मकान यहाँ बनेगा?
1: नहीं, चार्ट पेपर

0: पर मकान का नक्शा मैं बनाऊंगा, रंग तुम भर देना और
1: अरे तुम तो नाराज हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
0: अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है?
1: ये तुमसे किसने कहा? तुम कहो और मैं यकीन न करूं, ऐसे तो हालात नहीं। अच्छा बताओ मकान कब तक तैयार हो जाएगा हमारा?
0: बहुत जल्द, फिर हम अपने पुराने मकान को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
1: That's great. ऐसे कितनी प्यारी जगह तुमने सूझी कैसे?
0: तुमने कहा कि तुम्हारा उस पुराने मकान में दिल खटकाता है, बस मैंने मकान के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी।
1: Wow.
0: ना शहर में तो जमीन की कीमत आसमान को छू रही है और उस पर 10 और जमीने। और सच पूछो तो आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बस शहर में दम घुटने लगता है।
1: मुझे तो वैसे भी धुएं से एलर्जी है।
0: चलो बस कुछ ही दिनों की बात है, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पॉल्यूशन से तो छुटकारा मिलेगा और यहाँ की ठंडी ताजा हवा के झोंके हमारी रूह पर।
1: क्या हुआ? देखो समंदर किनारे यहाँ तक आ गई हैं।
0: लगता है मेरी मोहब्बत इनमें समा गई है।
1: मतलब?
0: देखती नहीं तुम्हारे पांव चूमकर कैसी मस्ती थिरक रही है ये।
1: बस यही, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ सोचता है भला?
0: अरे वही जिसकी तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसे और क्या सोचेगा।
1: अच्छा अच्छा बस रहने भी दो ये चोंच ले। ये बताओ ना हमारा मकान कैसा होगा? मेरा मतलब है कितने कमरे होंगे, कितनी खिड़कियाँ होंगी, कितने दरवाजे होंगे, मैं स्टडी कहाँ बनाऊंगी?
0: यही डिसाइड करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं ना वहाँ तक,
1: उस बड़े पत्थर तक।
0: नहीं नहीं नहीं, उससे आगे वो जो टूटी हुई नाव पड़ी है ना वहाँ तक का एरिया हमारा है।
1: क्या वहाँ तक? इतना बड़ा एरिया?
0: यस, यहाँ से वहाँ तक का एरिया हमारा है।
1: अरे वाह, इसमें तो अच्छा खासा मकान बन जाएगा, कई कमरे निकल आएंगे।
0: कई कमरे?
1: हाँ कई कमरे,
0: वही ना औरत की औरत। अरे हमें ज्यादा कमरों की क्या जरूरत है?
1: तो क्या इतने बड़े एरिया में एक कमरे का मकान बनाओगे?
0: इस सारे एरिया में सिर्फ मकान थोड़ी बनेगा,
1: फिर
0: वो आधे हिस्से में तो हम बाग लगाएंगे जिसमें तरह तरह के फूल होंगे, ऐसे ऐसे नायाब फूल जो किसी के पास ना हो।
1: फिर भी जरूरत के कमरे तो होने ही चाहिए।
0: जरूरत के कमरे?
1: जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम, स्टडी, बेडरूम, गेस्ट रूम।
0: गेस्ट रूम? नो, हमारे मकान में कोई गेस्ट नहीं आएगा।
1: अच्छा, और अगर आ गया तो क्या इसे भगा दोगे?
0: और नहीं तो क्या, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई कबाब में हड्डी बने। यहाँ तो बस मैं रहूंगा और तुम, दूसरा कोई नहीं।
1: और मम्मी? क्या तुम मम्मी को हमारे साथ नहीं रखोगे?
0: मम्मी? वो अपने पुराने मकान में रहेंगी।
1: क्यों? वो क्यों रहेंगी पुराने मकान में? वो हमारे साथ ही रहेंगी, समझे?
0: वो तुम समझती क्यों नहीं?
1: मैं सब समझती हूँ, तुम्हें मेरी मम्मी अच्छी नहीं लगती। तुम उन्हें बहुत समझते हो।
0: जान ये बात नहीं है।
1: बिल्कुल यही बात है, तुम कितने सेल्फिश हो ये मुझे आज पता लगा है। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है वो, और तुम उन्हें अकेला छोड़कर आना चाहते हो।
0: अब मेरी भी बात सुनोगी या अपनी कहती जाओगी? भाई मैंने मम्मी से बात की थी लेकिन वो अपने पुरखों का मकान छोड़ना नहीं चाहती।
1: तुमने बात की थी? सच कह रहे हो?
0: हाँ सच, बिल्कुल। और जान तुम भी एक वादा करो, कल जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम भी हमारे इस मकान को छोड़कर नहीं जाओगी।
1: बस बस ये शुभ बातें मत करो वरना मैं।
0: अभी तो चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और अब आंखों से मोती टपकने लगे।
1: तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो कि रोना आ जाए?
0: पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1000 साल तक मरने वाला नहीं हूँ
1: तो मैं हंस दूंगी।
0: ओके ओके, लेकिन मकान हम पुराने स्टाइल का बनाएंगे। थोड़ा कुछ एथनिक टच होना चाहिए।
1: That's lovely. मैं भी यही चाहती हूँ। समंदर के किनारे पुराने तर्ज का मकान इतना प्यारा लगेगा।
0: राइट right. मकान की दीवारें

0: दीवारें सफेद होंगी, बिल्कुल आसमानी बर्फ की तरह सफेद, और छत छत छप्पर की बनी।
1: सफेद दीवारों पर छप्पर की छत?
0: जी।
1: ओह नो, दैट्स नॉट द राइट कॉम्बिनेशन।
0: ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए।
1: मेरे हिसाब से तो सफेद दीवारों पर रेड टाइल्स की छत ज्यादा खूबसूरत लगेगी।
0: टाइल्स हैं? नो, इट हैज बिकम वेरी मच अर्बन नाउडेज। कुछ और सोचो।
1: और क्या सोचूं?
0: मेरे ख्याल से तो छप्पर की छत ही ठीक रहेगी। दरवाजे और खिड़कियों से लिपटी हुई लताएं मकान की खूबसूरती में और इजाफा करें।
1: ठीक है, खिड़कियों में पुराने स्टाइल के शीशे लगवाएंगे। हाँ, तुम समझ रहे हो ना, फ्रेंच विंडोज।
0: जी।
1: और दरवाजे के ऊपर दीवार के साथ एक बहुत बड़े हिरन के सींग लगा देंगे।
0: फिर बहकने लगे हैं? तो औरतों में यही बुरी आदत है, फौरन ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देते।
1: क्यों, इसमें ख्याली पुलाव वाली क्या बात है?
0: अरे भाई, हम एक आम आदमी हैं, कोई राजा महाराजा नहीं कि हिरन के सींग और शेर की खाल से अपना घर सजाएं। और पहली बात तो जान ये है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और दूसरी ये कि आजकल का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। अरे वाइल्ड लाइफ वाले पीछे पड़ जाएंगे हमारे, समझे?
1: तो क्या हिरन के सींग नहीं लगेंगे?
0: हाँ, हिरन के सींग नहीं लगेंगे, लेकिन उसकी आंखें जरूर हमारे मकान में।
1: हिरन की आंखें?
0: हाँ, हिरन की आंखें।
1: हिरन की आंखों का क्या करोगे?
0: उसमें मैं सारी दुनिया को देखूंगा, क्योंकि सारी दुनिया उन आंखों में सिमट कर आ जाएगी।
1: पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अरे मेरी जान, ये जो तुम्हारी झील से भी गहरी आंखें हैं ना, ये हिरन जैसे ही तो है।
1: तो आप वहां थे?
0: जी हाँ, और कोई जगह भी तो नहीं रहेगी।
1: छोड़ो ना जनाब, अगर थोड़ी देर और मुझे अपनी बाहों में लिए रहे ना, तो कयामत आ जाएगी। बोलो ना, हम कहाँ थे? फिर वही।
0: नहीं नहीं, मेरा मतलब है दरवाजे और खिड़कियों से लताएं लिपटी होंगी, यही ना है? ऐसा करेंगे जान, खिड़कियों में पुराने स्टाइल के शीशे लगे होंगे और मकान की सफेद दीवारों पर छप्पर की छत होगी।
1: और अबाबीले हमारी छतों में अपने घोंसले बनाएंगी, और सारस भी गर्मियों में छत के ऊपर की पयाल में रहा करेंगे।
0: सारस? लेकिन सारस यहाँ कैसे रहेंगे? ना यहाँ तो ना मैदान है ना दलदले।
1: कुछ भी हो, सारस यहाँ जरूर होने चाहिए। मैं उन्हें हर रोज शाम के वक्त उड़ते हुए अपने घोंसले में आते देखना चाहती हूँ, और उनके बच्चों की तरफ देख देख कर जब अपनी लंबी लंबी पतली पतली टांगों पर नाचेंगे और अपने पर पड़ फड़ाएंगे, और जब यूँ मालूम होगा कि वो सहने मुंह के बल अब गिरे की तब गिरे, मैं खूब हंसना चाहूंगी।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम एक सारस रख लेंगे, लेकिन उसके बच्चे नहीं। हाँ, उन पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, और उनकी जगह हम एक बड़ा सा तोता पाल लेंगे। हाँ, उसका पिंजरा जो है हमारे खाने के कमरे में होगा, और जब हम नाश्ते के लिए कमरे में जाया करेंगे तो वो तुम्हें कहा करेगा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। खाने के कमरे में दीवारों का रंग हरा होना चाहिए, और अलमारी में तरह तरह के बर्तन और तश्तरी, और कुर्सियां भी हरे रंग की लकड़ी के पुश्तों वाले जिस पर फूल पत्ते बने हों, और एक कोने में हरे रंग की मेज पर ओल्ड मॉडल की चांदी की चायदानी और बियानी रखी।
1: हरे रंग की दीवारें
0: जी,
1: हरे रंग की कुर्सियां
0: जी,
1: हरे रंग की मेज। तुम क्या ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हो?
0: हरा रंग तुम्हें पसंद नहीं
1: है? मगर खाने के कमरे में हरे रंग की कोई गुंजाइश नहीं। सोचो, खाते वक्त भी ऐसा लगेगा जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में बैठे हों।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम ही बताओ कौन सा रंग चाहते हो।
1: भूरा।
0: भूरा, तो ओके, खाने के कमरे के लिए भूरा रंग डिसाइडेड।
1: थैंक यू। अच्छा सुनो, ड्राइंग रूम कैसा होगा?
0: ड्राइंग रूम, उसकी तीन खिड़कियां होनी चाहिए, जहां से नजर दरख्तों की चोटियों को पार करती हुई समंदर तक जा पहुंचे।
1: लेकिन इस

0: यहाँ तो सुबह से दोपहर तक कमरा धूप से भरा रहेगा।
1: नहीं जान, खिड़कियों के आगे छज्जे लगे होंगे और उन पर खुशबूदार फूलों से लदी हुई बेले पड़ी होंगी, इसके धूप अंदर नहीं आ सकेगी। बल्कि चंद लंबी सुनहरी किरणें फर्श और कमरे के साजो सामान बनाकर पड़ा करेंगे। कमरे के बीचों बीच येलोइश लकड़ी की मेज होनी चाहिए जिसके पाए शेर के पंजों की तरह भारी भारी होंगे और नीचे नीचे नरम नरम कुर्सियां।
0: हाँ, और कोने में एक शानदार ग्रैंड पियानो रखा होगा।
1: पियानो? फिर तुमने फिल्मी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। पियानो रख कर क्या करेंगे, न तुम्हें बजाना आता है न मुझे।
0: फिर भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए।
1: हाँ, मगर पियानो बहुत महंगा आता है, हम पियानो की जगह सितार रख लेंगे।
0: चलो ठीक है, मगर वो मेरी सिलाई की मशीन कहाँ रखी जाएगी?
1: अरे हाँ, सिलाई की मशीन। सिलाई की मशीन जान, यहाँ ये बीच वाली खिड़की के पास जिसके शीशे पर खूबसूरत डिजाइन बने होंगे और अच्छे अच्छे कोटेशंस गहरे नीले हल्के सुर्ख पीले अंगूरी रंग में लिखे जाएंगे। खिड़की में लताएं होंगी और कांच के लंबे लंबे गुलदानों में नरगिस के सफेद सफेद फूल तुम्हें देखकर मुस्कुराए और शीशे में बड़े से बर्तन में सुनहरी मछलियां तुम्हारे हाथों से रोटी के टुकड़े ले लेकर खाएंगी।
0: हाँ, और कबूतर भी होने चाहिए।
1: हाँ, कबूतर बर्फ की तरह सफेद और समंदर की तरह नीले कबूतर। जान, जब तुम बरामदे की सीढ़ियों पर गुलाब के पौधों के पास खड़ी होगी ना, तो वो तुम्हारे सर के इर्द गिर्द चक्कर काटे, तुम्हारे सर पर, कभी कांधों पर और कभी हाथों पर आकर बैठ जाएंगे और तुम उनकी तरफ दाने फेंका करोगे और खुश होगी।
0: सुनो, रेस्ट रूम और तुम्हारी स्टडी, उसका क्या करोगे?
1: रेस्ट रूम का रुख मेरे ख्याल से पूरब की तरफ होना चाहिए। हाँ, और उसकी खिड़की के बाहर नारियल का एक बहुत बड़ा दरख्त हो जिसके नीचे नरम नरम हरी हरी घास पर बेत की आराम से कुर्सियां बिछी हो और हम नरम नरम धूप का मजा ले सके।
0: ऐसे सुनो, रेस्ट रूम का फर्नीचर कैसा होगा?
1: मैं ये फैसला तुम खुद ही कर लो क्योंकि ये तुम्हारा कमरा होगा।
0: नहीं, तुम ही बताओ ना।
1: ओके, मैं ही बता देता हूँ। रेस्ट रूम की हर चीज सफेद होगी।
0: बिल्कुल।
1: सफेद फर्श, सफेद मेज, सफेद कुर्सियाँ, दीवारों पर भी सफेद वॉलपेपर होंगे जिसमें लाल गुलाब प्रिंट होंगे। खिड़कियों के पर्दे भी फर्नीचर से मिलते जुलते, यानी कि सफेद। कमरे के बीचों बीच हम मेज रखेंगे और उसके ठीक ऊपर हम वो झाड़ लगा देंगे, झाड़ जो हमारे पास मौजूद है। और उस झाड़ के मोती जब सितारों की तरह चमकेंगे तो बस रेस्ट रूम किसी जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होगा।
0: आतिशदान?
1: उसकी क्या जरूरत?
0: क्यों, जाड़े के मौसम में हम क्या करेंगे बाबा? सर्दी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी।
1: अरे उसको तुम फिक्र मत करो जान, जहाँ मैं रहूंगा और तुम वहाँ झाड़े का क्या काम?
0: छोड़ो भी बाबा, मैंने तुम जैसा दीवाना नहीं देखा। अपनी बीवी से भी ऐसे बातें करते हो जैसे मैं कोई तुम्हारी नई नई गर्लफ्रेंड हूँ।
1: जान, दरअसल मजनू, रोमियो, राजा फरहाद मेरे पूर्वजों में से थे। इसलिए उनका कुछ तो असर मुझ पर होना ही चाहिए।
0: तो फिर उनकी तरह तुम भी दुनिया वालों से दूर जंगलों में क्यों नहीं जा बसते?
1: तो क्या, आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है जान। पहले राजा बांसुरी बजाता था, आज के आशिक गिटार बजाते हैं। फरहाद ने पहाड़ खोदकर दूध की नहर निकाली थी, आज के आशिक डेयरी फार्म खोलकर बैठ जाते हैं। मजनू साहब सेहरा में भटकते थे, आज के आशिक किसी बार में बैठकर मुकेश के गाने सुनते हैं।
0: अब तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता।
1: अरे गर्लफ्रेंड समझता हूँ ना, इसलिए अगर कहीं पत्नी समझता तो मेरी बोलती बंद रहती।
0: अरे देखो सूरज अब डूबने लगा है। अब बस तुम्हारी स्टडी रह गई और हमारा बेडरूम। जल्दी जल्दी उनका भी

0: स्टडी स्टडी मकान के पश्चिमी कोने में होगी। देखो वहां जहां से मैं दूर तक क्षितिज में पहली शाम की लालिमा देखा करूंगा। इसमें एक बहुत बड़ी सी खिड़की होगी गोथिक स्टाइल की, उस पर एक भारी पर्दा लटक रहा होगा। कमरे में बड़े बड़े राइटर्स, पोएट्स और फिलोसफर्स की तस्वीरें होंगी। यहाँ वहाँ
1: आगे भी तो कुछ बोलो।
0: हाँ, इन चीजों के अलावा उस कमरे में एक चोर दरवाजा भी होना चाहिए।
1: क्यों क्यों?
0: जब चाहो एक बटन दबाओ और किताबों की अलमारी आगे से हट जाए।
1: ओह, अगर ये दरवाजा खुलेगा किस तरफ?
0: नीचे एक सुरंग की तरफ।
1: सुरंग? देखो अब तुम फिल्मी हो रहे हो।
0: रुको मत, यही सुरंग हमारे कमरे को जाएगी जहाँ तुम लेटी हुई होगी।
1: अच्छा?
0: हाँ, तुम लेटी हुई इंतजार कर रही होगी मेरा, और सिर्फ एक छोटा सा लैंप तुम्हारे सिरहाने की तरफ संगमरमर की मेज पर चल रहा होगा, और तुम बाहर अंधेरे में टकटकी बांधे देख रही होगी।
1: रुक क्यों गए? बोलो ना।
0: तुम मेरे पांव की आहट पर कान धरे अपने बड़े बड़े ख्वाबीदा आंखों से बाहर की तरफ देख रही होगी। फिर तुम चोर दरवाजे के खुलने की आवाज सुनोगी और मुस्कुराते हुए अपने कोने का सहारा लिए जरा उठकर उस खटके पर कान लगाओगी। फिर तुम्हें मेरे दबे पांव चलने की आवाज करीब आती हुई सुनाई देगी, और तुम जल्दी से झूठ मूठ अपनी आंखें बंद कर लोगी। फिर आहिस्ता से दरवाजा खुलेगा, तुम्हारे चेहरे पर कोई अपना चेहरा झुका देगा और एक हल्की सी चीख सुनाई देगी, हल्की मीठी सी चीख, और तुम अपनी बाहें मेरे गले में डाल दोगे और मुझे अपनी तरफ खींच कर भेजा।

0: बारिश होगी। अंधेरा भी फैल गया है, अगर और रुके तो बारिश में फंस जाएंगे।
1: हाँ, मेरे ख्याल में अब घर चलना चाहिए। हाँ। तुम्हारी मम्मी चाय लिए हमारा इंतजार कर रही होगी, आओ चले।
0: सुनो, मेरा तो जी चाह रहा है हम किसी होटल में खाना खाते हुए चलते हैं।
1: जान, तुम तो जानती हो कि हमारे पास।
0: सॉरी डियर, मैंने तो यूं ही बिना सोचे समझे कह दिया था।
1: कोई बात नहीं जान, अगर हम यहाँ से बस पकड़ेंगे तो हम दोनों का किराया 6 रुपए लग जाएगा।
0: 6 रुपए? हमारे पास तो सिर्फ 4 ही रुपए हैं।
1: कोई बात नहीं, अगले स्टॉप से किराया 2 रुपए लगता है, हम वहाँ तक पैदल चलते हैं।
0: हाँ, इस तरह बारिश में भीगने का मजा भी आएगा।
1: हाँ, और बारिश में भीगने का तो मजा ही कुछ और होता है।
0: क्या? चलो।

रेत समंदर, अभी आप ये प्ले सुन रहे थे। इसे तहरीर किया था जनाब जमन हबीब ने। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशियात। मीडिया वेव 1071।

रेखा भारद्वाज की आवाज में प्याम सईद कादरी का लिखा हुआ ये नगमा आपने सुना। मौसिकी प्रीतम ने तरतीब दी थी। फिल्म बर्फी से था ये नगमा। अगला नगमा फिल्म ये जवानी है दीवानी। रेखा भारद्वाज और तोची राणा ने इसको अपनी आवाज दी है और इसके बोल लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने।

फिल्म जब तक है जा, हर्षदीप कौर की आवाज, बोल गुलजार के और एआर रहमान की मौसिकी से सजा हुआ ये नगमा भी आपने सुना। अगला नगमा फिल्म मेरी कॉम से है, आवाज विशाल ददलानी की है, बोल संदीप नाथ के और मौसिकी शिवम की।

ध्वनि भानुशाली की आवाज, नोटबुक फिल्म और मौसिकी विशाल मिश्रा की। इस खूबसूरत सी नगमे को भी आपने सुना। अगला नगमा आपको सुना रहे हैं फिल्म केदारनाथ से। आवाज अरिजीत सिंह की है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की, और मौसिकी से सजाया है इसे अमित त्रिवेदी ने।

ए हई बुले शादी काफी गावन आली हिन लाज सचदेवा प्रोग्राम दा आखिरी सूफियाना कलाम है नीने कमली यार दी कमली कलाकार हिन गुरदास मान।

संगीत तुसा गुरदास मान दी आवाज विच सुनदे पए हवे। सिरैकी प्रोग्राम इथा ही खत्म थींदा है। अगला प्रोग्राम घिन के वल मिलसा। हुन हरजीत कौर को इजाजत देवो।

करगिल विजय दिवस भारतीय सेना की बहादुरी हौसले मुल्की अपनी जान वार देने वाले शहीदों को समर्पित है। साल 1999 दियां गर्मियां च जदों दोवें मुल्क अमन चैन दियां कोशिशां च पुज्जे जापदे सन, गवांडी मुल्क पाकिस्तान ने धोखे नाल कश्मीर के करगिल द्रास पुरटालिक सैक्टरां दियां उच्चियां बर्फीलियां चोटियां ते कुछ पैठ करके कब्जा कर लिया। दुश्मन बहुत उचाई ते बैठा सी, हाल बेहद चुनौतीपूर्ण, हड़चीर भी ठंड, ऑक्सीजन की कमी, पसंदियां खड़िया पहाड़ियां, सौ ने सारिया गल्लां दुश्मन के पक्ष च जांदियां सन। शायद दुश्मन जिहड़ा सी भारतीय फौजियां दे उस जज्बे तो बिल्कुल ना वाकिफ सी जो अपने मुल्क की रक्षा लई मौत में भी माहौल करना जानता है।

मैंने जंग तकरीबन दो महीने चली। इस जंग में साढ़े 500 तो ज्यादा जवानों ने शहादत का जाम दिता, हजारों की तादाद च जख्मी हुए। 26 जुलाई 1999 भारतीय फौज ने सारिया चोटियां तिरंगा लहरा के जीत का ऐलान कर दिता। करगिल विजय दिवस उन्होंने मावां नूं सलाम करन दा दिन है जिन्होंने अपने जिगर के टोटे मुल्क तो मार दिते। सुहागणा नूं सलाम करन दा दिन है जिन्हां दा संदूर देश की राखी लई मिट गया। उन्होंने बच्चों नूं सलाम करन दा दिन है जिन्होंने अपने पिता के प्यार नूं

0: रोलिया राम जी लंघ आइए
1: आजू आजू आजू आजू सरपंच साहब आजू आजू
0: आगे जी आगे जी। जय हिंद महाराज।
1: जय जी सरपंच साहब की हाल चाल है तेरा?
0: हाल चाल अपना तो ठीक है पर आले दुआले का हाल चाल मेनू तो अज दे लोगों की न्याण की समझ नहीं आती है। हुण देखो हुण मैं लड़दा आया वा भी निकी जी गल दे उत्ते मुंह फुला के बह गया भी कहिंदा रंग काला हो जांदा धुप च गया नू
1: टैनिंग हो
0: टैनिंग हो जांदी है ओ सनस्क्रीन के पता नहीं की लिया के दियो।
1: अच्छा
0: अच्छा मैं कहा भी असि तो अई खेतां च कम करदे ने ना कोई गल ना बात।
1: देखो गल सरपंच साहब ये है

21, 27 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इस्तेमाल किए। इंडियन नेवी ने भी समुद्र राही ऑपरेशन तलवार शुरू किया, जिस विच कराची ते ब्लॉक लाया गया ताकि ऑयल ते व्यापार दा समान ना बाहर जावे ते ना ही आवे। इस ब्लॉक करके पाकिस्तान बिल्कुल सिर्फ 6 दिन दी रिजर्व्स रह गए सन। लड़ाई दे पहले 2-3 हफ्ते सानू कोई खास सफलता नहीं मिली। 13 जून नू पहली सफलता पहाड़ी तुरलिंग विच मिली। इस दे नाल साडे सैनिकां दा हौसला वध गया ते एक दे बाद एक सफलता मिलती रही। 20 जून नू द्रास 0.5140 कैप्टन विक्रम बत्रा ने फतेह किया। 29 जून 0.5060 ते 0.5100 ते कब्जा किया। इस तो बाद टाइगर हिल फतेह करन में सब तो वड्डी चुनौती सी, क्योंकि जदों तक ए हिल फतेह ना कर दे तां नेशनल हाईवे 44 खुल नहीं सकदा सी। इस लई 11 घंटे दी कमाशान लड़ाई दे बाद ए 4 जुलाई नू टाइगर हिल नू फतेह कीता। इस लड़ाई विच 18 ग्रेनेडियर्स दे 20 जवान शहीद होए। उन्हां विचों एक परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 वीर चक्र जवाना नू बहादुरी दा तगमा मिलिया। इस तो बाद 5 जुलाई नू द्रास, 11 जुलाई नू बटालिक हिल्स नू कैप्चर कर लिया गया। 14 जुलाई नू इंडियन आर्मी ने ऐलान कर दिता कि दुश्मन नू पराजित कर दिता गया है ते ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो गया है। 26 जुलाई नू भारत सरकार ने इस ऑपरेशन दा पूरा होना ऐलान कर दिता। ये पूरा ऑपरेशन 60 दिन चलिया, जिस विच 530 जवान शहीद हुए, 1363 जवान जख्मी हुए ते 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए। दुश्मन दे 4000 दे करीब सैनिक मारे गए। कारगिल युद्ध दे बाद सरकार ने इंडियन आर्मी नू 4 परमवीर चक्र, 3 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र नाल सम्मानित किया।

0: ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ।
1: ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਝੜੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਛੇ ਛੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ,
0: ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
1: ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
0: ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ।
1: ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ
0: ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ।
0: ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਟ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ।
1: ਔਰ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਤਹਰ ਸਈਦ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। यह कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
3: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची

0: चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बनिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: हेमंत भाई, देखिए मानसून पूरे देश में आ गई है और मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भाई देखिए सब्जी नर्सरी दलहनी फसलों में जल जो निकास का उचित प्रबंध अवश्य रखें, साथ ही भाई खड़ी फसलों में सब्जियों में किस प्रकार का छिड़काव ना करें, क्योंकि खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करें। और साथ ही भाई देखिए यदि धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपवाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर से और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लोह तत्वों की कमी हो सकती है, और पत्तियों पर यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लोह तत्व की कमी दर्शाता है, तो इसको पूरा करें भाई। और साथ ही इस समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है, अतः किसान भाई चारे की बुआई कर सकते हैं। साथ ही ऐसे में मिर्च व बैंगन की फूल गोभी सितंबर में तैयार होने वाली जो किस्में हैं पौधशाला किसान पौधशाला में कीट अवरोधी जो जाली का प्रयोग करके इसका
1: बिल्कुल। और ये समय कद्दू वर्गीय जो सब्जियों की जो वर्षाकालीन फसल की उसकी बुआई का सही समय है। लौकी की उन्नत किस्में जैसे पूसा नवीन, पूसा समुद्रित, केरला की पूसा और विशेष पूसा दो मौसमी, सोनीफल की पूसा विश्वास, पूसा विकास, तुरई की पूसा चिकनी धारीदार, तुरई की पूसा नसदार,

0: जो है उन्नत किस्में हैं, इनका जो बुवाई कर सकते हैं।
1: और बागवानी की हेमंत भाई बात करें तो देखिये, फलों के नए बाग लगाना चाहते हैं, गड्ढे खोद लिए तो भाई उसमें गोबर की खाद अवश्य डाल दें, जिससे कि भाई समय पर वो काम कर सके।
0: देसी खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि में जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांचे उपरांत उर्वरकों संतुलित मात्रा का उपयोग करें, खासतौर पर पोटास की मात्रा बढ़ाएं ताकि पानी की कमी के दौरान फसल की सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। वर्षा आधारित एस एवं बैरानी क्षेत्रों में भूमि की नमी संचयन के लिए पलवार का प्रयोग करना लाभदायक होगा।
1: और भाई साथ ही देखिए, समय समय पर अपने खेत में अवश्य जाते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई खेत में कोई रोग कीटाणु तो नहीं लगे या आपका कोई भी इस तरह की दिक्कत खेत में ना हो। तो समय समय पर आप खेत में जाते रहें ताकि पूरा उत्पादन मिले।
0: सबसे बड़ी बात सुनील भाई ये है कि जब बारिश के समय पर क्या रहता है कि खरपतवार कुछ दवाएं वगैरह किसान भाई लगाते, तो मौसम देखकर ही दवाएं और कोई भी खाद वगैरह जो मौसम देखकर ही लगाएं ताकि आपके व्यर्थ ना जाए।
1: बिल्कुल, तो चलिए बातचीत और भी करेंगे। और भाई फरमाइश का दौर अभी जारी है, तो जो आज के हमारे अगले कलाकार हैं भूलन त्यागी हैं, भूलन त्यागी को सुनने के लिए विजेंद्र कुमार जायजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और रुवाणी जायजानी, इनकी फरमाइश हमें मिली है भोला कॉलोनी गरुंडा जिला करनाल।
0: वहीं अगली फरमाइश हमारे पास आई है, ये राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, और ये कारगिल विजय दिवस पर भी जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ में अगली फरमाइश हमारे पास आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, और सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और उनके परिवार के।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली योगी मोहला बराड़ जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरसबत सिंह राहुल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं गांव लोगर ठाकुर वाला से शरण सिंगिल, दलजीत सिंगिल और उनका समस्त परिवार।
0: गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: ये अगली फरमाइश हमें मिली है जलालपुर जिला सहारनपुर से शरण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: वहीं अगली फरमाइश मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की आई है, जो सुनना चाहते हैं भूलन त्यागी को।
1: और बेहर वाला खुर्द सिरसा से भी फरमाइश आई है बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है हनुमानगढ़ टाउन, सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: अगली फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है ढाणा नरसान भिवानी से जगदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार शाहू, चित्ररेखा शाहू और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की।
1: ये फरमाइश हमें मिली है गांव कुमार एड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: गांव खोकरा लाली से आई है विनोद बारासा, रोशनी बारासा की फरमाइश।
1: गांव कलाना तहसील भदरा से यह फरमाइश आई है विक्रम, सचिन, सतीश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश शाहू, जितेंद्र शाहू, पायल शाहू की।
0: वहीं जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और उनके परिवार के सदस्यों की फरमाइश आई है।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से रमेश कुमार कंपोज, पिंकी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अगली फरमाइश आई है महिपाल शारोण, नीरू, उत्कर्ष और दिव्यांश, गांव वर्दू चैना, जिला भिवानी, हरियाणा से।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं सादुल से राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़।
0: गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगीराम सतौड़, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार और उनके परिवार के सदस्य।
1: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा और समस्त परिवार की तरफ।
0: अगली फरमाइश हम तक आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा और उनके परिवार के।
1: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर से बुलंदखेड़ उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश भूलन त्यागी के लिए आइए हमारे पास गांव हाडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: ये फरमाइश हमें मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश पटेल नगर मलूट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
1: और ये अगली फरमाइश हमें मिली अनारकली वज्राव, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर।

0: अभी सुनील भाई हम भूलन त्यागी को सुन रहे थे साथियों की फरमाइश पर, और जैसा कि ये पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम है तो एक पत्र हमारे पास आया है सुनील भाई। ये पत्र
1: किस भाई का है और क्या लिखते हैं?
0: ये भाई हैं गार्विक चौधरी और गुरप्रीत, और ये कह रहे हैं कि हम सर्दी के समय में गेंदे का फूल का उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसकी बिजाई का सही समय क्या है और इसके लिए कौन सी भूमि अच्छी है, इसकी उन्नत किस्में हैं वो भी जानना चाह रहे हैं, और साथ में ये जानना चाह रहे हैं कि पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखें जिससे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो।
1: गरीब भाई देखिए, सर्दी के मौसम में आप फूल उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भाई देखिए, सितंबर का जो दूसरा सप्ताह है बीज की बुझाई के लिए सबसे उचित व सही समय माना जाता है। भूमि के चयन की जहां तक बात आपने की है तो देखिए, गेंदे की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में हो जाती है लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही भाई देखिए, एक बात का और ध्यान रखना है गुरप्रीत और गार्विक भाई के, भाई खेत में जल जो निकासी का उचित प्रबंध होना जरूरी है, तो आप ऐसे खेत का चयन करें जिसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हो। उन्नत प्रजातियों की जहां तक बात है, देखिए अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा दो प्रचलित किस्में हैं। अफ्रीकन गेंदे की अगर बात करें तो भाई देखिए, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा बहार, जीनिया गोलो और मैन इन द मून प्रमुख है, और फ्रेंच गेंदे की अगर बात करें तो पूसा अर्पिता, फ्लैम, फास्ट लेडी, गोल्ड लेडी, ऑरेंज लेडी आदि प्रमुख किस्में। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी उन्नत किस्म ले सकते हैं, लेकिन बीज जहां से भी ले उपचारित ले, और बीज उपचारित ना हो तो उपचारित अवश्य कर ले। और पौधारोपण की बात करें तो नर्सरी में गेंदे की जो बीज की बुझाई के बाद पौधे एक माह में रोपण के लिए तैयार हो जाता है। अफ्रीकन गेंदा 40 से 40 सेंटीमीटर तथा 50 से अगर फ्रेंच गेंदे की बात करें तो 30 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें, और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है। खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई आदि का ध्यान रखकर समय पर पौध रोपाई करेंगे और भरपूर उत्पादन आप ले पाएंगे। रोपाई के 60 से 70 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाता है और 90 से 100 दिन तक तकरीबन किस्म के हिसाब से फूल चलता है।
0: बहुत बढ़िया सुनील भाई, और उम्मीद है कि गार्विक भाई और गुरप्रीत को ये जो जानकारी है वो बहुत पसंद आई होगी, और तो अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो विनोद कुमार हैं, और उनको सुनने के लिए जो हमारे पास फरमाइश सुनील भाई आई है वो अनारकुली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गभय मल्होत्रा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नावांकर, निर्मला और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेघा, साक्षी और आशीष और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से फरमाइश आई है जीतू, ध्रुव, केवल, किरण और दिव्यांशी की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है असम से और इसको भेजने वाला है हितेंद्र दास।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हिमलता, डिंपल देवांगन और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, इसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा की।
1: विनोद कुमार से उपदेश सुनना चाहते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है गांव खारिया ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, आरजू, नाव्या, बिजारनिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।
2: निर्दोषी मानस ने लोगो दोष लगाना ना चाहिए।

0: करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति दिवस के बारे में, साथ ही जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में।
1: वहीं 7:05 पर कार्यक्रम का कृषि जगत कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा AI आधारित स्मार्ट खेती और बातचीत होगी मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावना।
0: और भाई देखिए ये था हमारा आज का कार्यक्रम, आपको कैसा लगा अपने सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य भेजें जो कि हमारे कार्यक्रम को और भी अच्छा बना सके।
1: बिल्कुल।
0: और कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आपका है तो भाई आप अवश्य भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली 110001।
1: वहीं हमारी जो मेल आईडी है आप मेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com feedback@gmail.com।
0: तो देखिए भाई आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया एवं जो भी आपके सवाल हो वो हमें अवश्य भेजें, हमें आपके सवालों का और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना विनोद कुमार से। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी का, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा

जी हाँ, मोहब्बत की बात हो, यादों का कारवां हो, तो दिल हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो दिल में बसे होते हैं। और कुछ यादें ऐसी होती हैं कि याद कितनी ही हो, कितनी ही तड़प वाली हो, लेकिन उनकी मोहब्बत में इतनी गहराई होती है कि जब भी याद आती है मोहब्बत उतनी ही गहरी होती जाती है। और फासले कितने भी

लंबे ही क्यों ना हो, दूरियां कितनी भी दूरियां जिंदगी में हो, लेकिन यही जो फासले हैं उन यादों को कम करते हैं। और कुछ ऐसी ही मोहब्बत की बातें बयां कर रहे हैं हरिहरन साहब।

0: غزل کا یہ پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اب آپ سنیے پرادیشک سماچار.
1: Oh lovely, well done.
2: Business loan approved.
1: Ab hoga bada studio, naya camera, nayi lights.
3: Lagi aapne kaam liye lo, usse loan se.
1: No, loan liye gaye kaam mein lagao. Samay se EMI chukao, credit score badhao, aur agla loan asani se pao.
3: Kaam mein to mere photo se le lo.
1: Aap kaun?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी.
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
7: ये पंखा का खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा.
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है. और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
8: हर घर सूर्य घर.
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की. निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए. लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय दिवस के वीर सपूतों का स्मरण किया. कहा, राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा. दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्रियों ने दिल्ली की अनहत सिंह को विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर बधाई दी. नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की. इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे. एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी. इसकी सिफारिशों के आधार पर भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित होनी चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सरकार कल संसद में कड़े प्रावधानों वाला नया विधेयक भी पेश करेगी. उन्होंने दोहराया कि सरकार

0: प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता रहेगा।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम वन के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साह वर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। देशभर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले माईगॉव पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रकृति के प्रति अपने दायित्व निभाने का आह्वान किया। साथ ही मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा दी। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मीडिया से बात करते हुए श्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया।
2: आज मन की बात का 136वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं। देश की सरकार ने क्या किया इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि देश जो प्रोग्रेस कर रहा है वो देश के 140 करोड़ जन की सहभागिता से देश का विकास, देश की तरक्की हो रही है।

0: समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया है। साथ ही आयोग के सदस्य के रूप में कुलदीप सिंह मोहम्मद हारून को नियुक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर लता गुप्ता और श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य आयोग में लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा करने और तय समय सीमा के भीतर मुद्दों को सुलझाना है।
1: आयोग के पास कई प्रकार की शिकायतें भी पहुंचती ही थी, तो उन लंबित शिकायतों को जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण हो और समयबद्ध तरीके से उन समस्याओं को खत्म कर पाए। हमारी दिल्ली की हर एक बहन को आयोग पर एक विश्वास बने, ऐसे कार्य करते हुए हम काम करेंगे।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य निष्पक्षता, संवेदनशीलता तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने भी देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल के वीर जवानों का शौर्य, समर्पण और राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता के साथ देश के जाबाज सैनिकों ने दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन समाप्त होने के बाद से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने विशेष स्वच्छता मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने पूरी रात मौके पर मौजूद रहकर सफाई और पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी की। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि इस अभियान में सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, धुलाई, मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य किया गया।
2: जंतर मंतर आपको पहले से ज्यादा साफ दिख रहा है। जैसे ही कल प्रदर्शन समाप्त हुआ तो रात से ही हमारी पूरी एनडीएमसी की टीम, जिसमें मैं स्वयं, हमने पूरा जंतर मंतर का कूड़ा, जितना गार्बेज था, बाकी सब थी, धुलाई थी, इसकी वॉल पेंटिंग थी, इसके कहीं पर उन सबको बड़ी क्लीन से हमने साफ किया।
0: दिल्ली नगर निगम एमसीडी को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जनकल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जल कल्याणकारी पहलों तथा शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में एमसीडी के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया। दिल्ली नगर निगम ने अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों और जन सेवा संबंधी नवाचारों का प्रदर्शन किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट 12 से 15 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन करेगी। साथ ही हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर के बाजारों में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी।
3: इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय व्यापारी बैठक में ली गई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भी देश की आजादी के भव्य उत्सव की भावना को समर्पित होगा। साथ ही भारत मंडपम परिसर को तिरंगे की सजावट से अलंकृत किया जाएगा, जिससे देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संदेश देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा आगंतुकों तक पहुंचे। इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यापारी की श्रद्धा, सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने देश के सभी व्यापारिक संगठनों, बाजार संघों और व्यापारियों से इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्क वाली 1600 क्वार्टर बोतलें बरामद कर एक चार पहिया वाहन जब्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर दिल्ली के अनहत सिंह को बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी अनाहत सिंह को बधाई दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी ये जीत देश की हर बेटी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का विश्वास देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करगिल विजय देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली नगर निगम को शहरी नागरिक सेवाओं और जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: लाइए 3000। क्यों भाई? मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। ए नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो। इट्स इजी।
5: अरे वाह।
6: यह आकाशवाणी दिल्ली है। मुझे सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री नीरज त्यागी।
7: आज हम सभी यहाँ कवि गोष्ठी के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर देवीदत्त सजल, जो वरिष्ठ कवि हैं और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन मोहन सलोनी, ये भी एक वरिष्ठ कवियत्री हैं और संयुक्त महाप्रबंधक हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर देवीदत्त सजल जी, जो कि वरिष्ठ कवि हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ अपनी कुछ प्रस्तुति दें।
8: नमस्कार। 23 जुलाई प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। आकाशवाणी 500 से अधिक केंद्रों से प्रसारण करती है। लगभग 173 बोलियों में उसकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाती है। आकाशवाणी के लिए मैंने कुछ गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

भारत जो सुर में बसा है भारत वह सुर न कभी बिसराना, वह सुर न कभी बिसराना, तू युग युग

जलाया। सोए हुए आंगन आंगन आशा का दीप जलाया। पर्वत हो या घाटी हर द्वार तेरा।

बोली तू ही उन्हें सुनाई। माँ की ममता की बोली तू ही उन्हें सुनाई। सैनिकों की अमर कथाएं, सैनिकों की अमर कथाएं, वीरों की अमर कथाएं, तेरा

0: आकाशवाणी की प्रथम उद्घोषिका उस मेहता जी को समर्पित ये पंक्तियां मैंने प्रस्तुत की है और दूसरी कविता प्रकृति और प्रेमिका के संदर्भ में प्रस्तुत है कविता विश्व प्रकृति गजल के रूप में रखी गई है। उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उनकी जाफरान से, तुलना क्या करेंगे सजल उनकी जाफरान से, बिजलियां शर्मा जाएं वो जो मुस्कुरा दे, बिजलियां शर्मा जाएं वो जो मुस्कुरा दे, गायब हो जाएं वो आसमान से, गायब हो जाए वो आसमान से, उनके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उनकी जाफरान से। उसकी आंखों में वो तेज वो दिव्यता, उसकी आंखों में वो तेज वो दिव्यता, दीवाना बना दे अगर आंख मिला ले वो भगवान से, दीवाना बना दे अगर आंख मिला ले वो भगवान से, उसकी तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उसकी जाफरान से। देखे और दीवाना कर दे, दीवाना बनाने वाली बात कही थी अभी, देखे और दीवाना कर दे शायद उसको जादू आए, साखों को वो छू दे तो कांटों से भी खुशबू आए, वो अंधेरा उसके केशों की काली घटाओं में, वो अंधेरा अंधेरा स्वयं राह भूल जाए अपने मकान से, उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उसकी जाफरान से। सजल की गजल होती मोहित मखमली मधुर, नाम मेरा देवीदत्त सजल है, लिखता हूँ गीत कविता और गजल इसलिए अपना नाम रख लिया देवीदत्त सजल। तो अंतिम बंद देखे, सजल की गजल होती मोहित मखमली मधुर, जब भी वो वचन निकालती है कमान से, उसकी वाणी सुनकर के ऐसी कोई गजल आ जाती है, तो उसके तन की खुशबू अलग है जहान से, तुलना क्या करेंगे सजल उसकी जाफरान से।
1: बहुत खूबसूरत प्रस्तुति सजल जी ने यहाँ पर दी, और इसके अलावा चार लाइन और मैं उनसे कहूंगा कि यहाँ सुना दें।
0: ये एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है भारत।

शहीदों का ये पावन सपना पूरा होता जाए, शहीदों का ये पावन सपना पूरा होता जाए। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ता जाए। जिन वीरों ने प्राण गंवाए आजादी के काज, जिन वीरों ने प्राण गंवाए आजादी के काज, उनकी अमर शहादत का ही फल है भारत आज, उनकी अमर शहादत का ही फल है भारत आज। इस आंगन में आज जुटे हम, इस आंगन में आज जुटे हम, उनको शीश झुकाएं। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ता जाए। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ता जाए। और दूसरा पंक्ति देखिए, जाति धर्म की बात न करना, सब है एक समान। जाति धर्म की बात न करना, सब है एक समान। सबके भीतर एक बसा है प्यारा हिंदुस्तान, सबके भीतर

0: के बसा है प्यारा हिंदुस्तान। प्रेम की बोली बोले मिलकर, प्रेम की बोली बोले मिलकर, नफरत दूर भगाए, मेरा भारत बदल रहा है आगे बढ़ता जाए। मेरा भारत बदल रहा है आगे बढ़ता जाए। आओ संकल्प करें हम बने वतन की शान, आओ संकल्प करें हम बने वतन की शान। शिक्षा सेवा श्रम से करे माटी का सम्मान।
1: क्या बात है, बहुत बहुत खूब।
0: शिक्षा सेवा श्रम से करे माटी का सम्मान।
1: वाह वाह वाह।
0: सजल कहे तिरंगा ऊंचा सदा लहराए।
2: बहुत सुंदर।
0: मेरा भारत बढ़ता जाए, मेरा भारत बदल रहा है आगे बढ़ता जाए।
2: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ प्रस्तुति रही डॉक्टर देवीदत्त सजल। अब हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यरत हैं। हमारा सौभाग्य है वो यहाँ पर हैं और वो अपनी प्रस्तुति देंगी। आदरणीय डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी
3: जी, हार्दिक आभार सर। तो मैं सीधा सीधा अपनी रचना पे आती हूँ
1: जी।
3: और मेरी रचना का शीर्षक है स्त्री। इस रचना में मैंने स्त्री के विभिन्न रूपों को संजोया है, तो आप भी देखिएगा कि कहाँ तक मैं सफल हो पाई हूँ। सुनिएगा।
1: बहुत खूब।
3: हे स्त्री, तुम स्वयं में संपूर्ण हो, तुम ही सृष्टि की रचयिता, शक्ति और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। तुम अपने घर परिवार और समाज की धुरी हो, तुमको किसी के सहारे की कोई आवश्यकता ही नहीं, तुम अपना सहारा स्वयं हो। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, अपनी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं रखो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दूरदर्शी सोच और तुम्हारी सहनशीलता ही तुमको गर्वित महसूस कराते हैं। तुमने इस संसार को सदैव दिया ही है, यह संसार कभी भी तुम्हारा यह ऋण चुका नहीं पाएगा। तुमने 9 माह गर्भ में रखकर एक मनुष्य को जन्म दिया है, तुमने मायका छोड़ पति के घर को अपनाया है, दोनों घरों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया है और उस जिम्मेदारी को अपने पूर्ण सामर्थ्य से निभाया है।
1: बहुत अच्छा।
3: घर की ही नहीं, घर से बाहर भी हर क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ दफ्तर, व्यवसाय और यहाँ तक चांद पर भी पहुँच कर दिखलाया है।
0: वाह, बहुत सुंदर।
3: ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर तुमने अपना परचम नहीं लहराया है। अपने कोमल हाथों को तुमने मेहनत से कठोर बनाया है, अपने कदमों की गति को सामान्य से तेज दौड़ाया है। हार मानना तुमने कभी सीखा ही नहीं, कठिन हालातों का सामना अपनी सूझबूझ से बखूबी किया है। तुम प्रेम, त्याग और ममता की जीती जागती मूरत हो। तुम ही वो सती हो जिसने यमराज से अपने पति का जीवन वापस लौटाया है। तुम ही वो प्रेसी हो जिसके अथाह प्रेम के कारण तुम्हारा नाम श्री कृष्ण के साथ सदैव के लिए जुड़ गया।
1: बहुत सुंदर
3: जी, धन्यवाद सर। तुम मैं ही वो साहसी मीरा दीवानी है जिसने श्री कृष्ण को अपना पति माना और बिना किसी स्वार्थ और बिना उम्मीद के उनसे नाता जोड़ा है। तुमने अपनी हिम्मत और जोश का लोहा भी समय समय पर मनवाया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना ने दुश्मन को धूल चटाया है, साथ ही साथ सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू एवं महिला खिलाड़ियों ने देश और दुनिया का गौरव बढ़ाया है। हे स्त्री, यह सब करना केवल और केवल तुम्हारे ही बस की बात है। अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें किसी के सहारे और रहमो करम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे सामने यह संसार नतमस्तक है और सदैव रहेगा। तुमको यह कहते हुए गर्व महसूस करना है कि तुम अपने आप में संपूर्ण हो, संपूर्ण हो, संपूर्ण हो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: हे नारी, तुम महान हो, स्वयं में एक सम्मान हो।

0: ये मेरी एक रचना थी।
1: बहुत अच्छी
2: रचना, बहुत सुंदर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगर संचालक महोदय की आज्ञा हो तो मैं गजल पढ़ना चाहती हूँ।
1: जी सुनाइए
0: जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। याद तेरी दिल को तड़पाती, बता अब क्या करूँ, आंख झरनों सी फकत बहती, बता अब क्या करूँ। तुम कभी समझे नहीं दीवानगी को ही मेरी, तुम कभी समझे नहीं दीवानगी को ही मेरी, हो रही ये हीर जज्बाती, बता अब क्या करूँ।
2: वाह
1: वाह वाह, बहुत खूब,
0: धन्यवाद। तोड़कर बंधन ही सारे तुम तो रुखसत हो गए, तोड़कर बंधन ही सारे तुम तो रुखसत हो गए, लिख में हारी प्रेम की पाती, बता अब क्या करूँ।
2: वाह
1: वाह वाह वाह,
0: जी धन्यवाद। गुमशुदासी जिंदगी में प्रेम को तड़पी बहुत, गुमशुदासी जिंदगी में
2: प्रेम
0: को तड़पी बहुत, तेल के बिन ना जले बाती, बता अब क्या करूँ।
2: वाह वाह, बहुत खूब
0: जी धन्यवाद। ये अंधेरा देख तो आलोक को तड़पे बहुत, ये अंधेरा देख तो आलोक को तड़पे बहुत, एक किरण सूरज की ना आती, बता अब क्या करूँ।
1: बहुत खूब,
2: बहुत सुंदर,
0: धन्यवाद। वो पराया हो गया किससे कहें दिल की लगी, वो पराया हो गया किससे कहें दिल की लगी, और शे मुझको नहीं भाती, बता अब क्या करूँ।
1: वाह वाह,
0: बहुत सुंदर जी। अगला शेर है, धन्यवाद।
2: स्वागत।
0: ये मेरा उन्माद अब बस जान लेकर जाएगा, ये मेरा उन्माद अब बस जान लेकर जाएगा, सोच कर ये रूह घबराती, बता अब क्या करूँ।
2: वाह बहुत सुंदर
0: जी, धन्यवाद। देख जा बस हाल तू अपने दीवाने का जरा, देख जा बस हाल तू अपने दीवाने का जरा, राख सी ये मौत सुलगाती, बता अब क्या करूँ।
1: वाह वाह, बहुत खूब
2: जी।
0: जान तो जाओगे एक दिन दिल की तुम मजबूरियाँ, जान तो जाओगे एक दिन दिल की तुम मजबूरियाँ, चाह कुर्बत की नहीं जाती, बता अब क्या करूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब
0: जी,
2: सुंदर
0: जी। अगला शेर सुनिएगा। हम रहेंगे जब नहीं तब याद आएंगे बहुत, हम रहेंगे जब नहीं तब याद आएंगे बहुत, सोच ना तुम खुद को फिर घाती, बता अब क्या करूँ। दौर फिर इस आशिकी का लौट कर आएगा ना, दौर फिर इस आशिकी का लौट कर आएगा ना, बस यही हर बार समझाती, बता अब क्या करूँ।
2: वाह वाह वाह,
1: बहुत
2: सुंदर
0: जी। और गजल का आखिरी शेर है,
2: स्वागत
0: का शेर सुनिएगा।
1: स्वागत
0: जी। ना बताया तुमने के कसूर भला क्या था मेरा, ना बताया तुमने कि कसूर भला था क्या मेरा, है सुमन रह रह के करहाती, बता अब क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए जी। तो अब हमारे बीच में है आदरणीय नीरज त्यागी जी, जो एक वरिष्ठ कवि हैं और उम्दा संचालन कर रहे हैं आप, तो उनको मैं कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आप ही के बारे में है सर, सुनिएगा। कि मेरी यह फितरत नहीं कि किसी को कम आंकूं, मेरी यह फितरत नहीं कि किसी को कम आंकूं, मैं समझता हूँ कि मैं ही एक अदना सा इंसान हूँ, यह आपका बड़प्पन है
1: जी।
0: फिर भी यह यकीन रखता हूँ कि अपने व्यवहार से, फिर भी यह यकीन रखता हूँ कि अपने व्यवहार से लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ।
2: बहुत खूब,
0: तो ये आपकी खासियत है। और ये पंक्तियाँ,
2: दो पंक्तियाँ मैं दिल के लिए बोल रहा हूँ
0: जी। स्वागत।
2: कि ये हकीकत है, ख्वाब नहीं
0: जी,
2: नीरज जी का कोई जवाब नहीं।
0: क्या बात,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर प्रोत्साहित किया और मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ पंक्तियाँ यहाँ सुनाऊँ। इतनी श्रेष्ठ कवि और कवियत्री हैं, गजलकारक हैं, तो मैं भी कुछ यहाँ पर अपनी प्रस्तुति चंद लाइनों में दूंगा
0: जी। स्वागत।
1: कुछ लिखा है वही मैं अब सुनाना चाह रहा हूँ। चेहरे पे दिखेगा वो कैसे छिपेगा, चेहरे पे दिखेगा वो कैसे छिपेगा, इश्क ही तो नीरज हर वक्त दिखेगा।
0: क्या बात है,
1: घरों को सजाते बनाते हैं देखो लोग, घरों को सजाते बनाते हैं देखो लोग, तय ये भी नहीं करते कि वो कैसे बचेगा, तय ये भी नहीं करते कि वो कैसे बचेगा। मेरे मंजर से परेशान खंजर है मेरी ओर, मेरे मंजर से परेशान खंजर है मेरी ओर, जब फितरत ही नहीं तो ये सिर कैसे झुकेगा, तो ये सिर कैसे झुकेगा। मिलते हैं वो हंसते हैं, मिलते हैं वो हंसते हैं, यूं आंखें बदल बदल, इस हंसी में क्या तुम्हें कोई आंसू भी दिखेगा,
0: क्या बात है,
1: कोई आंसू भी दिखेगा। वो जाफरान की खुशबू, वो जाफरान की खुशबू, वो रंग अब कहां, थी वो जमीन मेरी ढूंढू मैं अब कहां। उसने तो यूं ही महफिल में नजर डाली थी वो नीरज, नाम पता पूछा नहीं अब ढूंढे उसे कहां, अब ढूंढे उसे कहां। दिल में है आंखों में लाना जरूरी है, ना समझ है इश्क समझना जरूरी है, ना समझ है इश्क समझना जरूरी है। आंखों की बेबाकी रिश्ते टिका नहीं पाती, आंखों की बेबाकी रिश्ते टिका नहीं पाती। मोहब्बत भी जरूरी है, शर्माना भी जरूरी है, शर्माना भी जरूरी है। महसूस करने के सलीके अलग अलग, महसूस करने के सलीके अलग अलग, पूछे वो क्यों खुदा भी नजर आना जरूरी है, नजर आना जरूरी है। मोहब्बत है ये तो एक दूजे में फना, सोच रहे फिर क्यों क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है।
2: अति सुंदर,
0: बहुत सुंदर।
1: अब कुछ पंक्तियां मैंने आंखों पे लिखी हैं, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ
2: जी। स्वागत है
1: जी, शुक्रिया। आंखें

फुप सजाता जब फैलाता वो पाखें, वो संसार छूना चाहती बिन बोल ही कह जाती, उसे रूह में बसाकर आंखों में ले लूं डुबकी, आंखों की

आंखों से मिलती आंखें, आंखों में दिखता साहिल समंदर सा ढूंढती है। आंखें हैं बंद फिर भी खुलती वो अधमुदी सी, जागी नहीं अभी भी वो बंद ही है बंद सी। ये जग है सारा माया फिर भी तू देखे तरसे, आंखों में टंगी खिड़की याद आए यूं ही बरसे। याद आए यूं कभी धुंधला सा वो दिखता वो पर्दा, जीना जीना बस आंखों को ही पीना, बस आंखों को ही।

0: बताया क्या क्या किया अनदेखा,
1: वाह
0: क्या क्या किया अनदेखा। उजालों का ये शहर है, क्यों सोई सी है आंखें, कभी प्रेम या विरह में पीड़ा भरी ये आंखें।
1: बहुत सुंदर।
0: आंखों से गुजरे रस्ते, दिल में पनाह आंखें, कुछ भी छुपा लो नीरज, सब कहती हैं ये आंखें, सब कहती हैं ये आंखें। बरसात बिना बरसे, बर बस ये बरसे आंखें, अब गीत गुनगुनाऊं ये गीत गाती आंखें, ये गीत गाती आंखें।
1: बहुत खूब।
0: इसके बाद एक आंखों के बाद अब मैं कुछ लाइनें चेहरे के ऊपर।
1: स्वागत।
0: कोहरे में धुला सा अनोखा सा वो चेहरा, उससे भरा सा नरगिस सुबह वो चेहरा, धूप में तपासा इंद्रधनुष चेहरा, इंद्रधनुष में रखा गुलाबी सा वो एक चेहरा।
1: बहुत खूब।
0: भरोसे की दीवारों पे टंगा हुआ सा चेहरा, गजल में लिखा वो याद आए वो ही चेहरा।
1: क्या बात है।
0: कुमकुम और मंजरी से पुता हुआ सा चेहरा, हौसलों के हाथों गुथा हुआ वो चेहरा, किस्मत की हथेली में छुपा हुआ वो चेहरा, अब आंसुओं से भीगा क्यों सुर्ख सुर्ख चेहरा, क्यों सुर्ख सुर्ख चेहरा।
1: बहुत खूब।
0: हर रोज नजर आता भोला सा नया चेहरा, वो हुस्न की बला सा नजरें गड़ाए चेहरा, अब एक ही नजर पे वो मुस्कुराए चेहरा, ये मेरी शायरी है क्यों शर्माए वो चेहरा।
1: बहुत खूब।
0: पेश किया जो गुल को गुलाबी हुआ वो चेहरा, दिल को कब और कैसे चुरा गया वो चेहरा, हर चेहरे में छुपा सा जाना तुम्हारा चेहरा, बाजार में तो यूं भी चेहरे पे एक चेहरा, प्याज की ये मानिंद अब परत परत चेहरा, प्याज की ये मानिंद अब परत परत चेहरा, पर वो गुलाब चेहरा जाना तुम्हारा चेहरा, नजरें हटा न पाऊं वो बेहिजाब चेहरा, जो आशियाने में भी पुत गया है चेहरा, बहुत हो चुका अब जाना हटा दे पहरा, अब ख्वाब आसमां के क्यों यूं उदास चेहरा, कुछ उर्दू में कहा है क्या यूं ही सुर्ख चेहरा, क्या यूं ही सुर्ख चेहरा।
1: बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद काव्य गोष्ठी के लिए। मैं अब समापन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी और डॉक्टर देवीदत्त सजल जी, वरिष्ठ कवि हैं, अपनी रचनाएं यहां सुनाई, प्रस्तुति दी, और यहां पर पधारने के लिए बहुत बहुत आभार उनका। मैं नीरज त्यागी इन्हीं शब्दों के साथ अब इस गोष्ठी का समापन करता हूं। नमस्कार।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर देवीदत्त सजल, डॉक्टर सुमन मोहन सलोनी और श्री नीरज त्यागी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री नीरज त्यागी। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। इस खूबसूरत शाम में आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर की और साथ है एसपी बाला सुब्रमण्यम।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म रंगीला से अभी आप सुन रहे थे ये गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और आइए सुनते हैं इसी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आवाज केके की, और ये गीत है फिल्म साथिया से।

0: اسی خوبصورت گیت کے ساتھ مجھے یعنی ترنم جہاں کو دیجیے اجازت. یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. اب سماچار سنیے.
1: کیا آپ پریشانیوں سے گھرے ہیں؟ من بھاری ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ یاد رکھیں سمادھان آپ کے پاس ہے. ٹیلی مانس کے نشوک نمبر 14416 پر کال کریں. کہیں سے بھی کبھی بھی 24 گھنٹے یہ سویدھا اپلبدھ ہے. یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور آپ کو صحیح دشا دی جاتی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, مدد بس ایک کال دور ہے.
0: نمسکار, آکاش وانی سے سماچار سندھیا کے ساتھ میں سرفیروزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की. तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे. परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला. कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी. राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया. और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की. इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे. इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है. प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा. उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है. हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है. हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा.
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी. ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है. इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे. शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी. राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं. उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
3: आज सुबह 4 बजे हूँ, पूरा डिटेल से हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया। बहुत बड़े डिपार्टमेंट है इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
4: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
6: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
7: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
8: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defense Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event. And Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
10: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
9: यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टुडे अज्यूम चार्ज एट द एजुकेशन मिनिस्टर। मिस्टर जोशी वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट यस्टरडे फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। मिस्टर जोशी ऑल्सो कंटिन्यूज टू होल्ड द पोर्टफोलियोज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
11: I am reviewing all the details and the decisions that need to be taken. I have been gathering information and trying to understand the functioning of the entire ministry. We had continuous meetings today. This is a new subject for me. I have taken charge today and held detailed discussions with the senior officers. It is a very big department, so I will speak to you in detail after I have understood it completely.
9: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. A Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
6: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें
9: Kargil Vijay Divas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
4: आज कारगिल विजय दिवस है ये दिन हमें गर्व से भर देता है ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां कठिन मौसम दुश्मन की चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं
9: The main function of the Kargil Vijay Divas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
12: India has the capacity to respond to every misadventure of Pakistan in a manner far more severe than its imagination and I want to give this clear message from this platform. This will be the consequence of every single misadventure aimed at India's sovereignty. Friends, our intention is clear. There will be no talks with Pakistan and if there are talks, they will only be about POK, which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan.
9: The defense minister also highlighted the success of Operation Sindoor as a proof that India possesses the capability to respond to Pakistan's every misadventure with a severity far beyond its imagination. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. At the ongoing Commonwealth Games, Indian weightlifter Mirabai Chanu won the gold medal in the women's 48-kilogram event in Glasgow today. The 31-year-old lifter produced a record-breaking performance, lifting 85 kilograms in the snatch to set a CWG record in the category. She then lifted 105 kilograms in the clean and jerk, another Games record, to finish with a total of 190 kilograms. With this victory, Mirabai Chanu secured her third consecutive Commonwealth Games gold medal, having also

समय की खिदमत में याद आबर से ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशियात मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और डीडी फ्री डिश पर।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। इस्तकबाल है सभी सामईन का। और लीजिए सुनिए तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा। अब से कुछ देर में यानी 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे तलत अजीज की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें।

रात 10 बजे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा सुनिएगा। रात 10:30 पर हसबे मामूल सामयीन के मेल्स पर मबनी फरमाइशी फिल्मी नामों का प्रोग्राम तामिल शाह पेश किया जाएगा। प्रोग्राम जारी रहेगा रात 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम शब 11 बजे खबरें बड़े सगीर से नशर की जाएंगी।

11:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम सुनिएगा। हबीब पेंटर और हमनवाओं से कव्वालियां सुनिएगा रात 11:45 पर। शब के 12 बजे आलमी खबरें सुनिएगा।

12:10 पर पंडित उमाशंकर मिश्रा का सितार पर बजाया राग देसी तोड़ी सुनिएगा। शाम 12:30 पर पुराने फिल्मी नामों का प्रोग्राम आखिरी शब पेश किया जाएगा और तीसरी मजलिस के आखिर में यानी शब के 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। तो समय ये थी उन प्रोग्राम्स की जानकारी जो आज आप उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस में समाप्त करेंगे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम एक फनकार। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे तलत अजीज की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं कतील शिफाई की गजल से।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मातृ वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वे इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करें और एक महफूज बासलाहियत और खुद कफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खास वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी तआवुन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में INS महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। कैच द रेन मुहिम के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुल्क गिर मुहिम जारी है। आज मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए यौम आजादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीजों से नवाजें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वह न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं बल्कि वह इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी बन चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरुआत से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद है और नौजवानों का इस तस्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वज़ीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वीं करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुदमुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुश्त पनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में यह सलाहियत है कि वह पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तसव्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे। खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अज़ला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनवाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। एक तिसाना वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषिकांत सिंह चनम्बन ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत की तरफ से दिए गए 193 रन के निशाने का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से मयंक यादव ने 3 विकेट जबकि यश ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की सलाहत के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकेनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निपटने

0: के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीरे आज़म मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज और बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीरे दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सामाइन आप कुछ बातें करते हैं आपकी और हमारी सेहत के हवाले से। प्रोग्राम है हेल्थ टिप्स। मैं हूं आपकी मेजबान नगमा। तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। जी हां सामाइन, आज हेल्थ टिप्स में हम बात करेंगे इन्हीं खूबसूरत आंखों के बारे में, जिन पर शायरों ने कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। जी जैसी गहरी आंखें, बोलती आंखें, हंसती आंखें, मुस्कुराती आंखें। जी हां, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि दिमाग से रिलेटेड कई परेशानियों को, बीमारियों को आंखों की जांच से पता लगाया जा सकता है। हमारे जिस्म में सिर्फ आंखें ही एक ऐसा आजा है जहां हम खून की नसों के अंदर देख सकते हैं। हमारे जिस्म में कहीं भी खून की नसों के अंदर देखना नामुमकिन है। आंखों की ब्लड वेसल्स के जरिए बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। आजकल आंखों के टेस्ट के जरिए अल्जाइमर की शुरुआती अलामतों का पता भी लगाया जा सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें देखने की ताकत मुतासिर होती है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस तरह की बीमारियों का आंखों की जांच के जरिए पता लगाया जा सकता है। दिमाग का आईना होती है आंखें, इसीलिए दिमागी बीमारियों को बआसानी पहचाना जा सकता है। आज आंखों की जांच के जरिए बहुत सी बीमारी पता लग सकती है। बच्चों में होने वाली कई तरह की दिमागी परेशानियां आगे चलकर आंखों की परेशानियों का बाइस बनती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा होने पर अगर काफी देर से वो रोता है तो इसका मतलब है उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रही है। अगर बच्चा देर से रोता है तो उसका असर आगे चलकर दिमाग और आंखों दोनों पर पड़ता है। समय इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनका असर हमारी आंखों पर सबसे पहले पड़ता है, क्योंकि हम इन्हीं आंखों से ये दुनिया देख रहे होते हैं। क्या है वो वजूहात, बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

समय आज हम हेल्थ टिप्स में बात कर रहे हैं आंखों के हवाले से। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में टेंशन और डिप्रेशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी रहने दबाव और मायूसी का बराह रास्त असर हमारी आंखों पर पड़ता है और इस पर रिसर्च भी हो रही है कि आंखों के जरिए पता लगाया जा सके कि दिमाग में तनाव या डिप्रेशन का लेवल क्या है। अक्सर टेंशन की वजह से आंखों में भारीपन महसूस होता है। एक तहकीक से पता लगाया गया है कि जहनी दबाव की हालत में आंखों के अंदर दबाव में थोड़ी देर के लिए इजाफा होता है, यानी आंखों के अंदरूनी दबाव में थोड़ी देर के लिए इजाफा हो सकता है और ये दबाव ग्लूकोमा के ग्रस्त मरीजों के लिए फिक्र अंगेज है, क्योंकि ग्लूकोमा की परेशानी दिमाग से जुड़ी है। हम सबको चाहिए कि जैसे जैसे हम बॉडी चेकअप कराते रहते हैं वैसे ही हमें आंखों की चेकअप भी कराते रहना चाहिए। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू कर दे उसकी आंखों की जांच वक्त वक्त पर

0: बताते रहना चाहिए। इससे शुरुआत से ही आंखों की परेशानी का पता चल सकता है, क्योंकि अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो वो दिमाग पर भी असर डालेगी। बहू के मामले में 40 की उम्र के बाद हर साल आंखों की जांच कराना जरूरी है। इससे वक्त रहते आंखों की किसी भी तरह की परेशानी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। आंखें कुदरत का एक बेशकीमती अतिया है, खूबसूरत अतिया है। आपको पता है कि आंखें कितने रंग की होती हैं? जी हाँ, आंखें भूरी, नीली, हेजल, हरी, अंबर और ग्रे रंग की होती हैं। ये आंखों में मौजूद मेलानिन नामी पिगमेंट की और रोशनी के फैलाव पर मुनसिर होता है। तो समाइन हेल्थ टिप्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और लीजिए समाइन अब सुनिए प्रोग्राम मार्केट मंत्र।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember, we do not address stock or company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke sath Market Mantra hazir hai. Aaj raviwar hai aur har raviwar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज नियरली 15,000 crore रुपीज इन जुलाई सो फार। इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेज रिबाउंड आफ्टर टू स्ट्रेट वीक्स ऑफ डिक्लाइन। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक।
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में लिवाली का रुख कायम रखा। जुलाई में अब तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। सराफा बाजार में दो हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में तेजी और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर।
0: Listeners, before we go just any further in the program, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जुलाई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआईज ने लिवाली का रुख कायम रखा है। इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में उन्होंने 14,946 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो एफपीआईज ने भारतीय शेयरों में 3,049 करोड़ रुपए डाले हैं। भारतीय ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। जुलाई में उन्होंने एफएआर के जरिए 9,521 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 27,351 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आशुतोष, ये आंकड़े अब बहुत दिनों के बाद हमें जुलाई में अच्छे आंकड़े कुछ दिखाई दे रहे हैं। एफपीआईज का रुख, उत्साह, दिलचस्पी सब बनी हुई है अभी। लेकिन अभी हमारे बाजार में जो पैसा आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि वहां से साउथ कोरिया के मार्केट से या जहां पर भी एआई वाला और चिप वाले मार्केट थे वहां से पैसे निकले हैं और हमारे बाजार में आ रहे हैं, तो क्या ये कुछ टेम्पररी फेज है मार्केट की उथल पुथल का या शिफ्ट होने का, या हम माने कि अभी कुछ बड़ा बदला है, इक्वेशंस बदल गए हैं?
2: देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट का जो एक मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड है, जो इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स हैं, वो बरकरार थे, बरकरार हैं और आशा है कि वो बरकरार रहेंगे। और इसीलिए जो एक सेक्यूलर तरीके से देखा गया है कि फॉरेन कैपिटल का इंडिया में इन्वेस्ट होना, उसका निवेशित होना, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान हुआ या इस ट्रेंड में कोई रोक लगी है। हाँ, बीच में जो वैश्विक रूप में जो परिस्थितियां बनती हैं उनकी वजह से जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो जरूर मार्केट को उनको झेलना पड़ता है। अभी हमने देखा पीछे जैसे मिडिल ईस्ट में जो ट्रेंड रहा उसको लेकर जो एक रिस्क एवर्जन ग्लोबल मार्केट में आता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आया। हालांकि इंडिया का इस पर्टिकुलर वॉर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट तो ऐसी घटनाओं का ग्लोबल होता ही है। AI का एक ट्रेंड है, बीच में देखा गया कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ट्रेंड्स काफी चर्चा में रहे, काफी इनके ऊपर फोकस रहा, लेकिन वैल्यूएशंस की फिर बात की जाने लगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाने लगी। तो ये शॉर्ट टर्म में ये सब नॉइस जो है इम्पैक्ट करती है मार्केट को और करती रहेगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सिग्नल देखेंगे उसमें लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है। और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो हमने देखा है कि फॉरेन कैपिटल वापस इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करने में सक्षम है।
0: Okay, taking the discussion further from where you left, saying that there is still interest in the Indian market. So, from the retail investors' point of view, Ashutosh, how do you see this in building confidence in the market sentiment?
2: See, as far as the global is concerned, of course, when the foreign capital comes to India, it gives a fillip to the Indian markets, and when the Indian markets recover, they get on a momentum. So that brings cheer among the domestic investors as well.
0: Correct.
2: But time and again we've been advising that domestic investors, retail investors should not be overly reading into the short-term trends of FII money or what these investors are doing. Focus far more on your circumstances, what is your investing need that you are investing for, how much you can save and invest, and what is in the long-term scheme of things that you are wanting to achieve. If you have the long time horizon, equity is still the most promising and the most wealth generating asset class is the most wealth generating potential, and that remains a secular trend.
0: We'll come back to you with this discussion. Meanwhile, let's connect with our first caller from Delhi, Sunil Gupta. Welcome to the show. Please ask your question.
3: Namaskar, सर, मेरे एक क्वेश्चन दो से, एक तो ये था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कोई एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें कि एक ही जगह से सब जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑथराइज कोई ठीक था, और इनिशियली 32 इयर्स एज वाले के लिए कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस किस सेगमेंट में करनी चाहिए?
2: तो पहला सवाल आपका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहीं सेंट्रल जगह से हो सकती है? देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक और प्लेटफॉर्म है एमएफ सेंट्रल के नाम से, जो कि दो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, के फिनटेक और कैम्स, इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। आप एमएफ सेंट्रल पे भी अपना लॉग इन कर डायरेक्ट प्लान्स में म्यूचुअल फंड्स के सहजता के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आप एमएफ सेंट्रल एक बार ट्राई करिए, शायद आपको वो कन्वीनियंट लगेगा। आप उस पर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी, नॉमिनी चेंज करना, बैंक अकाउंट अपडेट करना, इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी आप सहजता के साथ एमएफ सेंट्रल पोर्टल पे कर सकते हैं, तो आप उसको देखिए। दूसरा आपका सवाल, 32 साल आपने उम्र बताई, लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना चाहते हैं, शुरुआती निवेशक है।

0: आप और अगर आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक या दो अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत करें। ये फंड्स आपका करीब 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं, बचा हुआ 20-25% पैसा डेट मार्केट्स में निवेश करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ जनरेशन का, इक्विटी मार्केट्स के की बढ़त का लाभ आपको प्राप्त कराने में सक्षम होते हैं। लेकिन क्योंकि 20-25% पैसा डेट में होता है, तो जब भी मार्केट गिरती है ये फंड्स थोड़ा कम गिरते हैं, और उस वजह से एक नए इन्वेस्टर को पैनिक ना हो, वो बहुत जल्दी निराश हताश ना हो जाए, तो वैसा थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस देने में रिलेटिव व्हेन द मार्केट्स फॉल कि ये फंड्स सक्षम है। तो अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में अपना SIP शुरू करें, भले ही थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करें, इसको साल 6 महीना एक्सपीरियंस करें, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके बाद अपनी निवेश की मात्रा बढ़ाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैंने अपना स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाया था और मैं गोल्ड ETF परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गोल्ड ETF के नाम से वहाँ गोल्ड ETF डायरेक्ट के नाम से नजर नहीं आ रहा है, गोल्ड फंड के नाम से नजर आ रहा है। तो क्या ये गोल्ड ETF और गोल्ड फंड एक ही चीज है, और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्या कोई फर्क है? धन्यवाद।
0: जी, गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स का मकसद एक ही होता है, लेकिन ये दो अलग प्रोडक्ट्स हैं। सो मकसद एक ही है कि ये आपका पैसा गोल्ड में निवेश करते हैं, और गोल्ड के दाम जिस तरह उतार चढ़ाव होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके रिटर्न मिलते हैं। लेकिन गोल्ड ETF एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, आप गोल्ड ETFs की जो यूनिट्स हैं आप स्टॉक एक्सचेंज पे किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपको गोल्ड के रिटर्न्स का ही मिलेगा, लेकिन इसकी यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, एक्सपेंस रेशियो कम होती है इनकी काफी, और इनको आप ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। वहीं गोल्ड फंड जो है वो जैसे आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं। टिपिकली ये होता है कि किसी भी AMC का, किसी भी म्यूचुअल फंड का जो गोल्ड फंड होता है वो आपका पैसा इंटर्न गोल्ड ETF में निवेश करता है, और गोल्ड ETF के माध्यम से वो पैसा आगे गोल्ड में जाता है। तो आप गोल्ड फंड को एक पास थ्रू व्हीकल मानिए, आपका पैसा गोल्ड फंड में जाएगा, गोल्ड फंड से गोल्ड ETF में जाएगा, और वहां से गोल्ड में निवेश होगा। तो एक लेयर ऐड हो जाती है। जिन इन्वेस्टर्स को स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोलना, वो कन्वीनियंस चाहते हैं विदाउट स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट निवेश करने के लिए, तो गोल्ड ETF गोल्ड फंड उनके लिए अच्छा विकल्प है। थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता दोनों में है। आप वो चुनाव करें उसका जो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको आप नॉर्मली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास स्टॉक ब्रोकिंग एक डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप गोल्ड ETF की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, तो सिर्फ एक गोल्ड फंड में थोड़ा सा अपना पैसा लगाने के लिए आप एक डीमैट और स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट मेंटेन करें, मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनकन्वीनियंस है, कंबरसम है, तो आप गोल्ड फंड की तरफ जा सकते हैं।
3: ऑलराइट, लेट्स नाउ आस्क विशाल फ्रॉम दिल्ली व्हाट्स हिज क्वेश्चन। विशाल जी, सवाल पूछे।
4: नमस्कार, मानसून मंत्रा, जैसे मैं 35 ईयर मेरी साल है, तो मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट फंड करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में, मेरे को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न भी चाहिए।
0: जी, आप 30 साल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न आपने बोला। देखिए, आमतौर पर मेरी सलाह यही होती है कि अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जैसा मैं अभी कह रहा था, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स मुझे काफी बेहतर लगते हैं एक शुरुआती निवेशक के लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न के लिए तैयार हैं, अगर मार्केट डीप करेक्शन होता है 25-30% की, अगर अचानक मार्केट में गिरावट आती है, उससे आप निराश हताश नहीं होंगे, तो आप कोई भी एक अच्छे मल्टी कैप फंड का चुनाव करिए। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो करीब आपका कम से कम 25-25% आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगता है, और बाकी 25% फंड मैनेजर की के पास लीवे होता है कि वो किस मार्केट सेगमेंट में कहां निवेश करना चाहते हैं। तो मल्टी कैप फंड ऐसे हैं कि एक ही फंड में आपको पूरी मार्केट का एक्सपोजर मिलता है, कम से कम 50%, क्योंकि आपका पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहता है, तो एक रीजनेबली एग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने में, अच्छे फंड्स अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम रहते हैं। तो आप किसी एक या दो मल्टी कैप फंड्स का चुनाव कर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, एक साथ अगर आपके पास एक लमसम धनराशि है उसको भी आप जरूर कम से कम 8 से 10 महीने

0: दिनों में जरूर स्प्रेड कर ही लगाएं।
1: जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से विश्वज्योति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: गुड इवनिंग फॉर ऑल।
3: गुड इवनिंग।
2: मैं ओल्ड इन्वेस्टर हूँ। मेन बात है क्या, देखिए दो साल से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप लोग बोल रहे हैं AI, आप बोल रहे हैं टैरिफ, आप बोल रहे हैं ट्रंप, आप बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट, लेकिन करेक्शन जो हो रहा है, व्हाट द यूज ऑफ, आई कांट अंडरस्टैंड एक्चुअली। करेक्शन मतलब क्या है, बैंक का इंटरेस्ट का लेवल के नीचे जाएगी, म्यूचुअल फंड किस लिए हम लोग करेंगे?
0: जी देखिए, म्यूचुअल फंड की जहां तक बात है, रिटर्न आपके हमेशा ही मार्केट लिंक रहते हैं, तो बिल्कुल अगर मार्केट में गिरावट का माहौल है, अगर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट के नीचे भी इनका रिटर्न जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, आपकी कैपिटल में आपको लॉस भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक निवेश है, इनमें मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिस्क बरकरार रहता है, और इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपने बताया कि आप एक ओल्ड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या बैंक FD इस टाइप के विकल्प हैं, लेकिन इनके रिटर्न हमेशा ही मॉडरेट रहते हैं, ये आपको इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न इन सभी विकल्पों का देखते हैं, तो आपको एक काफी मॉडरेट रिटर्न मिलता है। तो अगर आप मॉडरेट रिटर्न लेकिन श्योरिटी के साथ से संतुष्ट हैं, तो यही सारे आपके पास विकल्प हैं, लेकिन अगर आप हाई रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल जो सही रास्ता है, वो एक मिडल पाथ है, कि आप अपना काफी पैसा एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में रखें, लेकिन थोड़ा पैसा हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में भी डालिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे ओल्ड एज में, आज आपका जितने पैसे से आपका घर चल जाता है, 5 साल 10 साल में वो पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो उसके लिए आपकी कैपिटल का ग्रो करना भी जरूरी है। तो मेरा ख्याल एक ओल्ड इन्वेस्टर को भी थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है शायद, और उसके लिए म्यूचुअल फंड्स एक सही विकल्प है।
3: Listeners, you are tuned to your very own favorite program, Market Mantra, and today being Sunday, we are entertaining calls on mutual fund related queries. We are fortunate to have with us in the studios mutual fund expert Ashutosh Gupta. To connect with us, you can call us on 2331 2431 and 2371 7106.
1: हफ्ते की गिरावट के बाद सोने और चांदी में पिछले हफ्ते थोड़ी तेजी देखी गई। M6 में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.56% की बढ़त हुई और ये 1,43,916 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 1.55% बढ़कर 2,22,138 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 1.3% की बढ़त हुई और ये $4,070.80 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 3.8% बढ़कर $58.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई। आशुतोष, सोने और चांदी का जिक्र जब भी आता है और म्यूचुअल फंड्स का जब हमारा संडे का स्पेशल शो रहता है, अक्सर बात होती है, लोग पूछते हैं कि जब बीच में जब सोने और चांदी में काफी तेजी दिखाई दे रही थी, तब लोग पूछते हैं कि क्या करें, हम सोने और चांदी की ओर जाएं या म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं। एक सही पोर्टफोलियो बनाने के, एक सही निवेश बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत और हर चीज का लाभ उठाने के लिए किस चीज का कितना प्रतिशत हमें रखना चाहिए?
0: जी, तो पहले तो ये जो रिबाउंड देखा गया है सोने और चांदी के दाम में, ये एक मेरा ख्याल राहत के रूप में आया है। बहुत सारे निवेशक जो पिछले 2-3 साल में जो सोने और चांदी में तेजी देखी गई है, उसको देखकर जो बहुत सारे निवेशक इसमें एंटर हुए थे और फिर इस साल शुरुआत से उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, तो मेरा ख्याल ये जो थोड़ा रिबाउंड है, ये उनके लिए थोड़ा राहतदायक जरूर होगा। और इसी से इन्वेस्टर्स में, यही इन्वेस्टर्स के लिए मेन सीख छुपी है कि आप किसी भी
3: हो

0: रेंट को, किसी भी हॉट एसेट क्लास को जो पिछले एक साल में जिसने ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है, अगर आप सिर्फ मोमेंटम चेस कर रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग में पिछले एक साल में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास है अगर उसका पीछा कर रहे हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि आपके हाथ निराशा लगेगी। आप जब वो बहुत ऊपर उठ चुकी होगी एसेट क्लास, आप तब उसमें निवेश करेंगे और उसके बाद उसके रिटर्न मॉडरेट हो जाएंगे या गिर जाएंगे और वो आपके लिए निराशाजनक होगा। तो जरूरी है कि आप डिसिप्लिन से अपने लिए एक एसेट एलोकेशन बनाएं और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करें, चाहे वो एसेट क्लास उतार चढ़ाव के माहौल के बावजूद आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। गोल्ड की जहां तक बात है, इसका मुख्य रूप से रोल जो होता है पोर्टफोलियो में वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए होता है। ये एक काउंटर वेट है इक्विटी का। जब जब इक्विटी मार्केट में गिरावट आई है, देखा गया है कि गोल्ड उस वक्त थोड़ी स्थिरता प्रदान करता है। जब जब इकोनॉमी में क्राइसिस का माहौल होता है, गोल्ड एज एसेट क्लास, क्योंकि उसको एक सेफ हेवन की तरह देखा गया है, तो उसके रिटर्न उन दिनों अच्छे चलते हैं। तो इस एट्रीब्यूट के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर 10-15% आप गोल्ड को रखते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जरूरी है कि आप इस पे बरकरार रहें। आप तब ना इन्वेस्ट करें जब वो गोल्ड बढ़ चला है और उसके बाद आप निवेश करेंगे तो आपके हाथ निराशा लगेगी। तो आप एक डिसिप्लिन के साथ 10-15% की एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में कार्व आउट करें और उस पे बरकरार रहें।
1: और गोल्ड लेने के लिए फिजिकल गोल्ड ना लें, आप ETF ले सकते हैं तो लें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में भी। आपने जैसे अभी एक सवाल आया था हमारे पास कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, अगर आपको सहजता के साथ इन्वेस्ट करना है, गोल्ड का फिजिकल अगर आपको निवेश का ही आपका पर्पस है, क्योंकि गोल्ड का मुख्य रूप से हिंदुस्तान में पर्पस होता है कंजम्पशन, उसको ज्वेलरी के रूप में एक कंजम्पशन एसेट कितने देखा जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट कितने यूज करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स जो आज काफी सहजता के साथ अवेलेबल है, वो अमंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए।
2: वेलकम बैक टू यू आशुतोष ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद व्हाट हिज क्वेरी इज। सुभाष जी, सवाल पूछे।
3: नमस्कार सर
2: जी।
3: और मैं इसमें मेरा ही असेट का लार्ज कैप फंड में 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ दो साल से प्रॉपरली, जैसे पहले इसका परफॉर्मेंस था, मैंने जो रिटर्न मिल रहे थे अभी तो बहुत कम है इसके रिटर्न, अभी तो इस साल तो नेगेटिव में ही रहा। तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसमें मेरा ये असेट लार्ज कैप फंड का?
0: जी, मेरा ख्याल आप मेरा एसेट लार्ज कैप में बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका हिस्टोरिक रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है और एक इन्वेस्टर्स की जो इसके साथ एक्सपेक्टेशन साल दर साल सेट हो गई थी, तो हाल फिलहाल में उन एक्सपेक्टेशंस पे शायद ये उतना खरा नहीं उतरा है। लेकिन अपने आप में ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस ये कोई बहुत बुरा फंड नहीं है या बहुत निराशाजनक नहीं हुआ है। हाँ, जिस टाइप की एक्सपेक्टेशन जो उसने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था उस पर खरे उतर पाना या लोगों को जिस टाइप की इससे आशाएं साल दर साल रहती हैं, तो कहीं पे निवेशकों को अपनी एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट करनी पड़ेंगी। एक बढ़ता हुआ फंड है, मेरा ख्याल आज की डेट में 40,000 करोड़ के करीब इसका AUM है। तो देखिए, जो एक टाइम पर जिस टाइप से ये रिटर्न दे पाता था या जिस तरीके से ये मैनेज होता था, बढ़ते AUM के साथ उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन अभी भी फंड मैनेजमेंट टीम काफी सक्षम है, अच्छा फंड है। इस साल अगर देखें नेगेटिव रिटर्न, तो देखिए इसलिए कि मार्केट के नेगेटिव रिटर्न है, तो नेगेटिव रिटर्न सारे लार्ज कैप फंड के, लेकिन फिर भी अबव एवरेज परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी में इस साल। तो मेरा ख्याल आप फिलहाल तो इस फंड में बिल्कुल बने रह सकते हैं।
1: जी, और सरबजीत, हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे सवाल करते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा है, हमने इतने समय से निवेश किया हुआ था, अब क्या करें हम? तो आशुतोष, अक्सर ये सवाल उठता है, और एक बुनियादी निवेशक के तरीके से अगर हम देखें कि अगर हमने, चलिए, 10,000 रूपये, 5,000 रूपये या 1,00,000 रूपये कहीं फंड्स में लगाए हुए हैं, 1-2-3 फंड्स में डाले हुए हैं, तो हमें उसको कितने समय पर रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि फंड्स का तो प्रदर्शन बदलता रहता है समय के साथ, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, तो हमें कब रिव्यू करना चाहिए और कब कितनी गिरावट आने पर उसके प्रदर्शन में हमें बदल देना चाहिए, अपने पैसे हटा लेने चाहिए?
0: जी, तो देखिए ये काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर्स काफी शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। जहां तक पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, मेरा ख्याल अगर आप साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, आप अपने SIPs बनाइए, उनको चलने दीजिए, साल में एक

0: एक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और जो 75% थी वो अब 85% हो चली है, तो एक साल बाद रिव्यू करके थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए, जिससे जो आप रिस्क रिटर्न इक्वेशन बनाए रखना चाहते थे वो बनी रहे। और तीसरा आप नजरिया यही है कि क्या कुछ फंड्स ऐसे हो गए हैं कि जिनमें बदलाव की जरूरत है, वो निराशाजनक हो गए हैं और पोर्टफोलियो में कुछ उलटफेर की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ पिछले एक साल या पिछले छह महीने के रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड मत करिए, कम से कम तीन चार साल का होराइजन किसी भी फंड के लिए रखिए। बेहतरीन से बेहतरीन फंड ऑल्सो गोज थ्रू अ रफ फेज, तो किसी भी फंड का कुछ समय के लिए अच्छे रिटर्न ना देना ये बड़ा स्वाभाविक है। तो छोटे छोटे टाइम पीरियड पे साल डेढ़ साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए, और जरूरी आप उस अगर आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो शायद स्मॉल कैप बाजार ही निराशाजनक रहा है, तो आप ये भी देखिए कि जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इन सारे मुद्दों पर आप विचार करके फिर अपना डिसीजन।
1: क्योंकि अगर पूरा बाजार ही गिरा है, अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो जो उन पर निर्भर है, अगर उनमें ही गिरावट आई है और अगर फंड भी लगभग उतना ही गिरा है तब तो उसको वाजिब मान सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है और इसी तरीके से देखना चाहिए, और अगर किसी फंड ने उसके आउट ऑफ द लाइन भी अंडर परफॉर्म किया तो भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। हर बार जब आप फंड बेचने का डिसीजन लेते हैं अब आप टैक्स भरते हैं, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप फंड्स चेंज करते रहेंगे तो मेरा ख्याल आप टैक्स तो भरपूर भरेंगे, शायद उसका लाभ उतना नहीं उठा पाएंगे।
2: आशुतोष, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम दिल्ली। केशव जी सवाल पूछे।
3: हाँ जी नमस्कार, आकाशवाणी मार्केट मित्र, मैं आकाशवाणी को ये पूछना चाहूंगा। सबसे तो सवाल मेरा कि जो आप लोग आखिरी में एक बातचीत बताते हैं कि पंजीकृत ही से आप हमारा इनसे कोई विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मेरे इतने बड़े अच्छे एक्सपर्ट आते हैं आपके मंच पर, तो ये एक्सपर्ट ही तो है, पंजीकृत ही तो होंगे, आप इनको जो बुलाते हैं तो आप कृपा करके ये कंफ्यूजन क्यों हम लोगों को समझ नहीं आता, इनके पर हम बात का विश्वास करें क्या ना करें? धन्यवाद।
1: देखिए, मार्केट मंत्र आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, उसे मानना या नहीं मानना, और चूंकि पैसा आपका है तो फैसला आपका है, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। जी सरबजीत, अगली कहानी पे चलें।
2: यस, लेट्स टेक अ पीप इनटू हाउ द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू शो अप नेक्स्ट वीक। द डोमेस्टिक मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक क्यूज फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कमोडिटी प्राइसेस, फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी, प्रोग्रेस इन मॉनसून एंड currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators including first quarter of corporate earnings, foreign institutional investors and rupee and technical levels. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the Brent crude, which has risen above $100 per barrel amid West Asia tensions and soon to be held US Federal Reserve meeting. Ashutosh, we'll discuss this, but first let's connect with our caller. Manoj ji, sawal poochhe.
1: Manoj ji, aap sun pa rahe
4: hain? Haan ji, namaskar.
1: Ji, namaskar.
4: Ji, main ye maine kuch mutual fund apne sell kare the is saal April mein.
1: Ji, hello. Ji ji, jaldi se pooch rahe hain, sab waqt bahut kam hai.
4: जी हाँ जी हाँ, तो मैंने जैसे ये 2,25,000 जैसे उसकी कॉस्ट थी तो मैंने 2,00,000 की जो है वो सेल करी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने 2,00,000 की सेल करी है और उसके ऊपर कुछ एप्रिसिएशन आ रहा था तो क्या जो कैपिटल गेन होगा वो प्रोपोर्शनेटली होगा या कैसे होगा वो?
0: जी नहीं, कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है जो आपकी सबसे पुरानी यूनिट्स बिकी हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमेशा यूज होता है, तो आपने 2,25,000 के निवेश में जो 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, जो सबसे पुरानी यूनिट्स हैं उन पर जितना गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
1: जी आशुतोष, आज वक्त इतना ही है, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद आपका।
2: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, परचेज nearly 15,000 crore rupees in July so far. In bullion market, gold and silver prices rebound after two straight weeks of decline, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: Is karyakram mein visheshagyon dwara vichar unke apne hain. Akashwani apne shrotaon ko salah deta hai ki

0: निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मुझे खिदमत है प्रोग्राम तामिल इरशाद सामाइन के SMS पर मबनी फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद में आज आपकी मेजबान हूँ मैं नगमा आदाब से खैर मकदम सभी साथियों का। आज हमारे बहुत से सामाइन ने अपने मेल्स में कारगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं। विजय दिवस के मौके पर आज हम कारगिल के शहीदों को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं। कारगिल के जाबाजों को दिल से सलाम।

गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और इनके साथी, चंडीगढ़ से सतीश नेजा और बिमला नेजा, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहिब, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। और समय लगना नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है सपनों का सौदागर। आवाज है लता मंगेशकर की, मौसीकार हैं शंकर जयकिशन और नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी। सुनने की फरमाइश की है आप सबने, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी, नंदूरा महाराज से श्री कृष्ण बाटे, संदीप बाटे और अमूल्या बाटे, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप सिंह की फरमाइश आई है फिरोजपुर पंजाब से। इसी नगमे को सुनना चाहा है मयू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और ये अगला फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है, ये आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर और शाहिद साजिद, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, योगेंद्र नायक की फरमाइशी मेल भी हम तक पहुंच चुका है और इनके साथ हैं गीता नायक और निहारिका सुशांत। यह मेल हम तक पहुंचा है जिला कासगंज यूपी से। मोहम्मद कलीम अंसारी का मैसेज हमारे पास आया है, ये फरमाइशी मेल माफ कीजिएगा, और मोहम्मद शाहरुख भाई जान भी इनके साथ हैं। अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है, ये आया है कमला रानी, बोधराज खोलवार, भानु प्रकाश का। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल। तो मुझे समय सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा, फिल्म का नाम है सपनों का सौदागर, आवाज लता मंगेशकर की।

शर्मा, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा, शराफ रोड राजकोट से, राजकोट गुजरात से, नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा लखानी और वेहान लखानी, और ये हैं कि रेखा कामले, राखी कामले, आनंद कुमार कामले इंदौर से। सुनिए सुनते हैं आप सबके पसंद पर अगला नामा।

का और अलीगढ़ वाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार कुलदीप गांधी और इनके साथी। और ये फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है, ये आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और डब्बू बब्बू का। जवान नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी और भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवर का गंजुनवारा से, अमीर खुसरो रोड गंजुनवारा से ये फरमाइशी मेल आया। इसी नकमे को सुनना चाहे साधुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़, चंद्र कला रेवाड़, नॉर्थ पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा। और ये हैं तेजस काले, लोकेश एस काले और संतोष काले। अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है, ये आया है आतिश रेडियो लिस्नर क्लब बिशनपुर गिरडी झारखंड से, इम्तियाज इमाम आतिश, तारा परवीन आतिश और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, अभिरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, परमला भावसार, भावेश कुमार भावसार का। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा फिल्म पालकी का।

0: आवाज जारी रहेगा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए खबरें बरसग़ीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बरसग़ीर की खबरों के साथ मैं मोहम्मद शहजाद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला अख्तियारती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन निरेकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदवनवानी से निपटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इम्तिहानात की इस्लाहात के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन निलेकनी की क्यादत में एक आला अख्तियारती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात के इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानात का निजाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डेका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाती इम्तिहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों के रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल कल के कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना में तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्हें कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस अहदे पर मुकर्रर किया गया था। वो सारिफिन उमूर, खुराक और तकसीम आमा व नई और काबिल तब्दील तवानाई की वजारत की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। उन्होंने वजीर तालीम के अहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद मुख्तलिफ स्कीमों और अहम इकदाम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वजारत की एक मीटिंग की सदारत की। तालीम के वजीर ममलिकत जैन चौधरी और वजारत के बहुत से सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। बाद में जनाब प्रहलाद जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। जनाब जोशी ने कहा कि वो वजारत की कारकर्दगी, पॉलिसियों और इकदाम को पूरी तरह समझने के लिए फिलहाल जायजा मीटिंगें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ा और अहम महकमा है और उनकी फौरी तरजीह वजारत तालीम के प्रोग्रामों और नए इकदाम पर अमल दरामद के पहले इसकी कारकर्दगी को पूरी तरह समझना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मादरे वतन की दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ख्वाह वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी ताउन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में INS महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम 1

कामयाबी के साथ खला में भेजा जाने से हर भारतीय का सर फख्र से बुलंद हुआ है। कैद दर मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मलगीर मुहिम जारी है। आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तक खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मन की बात के इस नशरिये में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती बागो चटाई का जिक्र किया जिसे सरकंडों और धान की बारियों से बुना जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं। जनाब मोदी ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए यौम आजादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माईजीओवी पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्याल और तजवीजों से नवाजें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरतामेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुश्त पनाहों के खिलाफ अख्तियार की थी। जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने उन सभी स्कूली इमारतों के लिए हिदायत जारी की है जो हालिया मूसलाधार बारिश की वजह से गैर महफूज हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है कि उन्हें फौरन बंद कर दिया जाए और जरूरी मरम्मत किए जाने तक इस्तेमाल न किया जाए। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने जम्मू डिवीजन में बारिश की वजह से जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है उनका जायजा लेने के लिए मुनक्किद की गई एक मीटिंग के दौरान यह हिदायत जारी की। इस दौरान पुंछ, राजौरी, डोडा और रामबन अजला में बारिश से मुतालिक हादसात में कम अज कम 27 अफराद की जानें चली गई, 6 अफराद लापता भी बताए गए हैं। 29 और 30 जुलाई को मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर जिला इंतजामिया से कहा गया है कि वह हसास इलाकों में लाजमी अशिया के वाफर जखीरे को यकीनी बनाएं। गुजरात में 4 रोज से जारी शदीद बारिश के बाद आज कमी दर्ज की गई। रियासत के 76 तालुकों में हल्की बारिश दर्ज की गई और अब तक रियासत में 53% औसत बारिश दर्ज की गई है। हर दिनों में बारिश की वजह से मुतासर इलाकों में 7,900 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है और 52,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मुतासर अजला में जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल और मयूरभंज व जगतपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस मैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम का वजन उठाकर इन खेलों में मजमूई तौर पर 190 किलोग्राम वजन का एक और रिकॉर्ड कायम किया। इस जीत के साथ ही मीराबाई चानू ने दौलत मुश्तरका खेलों में लगातार 3रा सोने का तमगा हासिल किया। ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषिकांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने इस मैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों की क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला अख्तियारती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलेकणी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निपटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया।
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے واپسی کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور دو روزہ مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی میرا بھائی

बारहरा दरवाजा ईटा से, और ये फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है मॉडल टाउन का ना से सुदीन नूतर, नूतन किरण ठाकुर और मीनाक्षी तिवारी का। अगला फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है, इसी नामे को सुनना चाहता था, ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरफराज अब्बासी का। और ये अगला फरमाइशी मेल आया है हम तक पहुंचा है छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयूब खत्री ने इस नगमे को सुनना चाहा था। संबल से छोटे अंसारी की फरमाइश आई थी इसी नगमे को सुनने की। राजधानी रायपुर से नीलू बेग नीलम और डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की फरमाइश आई है। फाजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल खेरा और विष्णु खेरा। भाटापारा से बचकामर मोतीलाल यादव और डॉक्टर बसंत बुर्क की फरमाइश हम तक पहुंची है, इसी नगमे को सुनना चाहा है। फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से संजू चौरसिया, श्रेष्ठ चौरसिया और कुशाग्र चौरसिया। अगला फरमाइशी मेलम तक पहुंचा है इसी नगमे को सुनने का, और गोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनिता संधू और प्रत्यक्षा संधू। गांव जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक और पूजा खटक। और ये अगला फरमाइशी मेल आया है हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोडाने का। इसी नगमे को सुनना चाहता था मनोज भाई सैन, पूनम सैन और दीपक सैन, कार्तिक सैन ने सिटी सेंटर खंडवा से। अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे फिल्म आरती का आवाज है मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की। सुनने की फरमाइश की आप सबने। नागपुर से प्रकाश अम्बाडे, भारती रंबाडे और वैष्णवी रंबाडे। भक्ति नगर भोपाल से चंपालाल दुबे और अनंत और दर्शिका। अगला फरमाइशी मेल आया है बालाशाह से प्राची, सूरज और एकलव्या। महाराज से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर और मास्टर ओमी भारशंकर ने सुनना चाहा इसी नगमे को। राहत गांव के अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर। और व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कौरव, ज्योति रानी और गुरमंत कौर। रंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके साथ ही। यवतमाल से अनिल, उषा बुराडे, अनुश्री और धनुश्री। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकमुद्दीन मंटाल, शब्बीर बनाहट्टी और आसिफ इकबाल। और अगला फरमाइशी मेरे हम तक पहुंचा है ये आया श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक किटे का। रात गांव का अमरावती महाराज से लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये अगला रकमा। फिल्म आरती का आवाज है मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सुबोध मिश्र।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संबोधन मन की बात की 136वीं कड़ी, जिसमें कारगिल विजय दिवस से लेकर आत्मनिर्भर भारत, जल संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण, स्थानीय उत्पादों और जन भागीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन, हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: अशोक जी, आपकी दृष्टि में प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संस्करण का मूल संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ संवाद है या राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक सोच को भी प्रस्तुत करता है?
2: प्रधानमंत्री अपनी हर महीने की आखिरी रविवार को जो जनता के साथ संवाद करते हैं वो एक तरफा नहीं है। उसमें उस महीने में जो घटनाक्रम हुए होते हैं, जो भारत की उपलब्धियां होती हैं, भारत की जनता द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और इस कड़ी में अगर जैसे आपने भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी भी चर्चा करते हैं। आज के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जब इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी तिथियां हैं जिन्हें याद करने के लिए कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आज 26 जुलाई एक ऐसी तारीख है जब कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि ये दिन हमारे गर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद को भी दिलाता है। तो इससे हमको याद आया कि कारगिल युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कठिन मौसम में दुश्मन की चुनौती और इस हर परिस्थिति को हमारे सैनिकों ने इसका सामना किया था और उनका जो हौसला था वो हर चुनौती से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया था। जब कारगिल दिवस पर उन्होंने सब वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया तो इस तरह से एक याद दिलवा दी कि भारत ने कारगिल पर जो है विजय कैसे हासिल की थी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ साझा किया कि भारत की जो अपनी तकनीकी क्षमता है वो भी दिन दिन बढ़ रही है
1: जी।
2: और कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज जो है ये भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और उससे बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने जो पिनाकल लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जो सामूहिक परिश्रम है। तो 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। आज रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों के सर बढ़ रहा है। और इस महीने की शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने इंडोनेशिया की यात्रा की भी चर्चा की, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। ये दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: अशोक जी, आपने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया अभी, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने शौर्य दिवस के बारे में क्या कहा है।
3: आपका भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: अशोक जी, आपने अभी उल्लेख किया INS महेंद्र गिरी का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का और कुशा मिसाइल का, क्या ये भारत की बदलती हुई सामरिक नीति और आत्मनिर्भरता में एक नए युग की शुरुआत है?
2: बिल्कुल, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से विशेष तौर से जो सैन्य सामग्री है उसके लिए विदेशों पर ही निर्भर रहता था और ऐसा माना जाता था कि शायद भारत में तो तकनीकी क्षमता है ही नहीं। तो ये जो अब भारत की अपनी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है, ये पिछले 12 वर्ष में देखने को मिली है, और उसी का ये उदाहरण है कि जैसे INS महेंद्र गिरी शामिल हुआ, जैसे मैंने पहले कहा ये भारत में ही बना, भारत में डिजाइन हुआ, 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो हम अपने मित्र देशों के साथ एक सामरिक महत्व के जितने भी उपकरण हैं वो हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे मिसाइलों का बड़ा भाई एक समझौता इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री करके आए हैं। तो इसलिए अब दुनिया का भरोसा भी, विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं, उनका भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत को बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं हमारे रक्षा उपकरणों के।
1: प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के पहले भारतीय रॉकेट विक्रम 1 और विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया।
3: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: अशोक जी, क्या ये भारत के नवाचार और ओलंपियाड के लिहाज से देखें तो युवा शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है?
2: बिल्कुल। साइंस में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है, साइंस ओलंपियाड जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन में से एक है। इन्हें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और इसी महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड भी हुए थे। और इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में तो हमारे सभी 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। और पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के विद्यार्थियों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में तो हमारे सभी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी विद्यार्थियों ने मेडल जीते और जिनमें से एक गोल्ड मेडल के बारे में जो कहा जाए कि वो तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते, उनके नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर गर्व है और ये देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर बढ़ रहा है और देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम पर अपना एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और भारत का परचम भी लहरा रहे हैं।
1: जी, इस बार मन की बात में चटाई, हर्बल चाय, खादी, हथकरघा और स्थानीय उत्पादों का विशेष उल्लेख हुआ है। खादी पर प्रधानमंत्री ने कहा,
3: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: अशोक जी, क्या अब वोकल फॉर लोकल की बात थी वो अब नारा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का रूप ले चुका है?
2: हर एपिसोड में प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और उसमें किसी न किसी हमारे एक प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो आगे दुनिया में भी हो रही है और कैसे हमारे स्वयं अपने जो लोग हैं वो किस तरह से इसकी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चाय के बारे में उन्होंने बात की, चटाई के बारे में बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाय की वो चर्चा करते हैं उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की एक खुशबू भी घोल दी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है, तो इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसे प्राकृतिक सामग्री शामिल हैं। और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी पहचान बढ़ रही है। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण प्रधानमंत्री देते हैं कि जिससे हम अपना आत्मनिर्भरता की तो बढ़ती है, लेकिन वोकल फॉर लोकल का जो नारा है कि

0: सारा जो लोकल उत्पाद है उसको भी हम प्रेरणा दें, उसका इस्तेमाल करें और दुनिया में भी उसकी मांग बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, गुरु पूर्णिमा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का उल्लेख भी किया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने तिरंगा के बारे में क्या कहा।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है, इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री इन विषयों को अक्सर रेखांकित करते रहे हैं, क्या इससे राष्ट्र भावना और नागरिक सहभागिता को नई ऊर्जा मिलती है?
0: देखिए, केवल अगर प्रधानमंत्री इसकी बात करके छोड़ दें और एक नारे की तरह, तब तो इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब वो इस बात को आंदोलन के रूप में चलाने की बात करते हैं और देश उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में अड़चड़ कर भाग लेता है, तब वो ये सब बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता का पर्व है, तो उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा का जब से एक ये अभियान चलाया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान देश में पूरी तरह से एक अद्भुत भावना से जुड़ गया है और हर गली हर घर में हम तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। यानी लोग इसमें भाग लेते हैं और ये अभियान जो है इसको आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की बात का लोगों पर असर होता है और जो भी अभियान वो लेते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो हर घर तिरंगा की बात करें, ऐसे कई अभियान प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में चलाए हैं जो जन भावना से जुड़े होने के कारण लोक अभियान में भी बदले हैं, जिसके कारण ये सब चीजों में भारत आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील दोहराई है, क्या आपको लगता है कि ऐसे अभियानों से जन भागीदारी अब सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी ताकत बन रही है?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जल संरक्षण का जिसमें प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में इसके बारे में बात करते हैं और उसके चलते ये जो जल अभियान है, यानी जो इसको संरक्षण करना है, ये भी हर बार रहती है। और जैसा प्रधानमंत्री ने पिछले एपिसोड में कहा था कैच द रेन, तो इस अभियान की चर्चा की थी और उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं, और अब वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो ये जो संदेश सीधा जहां बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए, इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, इन सबको नई गति मिली है। और गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ले रहे हैं और कई पुराने तालाबों को लोगों ने गोद लिया है, उसकी गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं, कहीं बावड़ी। ये जो जीवन का एक संदेश है, ग्राउंड वाटर को इस माध्यम को बनाया जा रहा है, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया और लोगों के इस जुड़ाव का भी उन्होंने चर्चा की, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि ये कैच द रेन अभियान आगे चलकर और तेजी पकड़ेगा।
1: जी अशोक जी, अपने मन की बात के इस संस्करण में उठाए गए विषयों का अत्यंत सारगर्भित विश्लेषण किया, कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

hermano.

किसी को सूली दिलवाई, किसी से भीख मंगवाई और किसी से खाक छनवाई, किसी की लाश में गोरों कफन सहरा।

वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और दौलत मुश्तरका खेल में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इम्तहानात की सलाहत के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकनी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तहानात की सलाहत पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम के लिए किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तहानात का निजाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डेका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामा कोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी जहां मोदी ने मुकाबला जाती इम्तहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मादरे वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। नरेंद्र मोदी ने हर एक से कहा कि वह इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुद कफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खा वह दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदाद हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी ताउन। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम एक को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सर फख्र से बुलंद हुआ है। कैच दी रेन मुहिम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुहिम चलाई जा रही है। कल मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलेटिक्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मन की बात के इस मशरी में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। आज 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल से सबसे ज्यादा करीब है। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए यौम आजादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वह माई गॉव पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीजों से नवाजें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। नवाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुश्त पनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में यह सलाहियत है कि वह पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तस्वूर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल कल के कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉ

0: जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबिना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी ताकि पेपर लीक और इम्तहान में गलत तौर तरीकों के मामला में सख्त सजा को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कल वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाली। उन्हें गुज़श्ता रोज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया था। वो सारिफिन उमूर खुराक और तकसीम आमा व नई और काबिल तजदीद का तवानाई की वजारत की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। उन्होंने वजीर तालीम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद मुख्तलिफ स्कीमों और अहम इकदाम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वजारत की एक मीटिंग की सदारत की। तालीम के वजीर मम्लिकत जयंत चौधरी और वजारत के बहुत से सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। बाद में जनाब प्रहलाद जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। जनाब जोशी ने कहा कि वो वजारत की कारकर्दगी पॉलिसियों और इकदाम को पूरी तरह समझने के लिए फिलहाल जायजा मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ा और अहम महकमा है और उनकी फौरी तरजीह वजारत तालीम के प्रोग्रामों और नए इकदाम पर अमल दरामद के पहले इसकी कारकर्दगी को पूरी तरह समझना है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बारिश से मुतालिक अलग अलग वाकयात में दो बच्चों समेत कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। पाकिस्तान के एक रोजनामे के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकानात को नुकसान पहुंचा है और बड़ी तादाद में मवेशी भी हलाक हुए हैं। शनिवार के रोज सपहर तक सुबह भर में बारिश से मुतालिक 14 वाकयात पेश आए। आफात से निपटने से मुतालिक सूबाई अथॉरिटी ने कहा कि मानसून से मुतालिक वाकयात में अब तक पूरे पंजाब में 22 अफराद की मौत हुई है और 183 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान मौसम की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 2022 में गैर मामूली सैलाब की वजह से 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रास्को में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता। 31 साल वेटलिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस मैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम का वजन उठाकर इन खेलों में मजमूनी तौर पर 190 किलोग्राम वजन का एक और रिकॉर्ड कायम किया। भारत के ऋषिकांत सिंह चांबम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने इस मैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबले में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत की तरफ से दिए गए 193 रन के निशाने का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की सलाहत के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकंठ करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इम्तहानात में बदगुमानी से निपटने के लिए आज पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाली हैं और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरें अब खत्म हुई।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए सामाइन अब सुनिए क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में पंडित उमा शंकर मिश्रा का सितार पर बजाया राग देसी तोड़ी।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में यह नगमा था फिल्म काला बाजार का। और ये समय अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है फ्लाइंग रानी। आवाजें हैं आशा भोसले और मन्ना डे की। मौसिकार हैं बी एन बाली।

डायरेक्टर तपन डेका, इसरो के साबिक चेयरमैन ए सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर कामा कोटी प्रमुख शामिल होगी। इनके अलावा तालिंग की सैनिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने ये भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाती इम्तहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हर एक से कहा कि वह इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुद कफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खा वह दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदाद हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी ताउन। जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम एक को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सर फख्र से बुलंद हुआ है। कैच दी रेन मुहिम के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी गिर मुहिम जारी है। कल मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर एक भारतीय भारत मुश्तरक खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मन की बात के इस नशरी में वज़ीर आज़म ने कश्मीर की रवायती वागू चटाई का जिक्र किया, जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। आज 27 जुलाई को भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉ कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का अख्तिताम करते हुए यौमे आजादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वह माई गॉव पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्याल और तजवीजों से नवाजें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया, जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वीं करगिल विजय दिवस की तकरीबा से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुश्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में यह सलाहियत है कि वह पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तस्वूर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल कल के कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसौदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कल वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्हें गुज़श्ता रोज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद इस अहदे पर मुकर्रर किया गया था। वह सार्फिन उमूर, खुराक और तकसीम नामा व नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। उन्होंने
وزیر تعلیم کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد مختلف اسکیموں اور اہم اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. تعلیم کے وزیر مملکت جین چودھری اور وزارت کے بہت سے سینئر افسران نے اس میٹنگ میں شرکت کی. بعد میں جناب پرہلاد جوشی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری انہیں سونپی.

0: रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ इस महीने की 21 से 25 तारीख के बीच मुंबई और कल्याण में रोके गए 3 अंतर्राष्ट्रीय डाक पार्सल से बरामद किया गया। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है और कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलिविका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सैखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amritlal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
3: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan.

आप सुन रहे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे। आइए सुनते हैं अगला गीत और लेते हैं आनंद आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अभी आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीत जिसको लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, और ये जो गीत है फिल्म मेरे हुजूर से। आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में और साथ हैं महेंद्र कपूर।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज से ये खूबसूरत गीत, और पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे में आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरजू से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर शनिवार को हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

0: मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नासिक के बागलन तालुका में सिंचाई पंप चलाते समय करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि अलग अलग घटनाओं में 2 अन्य लोग घायल हो गए। निफाड तालुका के नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के कारण 429 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and Logistics Expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy.

0: और इसी खूबसूरत गीत के साथ मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम गीत बहार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने न्यूजीलैंड भेजे जा रहे कुरियर में छिपाकर रखी गई 5 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 11 किलोग्राम एफेड्रिन जब्त की है और चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। राज्य में नदियों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और धुले जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3

0: नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलीव का शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। मीराबाई चानू सखम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री राधाकृष्ण ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतने का उनका प्रदर्शन उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4वां राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि इस शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. Union Cabinet had approved a draft bill on Friday to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Union Minister Pralhad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan and any dialogue would focus solely on Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, an integral part of India illegally occupied by Pakistan.
3: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
4: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज क्लियर देयर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देयर

मेहदी हसन की आवाज में गाई इस गजल के साथ ही आज का गजलों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन। कलाकार हैं पोन कुन्नन रामचंद्रन। आपने प्रस्तुत किया है राग मध्यमती जो आदि ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है स्वाति तिरुनाल ने और मृदंगम पर संगत किया है कुझल मन्नम के जी रामकृष्णन ने।

Bye-bye.

नादब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन पोन कुन्नम रामचंद्रन का। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए आप सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें।

5 बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति संगीत का। 5:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम स्वर रंजनी। के 10 मिनट पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का समय रहेगा 6:40 और आज आप सुनेंगे चाणक्य के विचार। 6:45 पर सुनेगा रामचरितमानस से पाठ। आज आप सुन सकेंगे बालकांड का भाग 129। 6:25 पर सुनेगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। अब 5:10 पर सुनेगा संगीतिका। आज आप सुनेंगे संचेता रॉय से द्विजेंद्र गीत। 7:30 बजे सुनेगा गीतों भरी कहानी। शिमागी जी गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उदय कुमार मलिक का गाया राग ललित। 9:15 पर अवर गेस्ट ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

9 बजे सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी हरजीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद।

गैरेज के 10 मिनट का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का। उसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 बजे सुनेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सितार वादन, कलाकार होंगे सलीम अहमद। आप प्रस्तुत करेंगे राग गुर्जरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

निर्वा चले कपड़े तारे तुरक पठानी अमल किया। चार वेद सचियार पढ़े गुण तिन चार विचार। आओ भगत कर नीच सदाए, आओ नानक मुकंतर पाए।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तरना जाय। धोती टिका तै जप माली ताल मिले खाई। अंतर पूजा पड़े कते पार संयम कृपा पाई। छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
1: मान सुखाने करे नवाज शुरी वगायन तिन गलताग। तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओईसा। कोड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार। सरम तरम का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर। मत्था टिका तेर धोती का काई हथ छुरी जगत का साई। मेल वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश धान लै पूजे पुराण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर कसे ना जाना। देखे चौका कड्डी कार पुराए बैठे कूड़े यार। मत पिटे वे मत पिटे न साडा फिटे। तन फिटे फेट करेन मन झूठे चुड़ी पहरेन। कहो नानक सच त्याई है सच होवे ता सच पाई।